मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026, 5:55 हुए हैं। मीडियम वेव और FM पर हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रम अब एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू साधुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरूआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

इसके साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आज की वंदना में स्वर थे वाणी जयराम, राजेंद्र जैन, मोहम्मद अहमद, समुद्र सिंह और शंकर महादेवन के।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का चिंतन। आज का विषय क्रोध।
1: वेद की सूक्ति है, अदृश्यमाये अर्थात मैं पर्वत को शांत करता हूँ। भाव ये है कि मैं पत्थर के समान कठोर और संवेदना शून्य हृदय को संवेदनशील बनाता हूँ। क्रोध की अग्नि को शांत करके प्रेम की धारा बहाता हूँ। मनुष्य को पत्थर से मोम, कुटिल से सरल और अपावन से पावन बनाने की अद्भुत शक्ति रखता हूँ। ये गुण अक्रोध गुण में है। डाकू अंगुलीमाल की कथा इस तथ्य को उजागर करती है। अंगुलीमाल अपने समय का बड़ा क्रूर और अत्याचारी डाकू था। वो अपने राह चलते लोगों को लूटता, उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालता था। मारे गए लोगों के हाथों की उंगलियों की माला पहनने के कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। देश में चारों ओर उसका आतंक था। एक बार गौतम बुद्ध डाकू के निवास की ओर जा निकले। वो निर्भय होकर उस क्षेत्र में घूमने लगे। अंगुलीमाल को जब यह ज्ञात हुआ तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। वो उन्हें मारने के लिए हाथ में नंगी तलवार लेकर अपशब्दों की बौछार करता हुआ उनके सामने जा पहुंचा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। बुद्ध की तापसी वेशभूषा, उनके ओजस्वी मुखमंडल और सहज मधुर व्यवहार को देखकर अंगुलीमाल ठगा सा रह गया। वो बहुत देर तक चुपचाप उन्हें निहारता रहा। बुद्ध ने उसे कोमल शब्दों में कहा, भाई क्या आप सामने के पेड़ से 2 पत्ते तोड़कर ला सकते हैं? अंगुलीमाल जैसे सोते से जगा, बोला, अभी लाता हूं। ये कहते ही वो दौड़ गया और 2 पत्ते तोड़कर ले आया। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, अभी काम करो, इन पत्तों को जहां से तोड़ा है वहीं जाकर इन्हें लगाओ। अंगुलीमाल को कहना पड़ा, ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। बुद्ध ने डाकू के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया, जब तुम ये जानते हो कि टूटा हुआ कभी नहीं जुड़ सकता, तब तोड़ने का काम क्यों करते हो? इतना सुनते ही अंगुलीमाल को ये बोध हो गया। उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए, फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध ने ढांढस बंधाया, क्रोध रूपी दानों के हाथों पग पग पर दुर्गति होने पर भी हम उसे गले से लगाए रहते हैं। इसका कारण हमारा अज्ञान है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रसिद्ध दार्शनिक लुकमान ने कहा है कि एक दिन मैं घूमने जा रहा था। रास्ते में रत्न जटित आभूषणों से सजी एक अति रूपवती स्त्री मिली। मैंने उसे पूछा, देवी आप कौन हैं? मैं बुद्धि हूं। कहाँ रहती हैं? मनुष्य के सिर में। कुछ दूर जाने पर 2 सींगों वाला एक विशालकाय राक्षस मिला। उसे प्रश्न किया, आप कौन हैं? मैं क्रोध हूं। कहाँ रहते हैं? मनुष्य के सिर में। परंतु वहां तो बुद्धि रहती है भाई। बुद्धि रहती जरूर है, परंतु मेरे पहुंचते ही वहां से कूच कर जाती है, राक्षस ने जाते जाते कहा। लुकमान की यह कहानी वैज्ञानिक आधार पर है। क्रोध की दशा में मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। क्रोधी के सामने न करने योग्य और न बोलने योग्य जैसा कुछ नहीं रहता। वह सब कुछ कर सकता है और सब कुछ बोल सकता है। क्रोध प्राण हरने वाला शत्रु है। क्रोध व्यक्ति और समाज के लिए अनिष्टकर तो है ही, इसलिए संसार के बनाने वाले के आदेश का उल्लंघन भी होता है। परमात्मा की सृष्टि में मनुष्य का स्थान सबसे ऊंचा है। परमात्मा ने नदी, पर्वत, वनस्पति, पशु पक्षी सबकी रचना के बाद मानव को धरती पर उतारा, जिससे वह इस सुंदर रचना का आनंद लेता हुआ अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सके। उसकी उत्पत्ति के समय ईश्वर ने वेदवाणी के माध्यम से उसे आदेश दिया, आरोह इमम अमृतम सुखम रथम।

0: हे जीवात्मा, इस शरीर रूपी रथ पर सवार हो जो सुख देने वाला और मोक्ष तक पहुंचाने वाला है, उसे प्राप्त करो। जयशंकर प्रसाद जी ने क्रोध से बचने के लिए कहा कि सब भेदभाव भुलवाकर दुख सुख को दृश्य बनाता मानव कह रहे वह मैं हूं, यह विश्व नीड बन जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा। विषय कॉस्मेटिक उत्पादों का शरीर पर प्रभाव।
2: स्वास्थ्य संदेश के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, कॉस्मेटिक पदार्थों का प्रचलन बढ़ रहा है। अनेक प्रकार के ये उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। इन उत्पादों की अपनी एक प्रकृति होती है। कुछ अधिक अम्लीय होते हैं तो कुछ अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनकी प्रकृति का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। कुछ कॉस्मेटिक्स या अन्य प्रोडक्ट्स पर अक्सर आपने पीएच बैलेंस के बारे में लिखा देखा होगा, पर क्या कभी उसके बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर पीएच का मतलब क्या है, इसमें क्या खास बात है जो शरीर के लिए जरूरी है। पीएच का पूरा मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन के अणु किसी भी घोल या उत्पाद में उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को तय करते हैं। आपके शरीर के किस अंग का पीएच स्तर कितना है, यह आपके आहार, व्यायाम और दवाओं के स्तर पर निर्भर करता है। हम पीएच को इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि अगर घोल में पीएच 1 या 2 है तो वो अम्लीय है, और अगर पीएच 13 या 14 है तो वो क्षारीय है। अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल है। पानी का पीएच 7 होता है, यानी पानी में अम्ल और क्षार दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। क्या है जरूरत? बॉडी में पीएच स्तर यदि असामान्य हो जाए तो इसका असर आपकी सेहत पर पड़ता है। शरीर के अंगों और एंजाइम्स को सही प्रकार से काम करने के लिए पीएच स्तर सही होना बहुत जरूरी होता है। इसके स्तर में कमी या अधिकता एंजाइम्स और मेटाबॉलिक प्रोसेस को नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, दिल की बीमारियां और अर्थराइटिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अगर इसका स्तर जरूरत से ज़्यादा हो तो व्यक्ति को थकान, मांसपेशियों में जकड़न और ऊर्जा के स्तर में गिरावट जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एक्सरसाइज, आहार और दवाओं आदि से बॉडी में पीएच का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमारा शरीर उसकी भरपाई कर लेता है। प्रोडक्ट में कितना पीएच होता है, इसके बारे में जानकारी जरूरी है। डिओडोरेंट, पसीने से बदबू का कारण बैक्टीरिया की सड़न होती है। त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार अगर पसीने में सीबम यानी पसीने की ग्रंथियों का तैलीय स्राव का मिश्रण हो जाता है तो ये त्वचा पर एक परत बना लेता है। डॉक्टरों के अनुसार इस परत को एसिड मेटल कहते हैं, क्योंकि इसका पीएच 5 से नीचे होता है, जो कि हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। ऐसे में अगर साबुन या दूसरे उत्पादों से त्वचा को धो लिया जाए तो ये एसिड मेटल को त्वचा से निकाल देता है, जिससे त्वचा में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डिओडोरेंट ऐसा खरीदना चाहिए जिसमें पीएच बहुत कम हो, जो त्वचा को प्राकृतिक रूप से सहज कर रखे। पानी या साबुन में पीएच 8 से 11 के बीच होता है। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इससे चेहरा साफ करते हैं तो ये चेहरे की सारी नमी खींच लेता है। कई बार इसकी वजह से त्वचा में सूखापन, खुजली और मुहासे की समस्या होती है। इसलिए पीएच संतुलित फेस वॉश इस्तेमाल करने से चेहरे का एसिडिक मेटल बरकरार रहता है और त्वचा को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। अब हम बात करते हैं शैम्पू की। सिर की त्वचा का भी पीएच 5 से कम होता है। जब बालों को पानी या फिर किसी भी क्षारीय उत्पाद से साफ करते हैं तो इसकी वजह से बालों का नाजुक भाग, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्षारीय उत्पाद बालों के प्राकृतिक तेल को भी नष्ट कर देते हैं, जो क्यूटिकल को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसलिए पीएच संतुलित शैम्पू ही इस्तेमाल करें। बालों को धोने के लिए सेब का सिरका भी फायदेमंद होता है। टूथपेस्ट, दांतों को स्वस्थ रखने में पीएच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर दांतों का इनेमल टूट जाए तो उसका बनना भी पीएच पर निर्भर करता है। अगर पीएच 6 हो जाए तो कोई बदलाव नहीं होता। विशेषज्ञों के अनुसार हल्के अम्लीय टूथपेस्ट के इस्तेमाल से दांतों का स्वास्थ्य सही रहता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर दांतों को सही रखने वाले संतुलित पीएच वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। श्रोताओं, इस प्रकार यदि इन बातों का हम ध्यान रखें और बाजार से कॉस्मेटिक पदार्थों को जब खरीदें तो उसके पीएच मान को ध्यान में रख करके ही खरीदें, तो फिर हम अपने शरीर को किसी भी प्रकार से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। आज की जानकारी में बस यहीं तक। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संदेश, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा, विषय था कॉस्मेटिक उत्पादों का शरीर पर प्रभाव। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

फिल्मी गीतों का कम्पेयर्ड कार्यक्रम आज शाम आप सुनेंगे, आज शाम 5 बजे। युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे आज शाम 5:15 पर। आज शाम 6:10 पर सुनिए चित्रपट संगीत।

0: किसानों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत आप सुनेंगे आज शाम 6:20 पर। इसमें चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। भेंटवार्ता का विषय रहेगा पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का महत्व। लोकगीत होगा लालमन चित्रकार का। कृषि संकेत में सुनिए नींबू वर्गीय फसलों की देखभाल। मौसम का पूर्वानुमान और क्षेत्र संकलित कार्यक्रम समय याद रखिए आज शाम 6:20 पर। श्रोता मंच कार्यक्रम में आपको सुनवाया जाएगा स्टूडियो में आमंत्रित श्रोता श्री नवाबुद्दीन से भेंट वार्ता। प्रस्तुति असीम सक्सेना की है। समय याद रखिए आज शाम 7:00। आज शाम 7:31 पर सुनिए सुगम संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे गुलाम अली और सलमा आगा की आवाज में गजलें। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल आप सुनेंगे आज रात 8:00। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान की भाग संख्या 348। संगीत सतीश भाटिया का है और कलाकार हैं सुरेश वाडकर व साथी।
1: एपिसोड नंबर 348

सीता जी की अग्नि परीक्षा हो चुकी है। देवता वहां उपस्थित होकर दयालु परम हितकारी श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए जहां तहां हाथ जोड़े खड़े हैं। अत्यंत पुलक भरे शरीर तथा मन से ब्रह्मा प्रभु की स्तुति करते हैं। अनेकों कामदेवों के समान अनुपम छवि है प्रभु की। भक्तवत्सल भगवान शोक और भय का नाश करने वाले, क्रोध से परे और ज्ञान स्वरूप हैं। अवतार लेकर भी वे अजन्मे, व्यापक, अद्वितीय तथा अनादि हैं। हे प्रभु, आप सभी दोषों और निंदा से परे अखंड और सदा सर्वरूप हैं। सर्वरूप होकर भी आप वो सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश अलग अलग होकर भी अलग नहीं हैं, उसी भांति आप संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों ही हैं। इसी अवसर पर स्वर्ग से दशरथ जी वहां आते हैं। पुत्र श्री राम को देख उनकी आंखों में आंसू उमड़ रहे हैं। वे राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं। पिता के सम्मुख नतमस्तक हो श्री राम अपने उद्गार प्रकट करते हैं। हे तात, ये आपके पुण्यों का प्रताप है जिसके बल पर मैंने अजेय राक्षसों पर विजय प्राप्त की।

कोइया का लिलके जब यार तामाई जे बगला माय पके जाय लचके पाचुए आला के यहुमा ते ताई लए लगाय ताज ने आला बोलन लागे यहुं धनते कहिए सुनाय कैसे आए हो बगला माई जी को हाल दिया बतलाय कहत पे अनुला को चढ़ भैया दादा

जटत से रात दाकू बनिए जा हम तुम्हारे दे बदलाल। रात चलत पाई करा उपखेड़ो तैजा मुर्चा दे लगाए। अब तुम ना जाए आओगे गंगा का इतनी

आज मनु मान गई हाया लागे हृदय बेच गई तमियाज तुम तय ढेवा का बुलवाओ यो ढेवा से कहिया सुनाय तुवाहु संग जाऊ उधल के इतनी अमाना कहिया हमार कड़े न बीती न पल्ल उठो घटा लाए लगे दो चार कोई खटल के जब यार समाए जे माए ललमाए पहुंचे जाए तत न सुरमा बोलन लागी यो उधल से कहिया सुनाय हमा हुआ चले हाय के गंगा का इतनी अमाना कहिया हमार मुन्नर कर रहे हैं गे इंदल को भाई गंगा के मैदान तदन उधर बोलने लागे भौजी तुराओ हमारी बात जटो भैया बाबू।

और फिर ले डोलन लगी तैयार और बाए तैयार हुकुम लगाए तो ओजा लाला अब ना रखाओ तेरे लगाए चल लिए फौजा सजाई ही ना पाई इतनी माना हो कहिया हमार हुकुम लगाए तो यू धल्ला

पहले टनका माई जी ने बंदी है और दूसरे माई जी ने लगाम और प्रण लंगाड़ा के बाजत कान जो आनंद रे रखे बल पाए तू हर हर बोली है महादेव की है और दल चलो सहा कर जाय तू कोई अकल के जब जरता माई जी रेती माई पहुंचे जाय दिल की बात यही नहीं छोड़ा तेरा और भय तैयार आराम बनाया है तो बन जाए बिगड़िया बंद बंद बन जाए उपला बनाए परमेश्वर के कारज एक बनन को नाय मुझे अब पहुंच गए गंगा को जा हम तुम्हें दे बदलाय हकम लगा है दो उधर लाए अब नहरा का देर लगाए और तो साहब आ जाए जा गंगा पाई इतनी अमाना कही हमार और तो साहब आ जो

अब जे चाहे रकरान कर जाए रे नहुका तो अंत करी जताइया पाई कली उपाई चाय चेतर रेह काज पाउची जाए कि दूसरी जना हो कहा पा नहीं कर ले आहो गंगा हमाई दाई डराए कि सोहने को पिंजरा संगाई लाए लो गंगा देखो दाहर चली जहार गाय कि माहू का देह को चितर रे कान तो जादू।

भैया जगी मोर चा जब दो लौ की भैया तो लौ हमारी अपा इतका जा देह काए यो तका हो देह काए इंदल कहूं अ मिला तिहाई ना ई को हर हम नाउ का पाए बीत काहू पर रांदे बात काए जान हियल की बात यही लाए छोड़ सहरा जे आहु रबए ताई यार जाल लो होइया का उमंग भाव तू गंगा हमाई दाए अपिकाए गोहवा मंगा रजे पस के आम किनके पेट चीर हर गाय कहूं न जा इंदला इनका उमिल को राम कहो।

de melaya paniya kahuna mile ilan tierra y abaji chali beja hai dera na ka dekhau kaha karai bhagwan ge udal bole hai devat bhaiya hal deyao batlai ki kaise jaye hai gaada mau beko itni mana ukaiya hamar ताजन एमल बोला न लागे अरे यूदाल से काया सुनाए ये हम समझाए दिया याला को कटका कहू बात को ना चे महीना की मोहलत मांगे इंदर ढूंढे दिया यार औरत बियारियां जे डोला न लागी सहरा याहू रु बये तैयार उस सभा बिरानी का दुए चाई हो भाई का माई के।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकरंग के अंतर्गत ओमकार व साथियों की आवाज में कुछ लोकगीत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:15 हुए हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
4: सामने हैं इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
5: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
4: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध।
3: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
4: जागिए और जगाइए,
5: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
3: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
4: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
6: से नो टू प्लास्टिक।
7: अरे अरे सुनो, एक्सीडेंट हो गया।
8: अरे अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट।
9: अरे भाई कोई 100 नंबर डायल करो, 100 नंबर, 100 नंबर डायल करो भाई साहब, जल्दी जल्दी।
10: 100 पे नहीं, 108 लगाओ, 108
11: नहीं, 112 लगाओ।
12: अरे भाई इसकी जान चली जाएगी, आप लोग एक ही नंबर बताओ, बार बार कंफ्यूज मत करो।
11: अरे भाई एक ही नंबर पर सारे काम, 112 लगाए, तत्काल पुलिस बुलाए, फायर एम्बुलेंस की सर्विस तुरंत पाए।
13: हेलो 112।
14: नमस्कार 112 यूपी।
13: गांधी समाधि रामपुर पर एक्सीडेंट हो गया है,
14: कृपया अपना शुभ नाम बताइए।
13: सुनील।
14: एम्बुलेंस के साथ साथ आपको पुलिस और फायर की भी जरूरत है?
13: नहीं सर, सिर्फ एम्बुलेंस की।
14: आपको सहायता शीघ्र भेजी जा रही है, डायल 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
15: तो सुना आपने, अब 112 पर मिलेगी आपको।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:18 हुए हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
16: झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
17: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
16: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है, सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
17: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
16: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
17: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
16: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य।
18: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। आपात स्थितियों में उपचार सुनिश्चित करने को स्थापित होगा प्रदेश व्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, जनहितकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करेगी सरकार। सघन उपचार के लिए पशुओं को भर्ती करने की भी होगी सुविधा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और विभिन्न विशेषज्ञों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर उत्तर प्रदेश राज्य कैंसर टास्क फोर्स तथा उत्तर प्रदेश ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क UPTEN द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में प्रत्येक जिले तक कैंसर उपचार सुविधाएं विकसित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं व अन्य आपात स्थितियों में गोल्डन आवर के भीतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क स्थापित करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
8: उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से कैंसर उपचार सुविधाओं का विकास किया जाए तथा प्रत्येक मंडल में आधुनिक कैंसर केंद्र स्थापित किए जाए। मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर उपचार और फॉलोअप तक की पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाए। बैठक में बताया गया कि ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क के अंतर्गत एकीकृत चिकित्सा इकाइयों का विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 95% आबादी को 60 मिनट के भीतर विशेषज्ञ आपात चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। समाचार कक्ष से रितेश।
18: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन में नवाचार और उत्कृष्टता का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनहितकारी नीतियां बनाई गई हैं। उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
19: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा। विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बने, ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो। ये पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा।
18: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मैंगो टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आम की सभी किस्मों की GI टैगिंग कराई जाएगी। महोत्सव में 50 ग्राम के अंगूर दाना आम और 5 किलो तक के वजन वाले गजानन आम आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर आवर्स में 20% टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू की गई है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इससे स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। टैरिफ में यह छूट सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की दूसरे दिन की परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। 3 दिवसीय परीक्षा को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की AI कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की गई है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि UPTET परीक्षा के अंतिम दिन आज एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड मिले, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
20: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
18: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने कल रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
21: India's position on the Indus Waters Treaty.
22: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
18: श्री अमरनाथ जी यात्रा कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को कल लखनऊ में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1,47,00,000 लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रसार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करने जा रही है। इन चिकित्सालयों में पशु को सघन उपचार के लिए भर्ती भी किया जा सकेगा। बनने वाले प्रत्येक आदर्श पशु चिकित्सालय में 2 पशु चिकित्साधिकारी और पर्याप्त संख्या में अन्य स्टाफ की तैनाती की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। राज्य के कई जनपदों में कल भारी बारिश से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ जिलों में उमस भरी गर्मी का दौर बना रहा। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आपात स्थितियों में उपचार सुनिश्चित करने को स्थापित होगा प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी की नवीन परिसर का किया लोकार्पण, कहा जनहितकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करेगी सरकार, सघन उपचार के लिए पशुओं को भर्ती करने की भी होगी सुविधा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
16: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
18: मीडियम वेव 401.6 मीटर।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे

सुबह सवेरे सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को शाजिया परवीन का नमस्कार। सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं हमारे सभी श्रोता खैरियत से होंगे और इस खूबसूरत सी सुबह को खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे, चाय की चुस्कियां लेते हुए, गर्मा गर्म पराठे खाते हुए। श्रोताओं, उगते हुए सूरज को देखना अपने आप में ही एक आनंद की अनुभूति करता है। अनुभूति करता हुआ एक लम्हा है जो हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति लाता हुआ लम्हा है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये एहसास दिलाता है कि ये लम्हा कि मायूस नहीं होना है, क्योंकि हर रात के बाद एक नया सवेरा है, हर अंधेरे के बाद उजाला हमारा इंतजार कर रहा है। बस हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, हमें मायूस नहीं होना है, हमें कभी भी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ना है, हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखनी है। श्रोताओं, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

स्वागत है आपका आपके फेवरेट प्रोग्राम सुबह सवेरे में। श्रोताओं, वक्त है आज की कुछ खास खबरों का। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा 1,05,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास। इसमें राजस्थान रिफाइनरी, यमुना जल परियोजना, जयपुर मेट्रो फेज 2, नियुक्ति पत्र वितरण इत्यादि शामिल हैं। 50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरण, सरकारी पदों पर पारदर्शी भर्तियां, 1.5 लाख से अधिक नियुक्तियां, 1,45,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन, 1,25,000 सरकारी नौकरियों का वार्षिक कैलेंडर जारी। स्पेन ने 16 साल बाद नॉकआउट मैच जीता है। ओसाका ने पहली बार विंबलडन के चौथे राउंड में बनाई जगह। इसके साथ ही अब टीम इंडिया की जर्सी में दौड़ेंगे पीलीभीत के यूनुस। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का सफर दूसरे राउंड में खत्म। मेक्सिको के खिलाफ हैंड ऑफ गॉड वाले मैदान पर खेलेगा इंग्लैंड। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आज 4 जुलाई है और आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। श्रोताओं, हर साल जुलाई के पहले शनिवार को दुनिया भर में सहकारी आंदोलनों की उपलब्धियों और योगदान को उजागर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सहकारिता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। श्रोताओं, यह दिवस पहली बार सन 1923 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA द्वारा मनाया गया था। इसके बाद सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित कर इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी। इसकी उद्देश्यों की हम बात करें तो श्रोताओं, आपको बता दें कि सहकारी समितियां किस प्रकार आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समुदायों को एकजुट करने में मदद करती हैं, इस बात पर प्रकाश डालना है। हर वर्ष इस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है जो सतत विकास और सहकारिता के लक्ष्यों को दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र का भी इसमें काफी योगदान रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत सहकारिता के वैश्विक महत्व को बढ़ाने और जमीनी स्तर तक इसे मजबूत करने के लिए व्यापक पहल भी की है। श्रोताओं, सहकारिता के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो जैसे कि स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण और आर्थिक भागीदारी, इसे समाज के निचले स्तर तक विकास पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 का विषय शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता है। सामाजिक न्याय, समावेशन और एकजुटता में सहकारी उद्यमों के योगदान की पुष्टि करता है। यह सहकारिता को जन केंद्रित संस्थाओं के रूप में मान्यता देता है जो विश्वास बनाने, सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करने और साझा आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के इर्द गिर्द समुदायों को एकजुट करने में मदद कर सकती हैं। संघर्ष, असमानता, सामाजिक विखंडन और घटते विश्वास से ग्रस्त विश्व में यह विषय याद दिलाता है कि शांति केवल हिंसा की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। इसके लिए समावेशन, निष्पक्षता, संवाद और आर्थिक सुरक्षा भी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा घोषित इस वर्ष का विषय सहकारी मॉडल की लोगों और समुदायों के बीच सेतु के रूप में कार्य करने की क्षमता को भी दर्शाता है। लोकतांत्रिक स्वामित्व, खुली सदस्यता और सामूहिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सहकारी समितियां ऐसे स्थान बनाती हैं जहां लोग सामाजिक और आर्थिक विभाजनों को पार करते हुए भाग ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं।
समुदाय में निहित और एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से जुड़ी ये समितियां आजीविका, सम्मानजनक कार्य, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक एकीकरण और लोगों, समुदायों और राष्ट्रों के बीच शांति निर्माण का समर्थन करती हैं। सहकारी संस्था का सबसे पहला रिकॉर्ड 14 मार्च सन 1761 को स्कॉटलैंड से मिलता है। सन 1844 में उत्तरी इंग्लैंड में कपास मिलों में काम करने वाले 28 कारीगरों के एक समूह ने पहला आधुनिक सहकारी व्यवसाय स्थापित किया था। श्रोताओं, ये थी कुछ जानकारी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के बारे में, और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आज ही के दिन यानी सन 1359 फोरली के फ्रांसेस्को द्वितीय आर्डेलाफी ने पोप कमांडर गिल डी अल्बोरनास के सामने आत्मसमर्पण किया। 4 जुलाई सन 1415 में एंजेलो कोरर ने पोप ग्रेगरी 12 के रूप में पोप पद पर अपना दावा त्याग दिया। सन 1453 में ब्रेसलाउ वर्तमान में ब्रोकला पोलैंड में 41 यहूदी शहीदों को दाव पर जला दिया गया। श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 4 जुलाई सन 1534 में राय शहर में क्रिश्चियन तृतीय को डेनमार्क और नॉर्वे का राजा चुना गया। क्लूशिनो की लड़ाई भी आज ही के दिन यानी 4 जुलाई सन 1610 को क्लूशिनो का युद्ध हुआ था। राजा सिक्समंड तृतीय की पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल सेना ने रूस और स्वीडन को हराया था। सन 1634 ईस्वी में न्यू फ्रांस में ट्रॉइस रिवियरेस शहर की स्थापना हुई, जो बाद में कनाडा का क्यूबेक प्रांत बना। श्रोताओं, आज के दिन यानी 4 जुलाई सन 1636 में मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी से निर्वासित होने के बाद रोजर विलियम्स ने रोड आइलैंड के प्रोविडेंस शहर की स्थापना की। आज ही के दिन यानी सन 1652 में पेरिस के होटल डी विले में हुए नरसंहार में 150 लोग मारे गए। आज ही के दिन यानी 4 जुलाई सन 1653 में इंग्लैंड की संक्षिप्त संसद का सत्र शुरू हुआ। 4 जुलाई सन 1672 में हॉलैंड राज्य ने शाश्वत अध्यादेश को अमान्य घोषित कर विलियम तृतीय को स्टेड होल्डर नियुक्त किया। सन 1708 होलो वजिन का युद्ध हुआ था, जो कि स्वीडिश राजा चार्ल्स 12 ने आश्चर्यजनक विजय में श्रेष्ठ रूसी सेना को हराया था। फोर्ट नेसेसिटी को छोड़ दिया गया था। आज ही के दिन 4 जुलाई सन 1754 में जॉर्ज वाशिंगटन ने फोर्ट नेसेसिटी को फ्रांसीसी और मूल अमेरिकी सेनाओं के हवाले कर दिया, जिन्होंने लूटपाट शुरू कर दी। सन 1774 में न्यूयॉर्क प्रांत में ऑरेंज टाउन प्रस्ताव पारित किए गए, जो ब्रिटिश संसद के दमनकारी कानूनों के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों में से एक था। श्रोताओं, अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8 बजे हैं, अब दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे।

0: श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहां निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए, ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग

0: मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होलांड लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3

0: کچھ علاقوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک کے کچھ علاقوں میں النینو کی وجہ سے معمول سے کم بارش اور خشک سالی کے امکانی حالات سے متعلق صورتحال پر لگاتار قریبی نظر رکھ رہی ہے۔ انہوں نے زراعت کی وزارت اور متعلقہ وزارتوں کو ہدایت دی کہ وہ چوکنا رہیں اور ریاستی سرکاروں کے ساتھ تال میل رکھیں تاکہ کسانوں کو صحیح فصل بونے کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ صحافت کو صداقت، معتبریت اور اعلی ترین پیشہ ورانہ معیارات پر عہد بستہ رہنا چاہیے۔ کل نئی دلی میں آرگنائزرز ویکلی کے 80ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے کہا کہ جب میڈیا مطلع کرتا ہے، سوالات کرتا ہے اور معتبریت برقرار رکھتے ہوئے عوامی مباحثے کو فروغ دیتا ہے تو جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جموں کشمیر میں سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے جموں میں ہر روز ہزاروں یاتری پہنچ رہے ہیں۔ اس موقع پر عقیدت مندوں، سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے نئی دلچسپ سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ جموں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ نے توی دریا کے کنارے کشتی کی سہولت شروع کی ہے۔ اس کے علاوہ پیڈل والی کشتیاں، رافٹس، موٹر بوٹس اور شکارا کی سہولیات سے بھی یاتری لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں کل سالانہ امرناتھ یاترا کے پہلے دن 12,168 یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے۔ ڈپٹی کمشنر اور سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹس نے بالتل کے دو بیس کیمپوں سے یاتریوں کو 3,880 میٹر بلندی پر واقع پوتر گفا کے درشن کے لیے روانہ کیا۔ اس دوران جموں کشمیر انتظامیہ نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں یاتریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پیشگی اندراج کے بعد ان کے لیے مخصوص کی گئی تاریخوں پر ہی پوتر گفا کے درشن کے لیے جائیں۔ ایران میں سابق روحانی پیشوا اعظم آیت اللہ سید علی خامنئی کی سرکاری طور پر 6 روزہ آخری رسوم کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایران کے سینئر رہنما، فوجی کمانڈرز اور غیر ملکی شخصیتوں نے آیت اللہ علی خامنئی کو ایران کے مصلح عظیم میں خراج عقیدت پیش کیا۔ بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پبترا مارگریتا نے آخری رسوم میں شرکت کی۔ ان کے جسد خاکی کا جلوس اگلے کچھ دن تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد مقدس شہر مشہد میں اس مہینے کی 9 تاریخ کو ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ سرکاری طور پر یہ سوگ 40 دن تک جاری رہے گا۔ بھارتی اعلی انتخابی کمشنر جناب گیانیش کمار آج 2 روزہ دورے پر مدھیہ پردیش پہنچیں گے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کا یہ ریاست کا پہلا دورہ ہوگا۔ پہلے دن وہ اندور پہنچیں گے جہاں وہ بوتھ لیول آفیسر بی ایل او کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ دورے کے دوسرے دن جناب کمار اومکاریشور اور مہیشور کے مذہبی اور تاریخی مقامات جائیں گے۔ آیورویدک علوم میں تحقیق کے مرکزی کونسل سی سی آر اے ایس نے کل نئی دلی میں اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی 5ویں میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ آیوش وزارت کے سیکرٹری ویدیہ راجیش کوٹیچا کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ وزارت نے بتایا کہ یہ میٹنگ شواہد پر مبنی آیوروید تحقیق کے ایکو نظام کو مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس ایکو نظام میں آیوروید کی تعلیم، تحقیق، سائنسی مواصلات اور ڈیجیٹل حکمرانی کو فروغ دینے کے مقصد سے 3 بڑے اقدام کیے گئے ہیں۔ سی سی آر اے ایس کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر ربی نارائن آچاریہ نے کہا کہ کونسل شواہد پر مبنی آیوروید تحقیق کے ایکو نظام کی تعمیر کا پابند ہے جس سے آیوروید کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہوگی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، مغربی مدھیہ پردیش اور اوڈیشہ میں شدید سے شدید تر اور کہیں کہیں پر انتہائی شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی طرح مشرقی راجستھان، مشرقی مدھیہ پردیش، ساحلی کرناٹک، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اگلے 2 دن کے لیے شدید سے شدید تر بارش کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس دوران آج دلی میں بادل چھائے رہنے اور ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ تقریباً 34 سے 36 ڈگری سیلسیس تک اور کم از کم 26 سے 28 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ महकमे ने जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में अगले चंद दिनों में गरज चमक के साथ औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई के साथ इक्का दुक्का मकामात पर अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने का अंदेशा जाहिर किया है। महकमे ने लोगों को नालों, झरनों और चट्टाने खिसकने के खतरे वाले इलाकों से दूर रहने का मशवरा दिया है। उधर केरलम में आज इक्का दुक्का मकामात पर शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के 14 जिलों में से 11 में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फीफा आलमी कप में अमरीका के मियामी गार्डन्स में खेले गए नॉकआउट के एक सनसनीखेज मैच में इजाफी वक्त दिए जाने के बाद अर्जेंटीना ने कैबो वर्डे को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है, जबकि अमरीका के शहर एलिंगटन में खेले गए एक दूसरे नॉकआउट मैच में मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरी T20 बैन अल-अक्वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था बारिश के सबब रोक देना पड़ा था। तीसरा मैच 7 जुलाई नॉटिंघम में खेला जाएगा। ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन आखिरी 2 मैचों की मेजबानी करेंगे। ये सीरीज 11 जुलाई को खत्म होगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैन अल-अक्वामी मैच की सीरीज खेली जाएगी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में होने वाली मीटिंग में हुकूमत ने 52,000 करोड़ रुपए के दिफाई सौदों को मंजूरी दी, जिसे मुसल्ला अफवाज की सलाहियत बढ़ाने और उन्हें जदीद तरीन हथियारों से लैस करने की सम्त में बड़ा कदम माना गया है। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजाना प्रताप ने वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान को जली सुर्खी के साथ शाया किया है, जिसमें वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को 2 टोक अल्फाज में बता दिया है कि पहले दहशतगर्दी का खात्मा होगा, फिर सिंध तास आबी मुहदे पर बात होगी। आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी रसूम के आगाज की खबर पर आज के बेशतर अखबारों ने तवज्जो मरकूज की है, जिसमें शिरकत के लिए भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। आखिरी रसूम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में अदा की जाएंगी।
0: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीनफील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एलनिनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्क साली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेब 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत रामपुर के प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी श्री प्रणव जैन से विशेष भेंट वार्ता। प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की है।
3: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं हम सब ये जानते ही हैं कि हर वर्ष जुलाई में 1 से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव सप्ताह देश भर में बहुत धूमधाम के साथ, रोचकता के साथ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को जोड़ते हुए मनाया जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जो न केवल प्लांटेशन के लिए सबसे मुफीद होता है, एक तरफ तो मानसून का आगमन, ह्यूमिडिटी या हवा का दबाव इस प्रकार से होता है कि इस समय अगर हम कोई भी प्लांटेशन ड्राइव करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पौधे पनपेंगे और आगे चलकर पेड़ का रूप लेंगे। इसी क्रम में जनपद रामपुर में, या हम कहें कि जनपद रामपुर के वन प्रभाग में क्या कुछ एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी आज लेते हैं। हमारे बीच में हैं प्रभागीय निदेशक श्री प्रणव जैन जी IFS, जो कि जानकारी देंगे क्या कुछ वर्तमान में इस समय जनपद रामपुर में हो रहा है। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद विक्रांत जी।
3: सर, जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये समय सबसे मुफीद है और प्लांटेशन ड्राइव न केवल गवर्नमेंट के द्वारा बल्कि जितने हमारे NGOs हैं या ऐसी संस्थाएं जो किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का कार्य करते हैं, वो सब इस समय बिजी रहते हैं, कार्य करते हैं, क्या कुछ वर्तमान में हो रहा है?
4: देखिए, जो ये वन महोत्सव का कार्यक्रम है ये लगभग 1950 से भारत देश में स्टार्ट हुआ। मेन इसका उद्देश्य यही होता है कि जैसे 1 से 7 जुलाई रखने का इसका तात्पर्य यही है कि भारत में मॉनसून लगभग पूरे देश में इस समय तक पहुंच जाता है
3: जी।
4: तो जब बारिश आने लगती है, मिट्टी में नमी होती है, तो सबसे सही समय होता है जब वृक्षारोपण किया जाए। लेकिन वन महोत्सव केवल एक वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, ये इससे बड़ा व्यापक है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वृक्षों के प्रति और जो हमारी धरती माँ है, पृथ्वी माँ है, उनके समीप ले जा सके। इसी क्रम में हमारा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार यही आह्वान है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाए और वृक्षारोपण को एक जन अभियान बनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का नारा दिया है, उसका तात्पर्य यही है कि जब हम वृक्ष लगाए तो उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाए
3: जी।
4: भावनात्मक रूप से जुड़ने पर हम उसका संरक्षण और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हमारे प्रदेश में पिछले गत वर्षों में लगातार 35 करोड़ के ऊपर वृक्षारोपण किया जा रहा है और इस साल भी जो लक्ष्य है वो लगभग 40 करोड़ तक जाएगा। उसी क्रम में जनपद रामपुर में भी इस वर्ष 29 लाख लगभग पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें लगभग 5 लाख वृक्ष जो है वो वन विभाग के द्वारा लगाए जाएंगे तथा अन्य पौध वितरित किए जाएंगे। इस हेतु हमारी नर्सरियों में पौधे तैयार कर लिए गए हैं। पूरे जनपद में 16 नर्सरियां हैं जिसमें अलग अलग स्थानीय प्रजातियां जैसे नीम, शीशम, सागौन, अमरूद, आम, आंवला इत्यादि प्रजातियां हैं जो स्थानीय प्रजातियां हैं, उनको तैयार किया गया है और लगभग 41 लाख पौधे हमारे पास उपलब्ध है। हम आमजन मानस से इस वन महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और यही कोशिश है कि वृक्षारोपण करके सभी को ये पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए सजग कर सके और आने वाले भविष्य के लिए एक बेहतर कल बना सके
3: जी। सर, हमने देखा है जब से माननीय प्रधानमंत्री जी इस मूवमेंट से जुड़े हैं, लोगों में और अधिक जागरूकता वृक्षारोपण को लेकर है, बहुत अधिक कार्य किया है सफल बनाने की ओर इस मूवमेंट को लेकर गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। इस वर्ष क्या कुछ विशेष है, क्या थीम है और किन चीजों को लेकर विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं?
4: जैसा कि आपने बताया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, लगभग 2024 में इस आह्वान को दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कि एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाए। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम भावनात्मक रूप से वृक्षों से जुड़ पाए
3: जी।
4: जब हम भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे तो उसको सिंचाई करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे। एक जो पौधा होता है वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह होता है
3: जी।
4: उसको स्टार्टिंग में बहुत संरक्षण चाहिए होता है, तभी हम उसको उसके फल हम प्राप्त कर पाएंगे। अधिकतर प्लांटेशन ड्राइव्स में कई बारी देखा गया है कि जो वृक्षारोपण है वो केवल पेड़ लगाने तक सीमित ही रह जाता है
3: जी।
4: केयर ना होने के कारण वो पौधा सूख जाता है, मर जाता है। तो इस वजह से हमको आवश्यक है कि हम पौधे को पूरा केयर करे स्टार्टिंग के कम से कम 3 वर्ष तक
3: जी।
4: और यही आह्वान था माननीय प्रधानमंत्री जी का। इस साल जो हमारा थीम है वो ये है कि इस पूरे वृक्षारोपण को हम एक वाले भविष्य के महायज्ञ के रूप में देख रहे हैं
3: जी।
4: जहां पर हम वृक्षारोपण करेंगे और अपनी भावी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट सुनिश्चित कर पाएंगे
3: जी।
4: इसके अलावा कुछ हमारे और इनिशिएटिव्स हैं जैसे हम बना रहे हैं, इसमें एक है कपी वन जो हम बना रहे हैं
3: जी।
4: उसका उद्देश्य ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि शहरों में बंदरों की समस्या बढ़ती जा रही है, उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जंगलों में और जो फलदार प्रजातियां हैं अन्य जगहों पर, उसकी कमी हो रही है, जिस वजह से जो बंदर हैं या और भी जानवर हैं वो शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं
3: जी।
4: तो ये एक मुहिम चलाई जा रही है प्रदेश सरकार द्वारा कि जगह जगह पर कपीवन बनाए जाए जहां पर फलदार वृक्षों का रोपण किया जाए
3: जी।
4: और वहां पर समय आने पर उन बंदरों का आवास के लिए एक प्राकृतिक स्थान बन सके
3: जी। सर आमतौर पर एक किसी भी जागरूक नागरिक मन में ये ख्याल आता है कि वृक्षारोपण तो वृहद स्तर पर हो ही रहा है, हर वर्ष होता है, लेकिन उसके बाद उन पौधों की सिस्टम है, कितने पौधे आगे पनप पाए, कितने किसी कारणवश रुक गए, क्योंकि हम देखते हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर लें कहीं ना कहीं कुछ जंगली जानवर या कुछ ना कुछ ऐसे तत्व जरूर होते हैं जो उन नए पौधों को हानि भी पहुंचाते हैं। तो इसकी क्या मॉनिटरिंग है और क्या सक्सेस रेट है पौधों के पनपने का, उनके आगे बढ़ने का जी?
4: इसमें देखिए ये सबसे बहुत ही कॉमन प्रश्न है कि पौधे लगते हैं तो कितना सर्वाइवल है, किस तरह से उसका अनुश्रवण किया जाए
3: जी।
4: पौधे मरने के कई कारण हो सकते हैं। पहला तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो बारिश में एक इरेटिक बिहेवियर दिख रहा है वो बहुत ही इसका एक मेजर कारण है। पहले झमाझम बारिश लगातार कुछ दिनों तक होती थी, लेकिन हम देखते हैं कि अभी जो बारिश है वो कुछ एक दो दिन होगी और फिर एक बड़ा पीरियड आएगा जब बारिश नहीं होगी
3: जी।
4: तो पानी के अभाव में पौधे सूखते हैं। उसके अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था ना होना जिस वजह से उस पौधे की चराई संभावित है या तो फिर किसी के द्वारा कुचला जाना संभावित है, तो ये भी अन्य कारण है। इसके लिए जो वृक्षारोपण का हमारे यहाँ टारगेट होता है उसका सतत अनुश्रवण एक जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से किया जाता है। वृक्षारोपण समिति के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी पौधे लगे हैं उनकी अंतरविभागीय जांच करा ली जाए। हम समय समय पर पौधे जो हमारी नर्सरियों में वो बीटिंग अप के लिए भी उपलब्ध कराते रहते हैं, यदि पौधों की क्षति हो गई हो तो उनको तत्काल बदल दिया जाए और हेल्दी पौधों वहां पर लगा दिए जाए
3: जी जी जी।
4: इसके अतिरिक्त हम कई सारे एनजीओज हैं या थर्ड पार्टीज भी हैं जिनके द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। एफएसआई द्वारा भी इसकी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा हम आमजन मानस से भी जुड़कर उनसे सदैव यह आह्वान करते हैं कि जो भी उनके आसपास जैसे सड़कों पर पौधे लगे हैं या उनके खेत के मेड़ पर पौधे लगे हैं उनकी सतत अनुश्रवण करें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये एक बिहेवियरल चेंज है जो हमको लाना पड़ेगा। हम जो भी पौधा लगा रहे हैं उसको बचाना हर एक नागरिक का कर्तव्य है
3: जी।
4: और इसी तरह से हम पौधों की जो सफलता है उसको सुनिश्चित करते हैं
3: जी। सर हम देखते हैं कि जनपद रामपुर में लगभग जो आंकड़े इंटरनेट पर उपलब्ध हैं 4% के आसपास फॉरेस्ट एरिया है और लगातार सरकार का ये आह्वान है कि हमें फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना है। लगातार फैक्ट्स इस प्रकार से आ रहे हैं कि एरिया बढ़ भी रहा है। जनपद रामपुर में वन आच्छादन किस प्रकार से हो, कितना फॉरेस्ट एरिया और बढ़ सकता है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि हम पहाड़ों के नजदीक तो हैं ही, हमारे यहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है वो भी बहुत अच्छा है, तो इस क्रम में क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं?
4: जो हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि हमको जो पूरे देश भर का फॉरेस्ट कवर है उसको 33% लेकर जाना है फॉरेस्ट और ट्री कवर, जो वर्तमान में लगभग 25% के आसपास है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का लक्ष्य ये है कि 2030 तक हमको जो अपना फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो 15% तक के आसपास लेके जाना है, जो वर्तमान में लगभग 10% है और जिसमें पिछले विगत 5 वर्षों में लगभग 1% की वृद्धि हुई है। जहां तक रामपुर की बात है, देखिए यहाँ पर कुछ वन ब्लॉक्स हैं जैसे पीपली वन ब्लॉक है, दंडिया वन ब्लॉक है, तो यहाँ पर तो प्लांटेशन होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो हम कर सकते हैं वो ये चीज है कि ज्यादा से ज्यादा एग्रोफॉरेस्ट्री के माध्यम से वनाच्छादन को बढ़ाया जाए
3: जी।
4: जिसमें यहाँ पर जो किसान है बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं हमारे जो किसान भाई हैं और वो लगातार अपने मेड़ों पर और अपने खेतों पर वृक्ष लगा ही रहे हैं, वो एक बहुत ही इसका अच्छा तरीका है। इसके अलावा जितनी भी सामुदायिक भूमि है, जो ग्राम समाज की भूमि है या जो सड़क के किनारे की भूमि है, हम उसको टैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सड़क के किनारे सामुदायिक भूमियां हैं उनको कवरेज उनका 100% सुनिश्चित कर लिया जाए, उन सभी भूमियों पर वृक्षारोपण किया जाए।
3: एक बात कही जाती है कि अगर हम किसी को जल्दी कुछ अच्छी चीज़ सिखा दें तो जीवन पर्यंत वो चीज़ उसको ध्यान रहती है, इसी क्रम में यदि हम बच्चों को और युवाओं को वृक्षारोपण से जोड़ें तो अच्छा रहेगा समाज के लिए भी और देश के लिए भी। क्या कुछ ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं डिपार्टमेंट द्वारा जिनमें युवाओं को या जागरूकता के जो ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें बच्चों को भी जोड़ा जा रहा है?
4: बच्चे जो हैं या जो युवा वर्ग है वो बहुत ही संवेदनशील है क्लाइमेट चेंज के लिए। उनको ये पता है कि जो एनवायरनमेंट है उसमें लगातार बदलाव आ रहा है और वो खुद भी बहुत सजग हैं इस चीज को लेकर। जहां तक सरकार की बात है तो सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है, इको क्लब्स के माध्यम से लगातार स्कूलों से संवाद बनाया जा रहा है, पर्यावरण निदेशालय द्वारा भी इसके लिए लगातार कुछ कुछ एक्टिविटीज कराई जाती है। इसमें मुख्य रूप से स्कूल में कॉम्पिटिशन हो गए, स्कूल में वृक्षारोपण एक्टिविटीज हो गई, पौध भंडारे हो गए, ये सब एक्टिविटीज हैं। इसके अलावा कुछ कुछ स्पेशल डे जैसे अर्थ डे या फिर बर्ड फेस्टिवल के समय बच्चों को विजिट्स भी कराए जाते हैं जिससे वो नेचर के समीप जा सकें और वहां पर देख सकें, उससे सीख सकें और उसकी इम्पोर्टेंस समझ सकें। इसके अलावा बच्चों को लगातार डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी कराते हैं और बच्चे बहुत जागरूक हैं इस चीज को लेकर। इस वजह से कम हम ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आगे

0: इंसानों के बीच में कौन संघर्ष हो रहा है, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट हो गया, स्पेशली जो तराई के रीजन्स है। कुछ जनपद जैसे मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर इससे काफी प्रभावित हैं।
1: जी
0: इसके बढ़ने का कारण मुख्य रूप से ये है कि जो तेंदुए की संख्या में वृद्धि हुई है। तेंदुआ लगभग एक साल में दो बार प्रजनन करता है और दो दो बच्चे उसके होते हैं, तो उस वजह से प्रजनन दर बढ़ रही है। और यहाँ पर गन्ने की खेती या फिर मक्के की खेती, कुछ इस प्रकार की खेती क्या जो हो रही है यहाँ पर, वो एक नेचुरली उनको हैबिटेट प्रोवाइड करता है।
1: जी
0: तो इस वजह से तेंदुए का मूवमेंट जो है वो तराई के इन क्षेत्र में हो रहा है जहाँ पर धान, मक्का, गन्ने की खेती हो रही है। दूसरी ओर कॉर्बेट नेशनल पार्क जहाँ है, जो जिससे हम सीमा के बिल्कुल समीप हैं,
1: जी
0: वहां पर भी टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है। और उधर से फिर क्योंकि ये दोनों कोप्रेडेटर्स हैं, एक ही प्रे के लिए लड़ते हैं,
1: जी
0: तो इस वजह से टाइगर बड़ा होने के कारण उन क्षेत्रों से तेंदुए को खदेड़ पा रहा है। इस वजह से मैदानी क्षेत्रों में लगातार तेंदुए की बढ़ोतरी हो रही है।
1: जी
0: अब इस संघर्ष को रोकने के लिए कुछ कुछ हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। हम लोगों को जागरूक करते हैं
1: जी
0: लगातार कि उस तरह के क्षेत्र में अकेले ना रहें, कम से कम दो तीन व्यक्ति हमेशा साथ में रहे, बहुत झुक के कार्य उस तरह से ना करें। इसके अलावा जब कंफर्म हो जाता है किसी क्षेत्र में तेंदुआ है, तो हम पिंजरा लगाकर उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं और उसको उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ते हैं।
1: जी लगातार गवर्नमेंट का एक ये मानना भी है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें भी जो प्लांटेशन है वो अधिक से अधिक हो, टाउन लेवल पर जो फॉरेस्ट्री है वो बढ़े, उसको लेकर क्या कुछ कार्य हो रहे हैं?
0: ये टाउन जो है यहाँ पर, क्योंकि मुख्य रूप से आबादी बस्ती है, तो अर्बन ग्रीनिंग बहुत ही एक आवश्यक कॉन्सेप्ट बन गया है आज की
1: जी
0: डेट में। इसके लिए अनेकों स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे नगर वाटिका योजना है। इसके अलावा नमो वन की भी योजना भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। अर्बन ग्रीनिंग के लिए हम लगातार नगर पालिका के संपर्क में रहते हैं। नगर पालिका के द्वारा वृक्षारोपण गत वर्ष में भी किया गया है, अनेकों ट्री गार्ड लगाए गए हैं, उनको संरक्षण दिया गया है। अर्बन ग्रीनिंग के लिए हमारे पास नेचुरल स्पेसेस की कमी रहती है, तो इस वजह से जो पार्क्स हैं या फिर जो सामुदायिक भूमियां हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सब जगहों पे वृक्षारोपण किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ जगह हम चयनित कर रहे हैं, यहाँ पर सीआरपीएफ का कैंप है, उधर भी भूमि चयनित करके हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नगर वन बनाया जाए।
1: ऐसी जगह जहाँ इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं या जहाँ किसी प्रकार से मूवमेंट की आवाजाही इस प्रकार से होती है कि पेड़ों से संबंधित स्मगलिंग का अगर कुछ मामला आता है सामने, आपके कार्यकाल में भी हमने देखा कि आपने एक बड़ा मूवमेंट चलाकर खैर की लकड़ी जो कि काफी कीमती मानी जाती है उसको लेकर कार्य किया और पूरा एक मूवमेंट चलाया। हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं भी कि क्या कुछ पूरा विषय था और इन ऐसी चीजों को लेकर जहां कीमती लकड़ियां या कीमती ऐसे प्लांट्स उनकी यदि कोई स्मगलिंग होती है या कुछ इस तरह की गतिविधियां होती हैं जो कि कानून के दायरे से बाहर हैं या उनको क्राइम माना जाता है, क्या कुछ उसके संबंध में होता है?
0: अवैध कटान जो है वो एक बड़ी समस्या रामपुर की रही है, क्योंकि ये एक इंटरस्टेट जनपद है, उत्तराखंड से लगा हुआ है, तथा जो हमारा वन ब्लॉक है पीपली वन क्षेत्र, वो लगभग 26 गांवों से घिरा हुआ है, जहां पर आवाजाही के अनेकों अनेक रास्ते हैं। और ये ट्रेडिशनली एक सेंसिटिव एरिया रहा है जहां तक इलिसिट फेलिंग का सवाल है। यहाँ पर जो मुख्य प्रजाति मिलती है खैर, खैर जो है वो कत्था बनाने के लिए जो पान मसाला गुटखा में यूज किया जाता है, उसका एक रॉ प्रोडक्ट है
1: जी
0: जिसकी बहुत ही सीमित सप्लाई है और डिमांड काफी ज्यादा है। इस वजह से लगातार जो इलिसिट फेलर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि खैर की लकड़ी का कटान किया जाए और इसको बेच दिया जाए। खैर का जो विक्रय मूल्य है वो लगभग 8 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिकता है, जो कि सागौन की लकड़ी से लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा है।
1: जी
0: इस वजह से यहाँ पर खैर का कटान की वजह से हमको सूचना मिली थी, जो प्रकरण हुआ था पंजाब से, हमने लगभग 30 क्यूबिक मीटर, लगभग 500 टन के आसपास हमने लकड़ी बरामद की थी।
1: जी जी
0: इसकी सूचना हमको मिली थी कि एक लकड़ी जो है वाहन भर कर जा रहा है, तो हमने उस पर एक जीपीएस फिट किया था। उसके बाद उस लकड़ी का हमने पीछा किया और उस ऑपरेशन में फिर हमने, जो रजपुरा पंजाब पटियाला में पड़ता है, वहां पर हमने छापेमारी करी, वहां पर हमको काफी लकड़ी मिली। उसके अलावा हमने अभियुक्तों को भी वहां से गिरफ्तार किया और उनको यहाँ पर लाए। उसका परिणाम ये हुआ कि वर्तमान में स्थिति संतोषजनक है, वहां पर कटान जो है वो पिछले दिनों के कंपैरिजन में कम हुआ है और हम लगातार उस जंगल का अनुश्रवण कर रहे हैं। वहां पर लगातार पेट्रोलिंग गश्त हमने बढ़ाई है। इसके अलावा कुछ बैरियर्स भी इंस्टॉल किए हैं ताकि आवाजाही को हम रेगुलेट कर सकें।
1: जी
0: इसके अलावा हमने वायरलेस कम्युनिकेशन और मोटरसाइकिल्स भी अपने स्टाफ को दी है, जिससे कि वहां

0: पर सतत गश्त की जा सके और हम अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रेजेंस जंगल में बढ़ा सकें।
1: जी श्रोताओं, हमें लगता है कि लगभग हर पहलू को हमने छुआ है, और अब चाहेंगे हम कि श्री प्रणव जैन जी ज़रूर हमारे श्रोताओं को संदेश दें, क्या कुछ वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत वो कर सकते हैं, अपने स्तर पर क्या कुछ ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जिससे कि वृक्षारोपण को बढ़ावा मिले, ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया भी बढ़े, ग्रीनरी बढ़े, और जो चिलचिलाती धूप या गर्मी हम देखते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ राहत भी पाएं।
0: एक छोटा सा तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, सभी श्रोताओं के सामने। एक वृक्ष लगभग 100 से 120 किलो ऑक्सीजन प्रति वर्ष निकालता है
1: जी,
0: और एक प्रत्येक मनुष्य लगभग 700 किलो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो हर वृक्ष हर व्यक्ति को जीने के लिए कम से कम उसका इतना तो दायित्व बनता है कि प्रत्येक वर्ष 7 वृक्ष लगाए और उनकी देखभाल करे सिर्फ सांस लेने के लिए। तो मेरा सभी श्रोताओं से यही अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। यदि आपके पास पौधों की उपलब्धता नहीं है तो वन विभाग से संपर्क करके आपको निःशुल्क पौध मिल सकता है
1: जी।
0: उसके अतिरिक्त आप अपने जो भी जहां भी जगह मिले उस पर वृक्ष लगाएं, उसको संरक्षण दें और अपने आसपास के परिवारजनों को मित्रों को उत्साहित करें कि इस वन महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, क्योंकि यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो संभवतः हमारे जीवन में भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो शायद हम भी ना बचे, और ये हमारा एक दायित्व है जो हम अपने प्रति और अपनी धरती माँ के प्रति हम सभी को निभाना है। हम धरती को अपना माँ मानते हैं तो हमारा ये दायित्व है कि हम अपनी माँ को संरक्षण दें, हम अपने जो भी अन्य जीव हैं उनके प्रति भी दया भाव रखें और वृक्षारोपण करें। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इस सुंदर संदेश के साथ ही अब हम इस भेंटवार्ता को विराम की ओर ले चलते हैं। आप थे प्रभागीय निदेशक श्री प्रणव जैन जी भारतीय वन सेवा से। वर्तमान में वन महोत्सव सप्ताह में क्या कुछ कार्य हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हैं जिनको लगातार पब्लिक के बीच में लाया जा रहा है, जागरूकता के मूवमेंट्स चलाए जा रहे हैं, उस पर आपने विस्तार से बात की। सर, आप समय निकालकर आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए और महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत रामपुर के प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी श्री प्रणव जैन से विशेष भेंट वार्ता। प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की थी।

0: हमारी आज़ादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

0: कौमों को नाज है वतन पर मर मिटने वालों पे।
1: उठकर जरा तो देखो दुनिया का रंग क्या है, रफ्तार क्या जहां की, कौमों का ढंग क्या है।

सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।

0: और भी आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की जबान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

0: कौमों को नाज है वतन पर मर मिटने वालों पे।
1: उठकर जरा तो देखो दुनिया का रंग क्या है, रफ्तार क्या जहाँ की, कौमों का ढंग क्या है। मेरे

0: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं जिले की हलचल आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
1: जनपद उन्नाव में बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सदर विधानसभा के ग्राम पंचायत डीह में 570 करोड़ की लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में पहुंचकर सर्वप्रथम सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया तथा बाल विकास सेवा एवं पोष्टाहार विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पहुंचकर दो गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर पोषण पोटली भेंट की गई व दो नवजात शिशुओं का अनुप्राशन कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डेमो चेक प्रमाण पत्र व आवास की चाबी देकर सम्मानित किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्नाव आध्यात्मिक साहित्य व क्रांति की धरा है। उन्होंने कहा कि आज जनपद उन्नाव हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। विकास की हर योजना उन्नाव में लागू है। आज यहां की कनेक्टिविटी हर तरफ से 4 लेन हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए उन्नाव वासी लखनऊ को बाईपास कर सीधे दिल्ली प्रयागराज जा सकते हैं। कानपुर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। उन्नाव व कानपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गंगा नदी में अतिरिक्त ब्रिज की भी मांग पूरी की गई है। उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर व गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए लगभग 700 एकड़ और 200 एकड़ लैंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए उन्नाव जनपद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। चारों ओर रिंग रोड बनेगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तैयारी चल रही है। सरकार 100 वर्ष की कार्य योजना को लेकर कार्य कर रही है।
2: यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो सके इसके लिए हम लोगों ने उन्नाव जनपद में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर दी है और तेजी के साथ नए उद्योग अब उन्नाव जनपद में लगेंगे। यहाँ के नौजवानों को यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा।
1: जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड परिसर में राज्य ललित कला अकादमी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा व जिलाधिकारी घनश्याम मीना की उपस्थिति में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों शिक्षकों समाज सेवियों द्वारा सामूहिक योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग को मानव जीवन में महत्व के बारे में कहा कि योग स्वास्थ्य संतुलित एवं तनाव मुक्त जीवन का आधार है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान किया। जिले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोरामू में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर उन्होंने निराश्रित 108 बालिकाओं से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने बालिकाओं की शिक्षा स्वास्थ्य रहन सहन और उनके भविष्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली। उन्होंने बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि समाज के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और बेहतर वातावरण प्रदान करना सरकार और समाज दोनों की ही सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर राज्यपाल ने निराश्रित बालिकाओं की सुरक्षा देखभाल और सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बालिकाओं के समुचित पालन पोषण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि बालिकाओं को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए। जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला अस्पताल परिसर से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक करना। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा का संदेश दिया। जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों ने हाथों में संचारी रोगों से बचाव संबंधी संदेश लिखी तख्तियां ले रखी थी। उन्होंने नारे लगाकर लोगों को अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। छात्र छात्राओं ने लोगों को जल भराव से होने वाली खतरे के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि घरों के आसपास पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
0: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का।
3: इस सरकार की एक जनपद एक उत्पाद ODOP और वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन पहल के तहत हापुड़ के पेठे को आधिकारिक तौर पर शामिल किए जाने से हापुड़ के पेठा निर्माताओं और जनता में काफी हर्ष है। हापुड़ के पेठे को आगरा के समान राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। वर्तमान में जनपद हापुड़ में 6 इकाइयां स्थापित हैं जो तरह तरह के पेठे बना रही हैं। सरकार की इस पहल के तहत हापुड़ जनपद में लगभग 150 नई पेठा इकाइयां लगाई जाएंगी जिससे पेठा उद्यमियों और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक इकाई पर पर 10 लाख रुपए तक का अनुदान सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। अब हापुड़ के पापड़ के बाद हापुड़ के पेठे को भी नई पहचान मिल रही है।
4: ये जो ओडीओसी में हापुड़ के पेठे को जो शामिल किया गया है, इससे न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी पेठे की पहचान बनेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार का, जिन्होंने हमारे हापुड़ के पेठे को भी ओडीओसी में लिया।
3: विश्व योग दिवस के अवसर पर हापुड़ जनपद में जगह जगह योग शिविर आयोजन किए गए, जिसमें लोगों ने योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के गुर सीखे, योग क्रियाओं को करके स्वस्थ रहने और योग को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। हापुड़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह पहुंचे, जिन्होंने योग क्रियाओं को करके योग से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक नई पहचान दी है। वहीं हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने अवैध भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का भी काम किया है। जिले में हजारों वर्ग मीटर में हो रही अवैध प्लाटिंग पर एचपीडीए ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। एचपीडीए की कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण ने ऐसे कॉलोनाइजर को चिन्हित भी किया है जो अवैध प्लॉटिंग कर सरकार के राजस्व को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। एचपीडीए क्षेत्र में कई जगह भू माफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और बिना मानचित्र स्वीकृति प्लॉटिंग की जा रही थी, जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। साथ ही राजस्व को ऐसे भू माफिया चूना लगा रहे थे, साथ साथ लोगों को भी धोखा दिया जा रहा था, जिसकी सूचना के आधार पर एचपीडीए के अधिकारी और कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर ऐसी अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया जो राजस्व को चूना लगा रही थी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी कॉलोनी या जगह पर प्लॉट न खरीदें जिसका मानचित्र स्वीकृत न हो, और ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो लोग मानचित्र स्वीकृति का वादा करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचने का काम करते हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने यह भी अपील की है कि अप्रूव्ड कॉलोनी में ही प्लॉट खरीदें ताकि सुरक्षित रह सकें। जनपद हापुड़ में आयुष्मान योजना लोगों के स्वस्थ रखने में वरदान साबित हो रही है। आयुष्मान योजना से लोगों को स्वस्थ होने का वरदान मिला है। 15 जून से आयुष्मान कार्ड के लाभ के लिए विशेष शिविर आयोजन किया जा रहा है। जनपद में कार्ड धारक इसका लाभ ले रहे हैं। अस्पतालों में आयुष्मान वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें आयुष्मान कार्ड धारकों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड का लाभ देकर जन जन को स्वस्थ रखने का काम किया, जिसके लिए जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रही है। हापुड़ जनपद में पल्स पोलियो अभियान के तहत 692 बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जनपद हापुड़ में जिला अधिकारी कविता मीना के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 692 पोलियो बूथ का सफल आयोजन किया गया। अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा ने बताया कि जनपद में कुल 274,600 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। 15 जून से जनपद में आयुष्मान केंद्रों, सीएचसी, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत सहायकों के द्वारा ऐसे लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा रहे हैं जो कार्ड बनवाने से छूट गए थे। ऐसे लोगों को कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जनपद हापुड़ में मुहर्रम के पर्व पर ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस निकाला गया। जनपद हापुड़ में अंजुमन हुसैनी के रजाकारों ने करबला के शहीदों को इस शहादत को याद करते हुए खिराजे अकीदत पेश की। आगामी मानसून एवं संभावित बाढ़ की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हापुड़ द्वारा ब्रजघाट गंगा गढ़मुक्तेश्वर में व्यापक बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखना था, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया गया।
0: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव भारत देश के। इसमें आज आप सुनेंगे महादेवी वर्मा की गौरव गाथा।
1: जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार। हंस उठते पल में आद्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्वार, जो तुम आ जाते एक बार। प्रस्तुत रचना हिंदी साहित्य की एक प्रमुख लेखिका, कवयित्री और शिक्षाविद महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग की एक प्रमुख हस्ती मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा का साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य को नए आयाम देने में महत्वपूर्ण रहा है। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीराबाई कहा जाता था, क्योंकि वह अपनी कविताओं में एक प्रेमी से बिछड़ने के बाद के कष्ट और पीड़ा को काफ़ी भावनात्मक तरीके से पेश करती थीं। महादेवी वर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज इलाहाबाद में पूरी की और बाद में संस्कृत में एमए किया। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और महिला मुद्दों का विवरण मिलता है। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से महिलाओं के अधिकार, उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की बात की। उनकी रचनाएं नारीवादी दृष्टिकोण को प्रकट करती हैं और वे नारी मुक्त आंदोलन की प्रबल समर्थक थीं। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाओं में यामा, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत और दीपशिखा शामिल हैं। उनकी कविताओं में भावनाओं की गहराई, प्रकृति का सुंदर चित्रण और मानवीय संवेदनाएं प्रमुखता से मिलती हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का सुंदर चित्रण किया है और उनके माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है। महादेवी वर्मा की निबंध और गद्य रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। उनकी प्रमुख गद्य रचनाओं में पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं शामिल हैं। इन रचनाओं में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, समाज की विसंगतियों और मानव संवेदनाओं का वर्णन किया है। उनकी लेखनी में सरलता, स्पष्टता और संवेदनशीलता की विशेषता है। महादेवी वर्मा को उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक सेवाओं के लिए अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका जीवन और साहित्यिक यात्रा हमें प्रेरणा देते हैं और उनके लेखन से हमें समाज और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर मिलता है। महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ। उनकी साहित्यिक धरोहर आज भी हिंदी साहित्य को समृद्ध बना रही है और नई पीढ़ी को प्रेरित कर रही है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे महादेवी वर्मा की गौरव गाथा। 9:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत तबला और पखावज पर युगलबंदी। इसमें तबला था मुन्ने खां का और पखावज था रामजी लाल का। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

सभी सुनने वालों को शाजिया परवीन का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला नगमा फिल्म महबूब की मेहंदी से, फरमाइश आप सबकी। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान, आसिम खान। जिला अस्पताल के पास से गजन खान, शमा परवीन, शमशाद अली अजम, गुलफशाह, शहनाज बाबू अंसारी, राजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी। मोहल्ला मजार चांदशाह मियाँ जिला रामपुर से मोहम्मद रमजान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, फौजिया रोशनी, शायना काजल, अनमता और आशुभाई मंसूरी। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और अफजाल इब्राहिमी। जमशेदपुर से तस्नीम कौसर, इशिता साहनी, प्रियंका मोदी, सोनम और अफजाल मलिक। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रयांश ठाकुर। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। चंदन नगर सातारा से सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति वाघमारे, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे और श्रमेण वाघमारे। कोल्हापुर से विजय चेहवाण, तेजस्विनी चेहवाण, अंकिता चेहवाण, अनिकेत चेहवाण और माया चेहवाण। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। डोंगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जय राम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म हमराज से, फरमाइश आप सबकी। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। कोल्हापुर से तुषार कुरणे, प्रसिक कांबले, एकता कांबले, मेघना कुरणे, उत्कर्षा कांबले, अरुण यलगुणकर, अतुल गौतमी, धम्मदिना, अरुण काले, एडी कांबले। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। नाज मंजिल महसूल सीतामणि बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख और चीना शेख। क्वात बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर। नूर महल महसूल से हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू। जिला मुरादाबाद बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय सैनी, आंचल आकांक्षा, आकाश, विक्की सैनी, छवि दक्ष, देवपाल सैनी, मानवी रुद्र। मझोली से खामानी सिंह, हीरावती देवी और सभी सैनी परिवार। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। बोरखेड़ा पीरामल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चैतन नाहटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा और कुश मूड़त। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम सैफी। मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। जामरूनता अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, कुमारी साध्वी जोशी, परभणी हुन और गणेश हरगांवकर। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, जय कुमार, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल मिस्त्री, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता और आशु गौतम। पुणे से पंकज बाड़ोदे और आर्या प्रियंका। जरूर बरूर से बाबा साहेब बाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, चंद्रप्रभा बाड़ोदे। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान। सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गमाड़कर, राही श्रीमती सरिता गमाड़कर, प्रिंस एकांश गमाड़कर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली, शैलेश गमाड़कर, श्वेता सुमित गमाड़कर, ध्वनि गमाड़कर उर्फ परी। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गमाड़कर, प्रणीता गमाड़कर, लाड लाड टुक टुक गमाड़कर। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। लेवाखेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाऊ विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो ऊषा सोरना खर्चे, स्वाति प्रियाक चौधरी और मालती चौधरी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। श्री रोगडेश्वर नगर पांगरा शिंदे तहसील वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से टेलर रामचंद्र धोंडीबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिकू इंगोले, रमाबाई सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि, मंजुषा गौतम इंगोले, नामदेव राव शिंदे पाटिल, मास्टर विलास शिंदे पाटिल, सुनील जबडे। अशोकनगर वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके। जीजा माता नगर हिंगोली महाराष्ट्र से लक्ष्मी उत्तम कांबले। तमसा रोड तहसील हदगांव से श्याम राव पटघणे, बेबी बिट्टू पटघणे। कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन निशा असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम का ये अगला व अंतिम गीत फिल्म कश्मीर की कली से फरमाइश आप सबकी छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि श्रीमती शीतल राजेश, जेतुका किशनपुर से आलम दिलकश शबाना नाज, रिजवान राही इमरान राजा, आलम शेख शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण, बोरला धरण से दत्ता घायल, सुनीता घायल, गजानन घायल, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन गायत्री ढोमड़े, वैष्णवी ढोमड़े, चंचल अर्जुन गमनेकर और धीरज सव्वा शेरे, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद, अभयनंद, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित व मोहित, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी रितेश, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार एवं इनका समस्त परिवार, बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, राम निवास अग्रवाल, छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी कुंती साहू, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

0: जादू सब बात संभाला दिल को पर हो के रहा बेताबू तारीफ करूं क्या उसकी।
1: इसके साथ ही आज का आपके अनुरोध पर अब संपन्न हुआ। शाजिया परवीन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर।

सभी सुनने वालों का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुनहरा दौर में, और मैं हूं आपकी होस्ट शाजिया परवीन। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं सन 2010 के दशक की कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का ये पहला नगमा फिल्म धूम 3 से। गायक कलाकार हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव।

अभी आपने सुना फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बैंड बाजा बारात से

अभी आपने सुना एक था टाइगर फिल्म से ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुना रहे हैं 2010 के दशक के कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म गुंडे से

कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म जब तक है जान से, गायक कलाकार हैं हर्षदीप कौर।

जब तक है जान। अभी आप जो गीत सुन रहे थे ये उस फिल्म का नाम है, गायक कलाकार थे AR रहमान और हर्षदीप कौर। इस गीत के साथ कार्यक्रम सुनहरा दौर अब संपन्न करने की शाजिया परवीन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर 11 बजे है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। धरोहर के अंतर्गत आज सुनिए नाटक हर जाई।

0: रात भी हो गई, धुंधला गई आंखें अपनी, भूलने वाले मैं कब तक तेरा रास्ता देखूं?
1: भूखे रहकर भी क्या मिलेगा बेगम साहिबा, 12 बज रहे हैं, आप खाना खा लीजिए। पता नहीं साहब कब आए, रोज भूखी ही सो जाती हैं।
0: आपने खाना खा लिया शर्मा भी?
1: अगर आप खा लें तो हम भी खा लेंगे, साहब तो रोज ही देर से आने लगे हैं। ऐसा तो नहीं होता था पहले, न जाने क्या हो गया है उन्हें।
0: हाँ, नहीं होता था और आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। ऐसा कीजिए शन्नू भी, आप खाना खा लिया कीजिए, हम तो आदी हो गए हैं इंतजार करने के।
1: भूखे ही सो जाती हैं आप, अच्छा नहीं लगता। अल्लाह रहम करे, ये अच्छी बातें नहीं हैं। कहीं ऐसा भी होता है रोज रोज?
0: आप जाइए खाना खा लीजिए।
1: जा रहे हैं, नमक खाते हैं आपका, इसलिए कह दिया, अब नहीं कहेंगे।
0: क्या करें, ये तो अब रोज की कहानी हो गई। 9 बजे और मोबाइल बंद कर दिया जाता है। पूछना तो गुनाह है, आंखें सवाल करेंगी तो कह देगा काम ज्यादा है, फैक्ट्री में ही खाना मंगवा लिया था। शिकवा करूंगी तो बात पड़ जाएगी।
2: आप जाग रही हैं अभी तक? कितनी बार कहा है मेरे इंतजार में मत जागा करो, खाना खाकर सो जाया करो। कैसे समझाऊं आपको? अरे भाई, आजकल फैक्ट्री में काम बहुत है, वही मंगा लेता हूँ खाना। सिचुएशन को समझती क्यों नहीं हो? जागती रहती हो बेवजह, टेंशन होती है मुझे।
0: शमा को तो हर हाल में जलना होता है, आप मेरी फिक्र ना करें।
2: मतलब क्या है तुम्हारा? मैं जलने पर मजबूर कर रहा हूँ तुम्हें?
0: जी नहीं, शमा की तो फितरत में ही जलना है। आपका दामन सलामत, अपने कातिल हम सही। शमा अपनी फितरत को नहीं बदल सकती।
2: वाह भाई वाह, बड़ा हसीन अंदाज है तुम्हारी इस तंज का। शायराना अंदाज में सब कुछ कह जाती हो, शमा अपनी फितरत नहीं बदल सकती। वाह भाई वाह,
0: कहने से भी क्या हासिल, बस जलते रहो सुबह होने तक।
2: अब कहाँ जा रही हो?
0: आपके कपड़े लेने, चेंज कर लीजिए।
2: आप खाना खा लें, मैं खुद चेंज कर लूंगा। शन्नू भी कहाँ है?
0: कब तक जागती, हमने कह दिया था सो जाइए।
2: क्या मुसीबत है, दिन भर फैक्ट्री में टेंशन और घर में आओ तो
0: आप

0: टेंशन न लीजिए, मैं सोने जा रही हूँ।
1: लेकिन कहाँ जा रही हो तुम सोने?
0: दूसरे कमरे में।
1: दूसरे कमरे में क्यों?
0: ताकि मेरी कुर्बत से आपको और ज्यादा टेंशन न हो। गुड नाइट। हेलो शमा। ओह हाय आशा।
2: हाय।
0: अरे यार, 5 साल में कितनी बदल गई तू।
2: यस।
0: YM एडवर्टाइजिंग की डायरेक्टर बनने के बाद क्या पर्सनालिटी निकल कर आई है तेरी। वाओ।
2: थैंक यू। और तुझे क्या हो गया, कैसी हो रही है तू?
0: मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे बहुत दिन बाद देखा है ना तूने, इसलिए ऐसा लग रहा है।
2: मुझसे छुपा रही है तू। 15 साल से मैं तुझे जानती हूँ। साथ में MBA किया है भाई। हॉस्टल में एक रूम में रहे हैं।
0: हाँ हाँ।
2: अरे जा, क्या कुछ नहीं जानती मैं तेरे बारे में। कितनी बार कहा था तुझसे, बार बार समझाया भी। शादी से पहले 5-6 साल तो जॉब कर ले, लेकिन नहीं, तेरे सर पर तो जावेद की मोहब्बत का भूत सवार था। हैंडसम है, प्यार करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, याद है? यही सब तो तूने कहा था। अरे हाँ याद आया, ये भी कहा था तूने, अरे भाई 5 साल बाद भी तो शादी करनी है, क्यों ना अब कर लूं?
0: तो इसमें झूठ क्या है? यू नो, ऐसा ही तो है जावेद।
2: हाँ ऐसा ही है, बट एक बात झूठ है।
0: क्या, कौन सी बात?
2: वो तुझसे प्यार करता था लेकिन अब नहीं करता है।
0: किसने कहा तुमसे? बहुत ख्याल रखता है मेरा।
2: सूरत देखी है तूने अपनी, ऐसी ही थी तू। प्यार करने वालों की सूरत ऐसी तो नहीं होती। क्या इतना भी मैं नहीं समझ सकती? यू आर नॉट हैप्पी।
0: अरे यार छोड़ इन बातों को, अरे बैग तो। शनोबी
3: जी। बेगम साहिबा।
4: आधार।
2: नमस्ते।
0: अरे शनोबी, ये हमारी दोस्त है, बेंगलोर से आई है और यही रहेंगी हमारे साथ। आशा नाम है।
2: और बाप का नाम है रजनीश शर्मा। अब आपको माँ का नाम भी बताऊं?
0: बस माँ का नाम हम बता देंगे
2: जी।
0: शनोबी तुम ऐसा करो, कॉफी बना कर लाओ जल्दी से।
2: जी, जी।
0: ये इस तरह क्या देख रही हो? जाओ ना।
3: अल्लाह नजर बस से बचाए बेगम साहिबा। बहुत दिन बाद आपको हंसते हुए देखा है। दिल खुश हो गया हमारा, बड़ा अच्छा लगा बेगम साहिबा।
0: अच्छा जल्दी से ले आइए कॉफी।
2: हाँ। अब बता, बोल कहाँ तलक छुपाएगी चेहरे की उदासी को? क्या कह रही थी शनोबी? बहुत दिनों बाद हंसते हुए देखा है, सच सच बता क्या बात है। देख झूठ मत बोलना, बता क्या बात है, खामोश क्यों है, बोलना।
0: अरे यार अब छोड़ ना इन बातों को, शन्नो भी कॉफी लेकर आ रही है। अरे पहले कॉफी पियो फिर बातें करेंगे।
2: ओके। लेकिन बात तो अब करनी ही पड़ेगी, छुपा कर रखती है ना दिल में।
0: हेलो।
5: हाँ शमा बोलो जल्दी।
0: थैंक गॉड आज आपका फोन बंद नहीं है, वरना हमें ही फैक्ट्री आना पड़ता।
5: देखो शमा, बात को मत, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। हमें फैक्ट्री आना पड़ता, मतलब क्या है तुम्हारा?
0: वो मेरी दोस्त है ना आशा, वो आई हुई है, मेरे सामने ही बैठी है।
5: ओ, आशा आई है? देखा नहीं कभी, बस नाम सुना है।
0: देखना आप आज जल्दी आ जाइए, साथ में डिनर करेंगे।
5: डिनर करेंगे? मैं समझा नहीं।
0: जी डिनर, प्लीज कोई बहाना मत बनाइएगा।
5: बट शमा तुम्हें तो मालूम ही है मैं तो।
0: नो एक्सक्यूज, हम दोनों डिनर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके।
1: अरे मेरी बात तो सुनो शमा। ओहो फोन भी बंद कर दिया।
6: सॉरी डियर, आज मैं लेट हो गई, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। क्या हुआ, कोई सीरियस बात है? अरे यार कुछ तो बोलो।
1: वो शमा की दोस्त आई है, आज डिनर घर पर ही करना पड़ेगा।
6: नो प्रॉब्लम, हम भी चलते हैं आपके साथ, इसी बहाने आपकी वाइफ से भी मिल लेंगे। आपने तो आज तक ना अपना घर दिखाया ना वाइफ से मिलाया, शमा नाम है ना उनका?
1: हाँ, है तो शमा ही नाम।
6: तो फिर चलिए ना, घर के खाने का कुछ और ही मजा है। सालों गुजर गए, ना हमने घर की सूरत देखी ना घर का खाना खाया। बस नाम को अपना घर कह लो। जब माँ बाप ही नहीं रहे तो घर में बाकी क्या रहा। बहन रहने आ जाती है तो घर में रोशनी हो जाती है, वरना दरवाजे पर ताला और घर में अंधेरा। क्या जिंदगी है यार। अब तुम क्या सोचने लगे? एनी प्रॉब्लम? अरे बोलते क्यों नहीं?
1: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नो प्रॉब्लम, आई एम ओके।
6: अरे बाबा, नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, घर पर ही मंगा लूंगी खाना। पहले भी तो तन्हा खाती थी, आज भी खा लूंगी। वैसे भी साथ में खाना खाने का हक तो बीवी का है, और सच पूछो तो हम शमा की हक तलफी कर रहे हैं, और आप भी।
1: ये आज तुम कैसी बातें कर रही हो नज़मा? अरे तुम्हारे साथ खाना खाने में हक तलफी की बात ही क्या है, रोज तो खाता हूँ।
6: नहीं है, ऐसा मानते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल।
6: सोच लीजिए क्या कह रहे हैं आप।
1: अरे यार क्या बातें लेकर बैठ गई। नहीं जाऊंगा, मना किए देता हूँ, नो प्रॉब्लम।
6: सॉरी जावेद, हक तलफी, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। ठीक ही तो कह रहे हो तुम, नहीं ठीक नहीं कह रहे हो।
1: समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। तुम कुछ कहना चाहती हो?
6: प्लीज आप घर जाइए, आपके मेहमान भी इंतजार कर रहे होंगे।
1: लेकिन नजमा,
6: आज मैं भी बहन के साथ खाना खा लूंगी, वो अकेली है घर पर।
1: ओके, एज यू विश।
2: भाई जमाना गुजर गया जावेद साहब, जब शमा ने शादी के फोटोग्राफ्स हमें भेजे थे।
1: अच्छा?
2: बहुत तारीफ की थी आपकी।
1: अच्छा ये तो बताओ कि शमा ने क्या कहा था?
2: बताओ।
0: अरे कहा की बातें लेकर बैठ गई। अरे आशा, मैंने क्या कहा, उसने क्या कहा, छोड़ ना इन बातों को, कोई और बात करते हैं।
1: डोंट माइंड आशा, हमें अच्छा लगेगा तुम्हारे मुंह से सुनना, ये तो हमसे बात ही नहीं करती। हाँ क्या कहा था शमा ने?
2: बता दूं शमा?
1: अरे बताओ ना।
2: तुमने कहा था शमा,
0: क्या
2: जावेद हैंडसम है, वेल मैनर्ड है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो कि वो मुझसे प्यार करता है, और मैं भी। अरे अब मुझे क्यों घूर रही हो, खुद देख लो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ।
0: आशा,
1: थैंक यू शमा, थैंक यू वेरी मच।
2: हाँ जी, और ये प्यार तो अब भी करती है आपसे, मैं जानती हूँ।
6: हमने खाना लगा दिया है बेगम साहिबा।
2: अरे बही, बहुत देर से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी, बड़ा मजेदार खाना बनाया होगा शन्नू भी।
6: अरे अरे, हमने नहीं बनाया है, बेगम साहिबा ने बनाया है।
2: अच्छा,
6: कह रही थी आज हमारे साथ साहब भी खाएंगे, खाना हम बनाएंगे।
0: शन्नू भी आप जाइए, हम आ रहे हैं।
2: ओहो, तो ये बात है, आज पतिदेव की सुगंध भी खाने में शामिल हो गई है, महक रहा है भाई सारा घर। हेलो
4: हेलो।
2: हाँ जी, आशा शर्मा स्पीकिंग। माय गुडनेस, डॉक्टर रमा तिवारी स्पीकिंग, कितने जमाने के बाद तेरी आवाज सुनी है। हाँ हाँ, अरे आजा भाई आजा। हाँ हाँ, अरे मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं, नहीं नहीं मैं एड्रेस मेल कर रही हूँ तुम्हें। अरे जल्दी आना, डिनर साथ में ही करेंगे, और सुनो डॉक्टर तिवारी को भी साथ में ले आना। नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं है यार, तू आ जा। हाँ इट्स ओके।
0: रमा तिवारी?
2: अरे तुझे क्या हुआ अब? तू तो रमा तिवारी के नाम पर इस तरह चौंकी जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। बैंगलोर आई थी वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में पैथोलॉजी के किसी सब्जेक्ट पर पेपर पढ़ने। भाई मैं तो जा नहीं पाई थी कॉन्फ्रेंस में। हाँ बट डॉक्टर शोभा माथुर की मुलाकात हो गई थी, तू तो जानती है दोस्ती करना हॉबी है मेरी। बस हो गई दोस्ती उससे। यार अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर मिल जाए ना तो मजा ही मजा है। देख भाई मैं तो अकेली हूँ, बस प्यार करने वालों की बातें सुनकर एंजॉय करती हूँ। आपकी क्या राय है जावेद साहब?
1: जी मेरी
2: किन ख्यालों में गुम है आप? मिस्टर जावेद मैं आपसे ही मुखातिब हूँ। हेलो
1: जी, वो मैं बिजनेस मैटर में इन्वॉल्व हो गया था। सॉरी मिस आशा, कुछ प्यार की बात कर रही थी आप?
2: वाह जावेद साहब वाह, पक रही हूँ जुनून में क्या क्या कुछ कुछ न समझे खुदा करे कोई। शहीद रमा आ गई, आप बैठिए जावेद साहब, मैं जा रही हूँ। आइए आइए डॉक्टर साहब। आइए,
4: कैसी हो?
2: मैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास। इनसे मिलिए, ये है मेरी दोस्त डॉक्टर रमा तिवारी।
1: रमा तिवारी ये कहाँ से आ गई यहाँ पर?
2: है तो ये डॉक्टर, लेकिन बातें बड़े मजे की करती हैं।
4: मजाक करना नहीं छोड़ूंगी।
2: और ये है मेरी दोस्त शमा खान, और आप हैं मिस्टर जावेद मिर्जा।
1: जी बड़ी खुशी हुई आप तशरीफ लाई।
4: थैंक यू जावेद साहब।
2: अरे इस तरह क्या देख रही हो? रियली मेरी दोस्त है।
4: शायद इनको कहीं मैंने देखा है।
2: हाँ भाई जरूर देखा होगा, किसी होटल में, मॉल में या किसी फंक्शन में। एक ही शहर में रहते हैं आप लोग, सूरत आशना तो हो ही जाते हैं।
7: प्लीज खाना लीजिए पहले।
4: हाँ हाँ थैंक यू, मैं ले रही हूँ, आप लोग भी शुरू करिए।
2: चलो खाना खाते हैं। शमा।
7: जी
2: शमा, बात क्या है, क्या छुपाना चाहती हो? डॉक्टर रमा का तुम्हें देखना, तुम्हारा और जावेद का परेशान हो जाना, बोल ना, तुझे कैसे जानती है वो? आई थिंक जावेद को भी जानती है, और रात जावेद भी उसे देखकर डिस्टर्ब हो गए थे। कोई ना कोई बात जरूर है ऐसी, छुपाना चाहती हो तुम?
7: सच तो ये है, कहना चाहती हूँ, एक बोझ है मेरी छाती पर, और इस बोझ से मैं तभी जा रही हूँ।
2: घर की बात है, मुझसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? ना माँ है तेरी ना बाप, भाई कनाडा में सेटल हो गया, छोटी बहन शादी करके उड़ीसा चली गई, अब तो थैंक गॉड माँ भी बन गई है वो, और तू शादी के 5 साल बाद भी।
7: आशा आशा ना कुरेद जख्मों को, डर लगता है अपने बारे में सोचते हुए भी डर लगता है।
2: देख मैं तेरे जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती, मरहम रखना चाहती हूँ जख्मों पर। कदम रखते ही तेरे घर के सूनेपन ने मुझे चौंका दिया था, सालों गुजरने के बाद भी किसी बच्चे की आवाज नहीं। रो मत शमा, मुझे बता।
7: मैं क्या हाल है दिल का हूँ आशा, तू सब कुछ समझ गई।
2: शमा
7: तन्हा हूँ मैं दिन में भी और रात में भी, जावेद तो हर जाई हो चुका है आशा, हर जाई। मिल जाती है उसे बहुत सारी हमारा लड़कियां। हाँ, अगर कोई अच्छी बात है तो सिर्फ इतनी सी है कि वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। हर जाई होने का इल्जाम तो औरत पे लगाया जाता है आशा, लेकिन यहाँ तो अपना मर्द ही हर जाई निकला।
2: तू चुप हो जा शमा, और मुझे सिर्फ इतना बता दे, क्या कोई मेडिकल एडवाइस ली है तूने?
7: ली थी एडवाइस, पूछ लेना सारी रिपोर्ट डॉक्टर रमा तिवारी से।
3: ठीक है, अब मैं उनसे ही मिलती हूँ। हाईटेक लैब, हाँ यही तो है डॉक्टर तिवारी का क्लिनिक, देखती हूँ। हेलो डॉक्टर।
8: अरे आओ आशा, आओ बैठो।
3: वो डॉक्टर, मैंने कल आपको वो एक रिपोर्ट के बारे में बताया था ना।
8: क्या नाम था भला पेशेंट?
3: शमा खान और जावेद मिर्जा। डिनर पर देखा था ना आपने दोनों को?
8: हाँ हाँ याद आया, शमा खान।
3: हाँ जी हाँ जी वही।
8: हाँ आशा, 4 साल पहले 22 अगस्त को इनका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था, रिपोर्ट नॉर्मल है।
3: अच्छा,
8: कोई खराबी नहीं। शी में कंसीव।
3: ओके, और इसका हस्बैंड जावेद मिर्जा?
8: जावेद मिर्जा, हाँ दोनों साथ में आए थे
3: जी।
8: जावेद मिर्जा किधर?
3: देखो प्लीज डॉक्टर, प्लीज ढूंढो।
8: अरे निकल आए।
3: वेरी गुड।
8: इनका सीमेंट टेस्ट हुआ
3: जी।
8: सॉरी आशा, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकते।
3: क्या
8: क्या ये बात शमा को मालूम नहीं?
3: जी नहीं, और इन्होंने झूठी रिपोर्ट बनवाकर उसे सेटिस्फाई कर दिया कि वो माँ नहीं बन सकती।
8: अरे वेरी सैड
3: जी।
8: क्या क्या काम दिखाता है ये मर्द भी। खुद ना मर्द है और इल्जाम लगा दिया औरत पर। कितनी बेबस है औरत आज भी। लो मैं रिपोर्ट की कॉपी दे रही हूँ
3: जी।
8: मार दे उस नामर्द के मुंह पर। अरे समझाओ अपनी दोस्त को, छोड़ दे उसे, अभी उम्र है, कर ले दूसरी शादी। चलो आओ केबिन में चलते हैं, कॉफी पियेंगे।
3: नहीं डॉक्टर, अभी मुझे जल्दी जाना है। शमा ये देखो ओरिजिनल रिपोर्ट।
4: ओरिजिनल रिपोर्ट?
3: जी ओरिजिनल रिपोर्ट।
4: ये रिपोर्ट?
3: और जावेद जैसे मक्कार से तुम वफा की उम्मीद करती हो?
4: आशा ये रिपोर्ट मैं सोच भी नहीं सकती थी, इतना बड़ा धोखेबाज है जावेद
3: जी।
4: उफ, अरे कह देता ना साफ साफ, अल्लाह की मर्जी, जी लेते हम हंसी खुशी।
3: और ये बताओ वो रिपोर्ट कहाँ है जो उसने तुम्हें दिखाई थी?
4: उसी के पास होगी या फाड़ कर फेंक दी होगी?
3: तुम ठीक कह रही हो, फाड़ कर फेंक ही दी होगी। एनीहाउ अब तुम्हें डिसाइड करना है, वफादारी के नाम पर जिंदगी बर्बाद करना है या आजाद होकर जीना चाहती हो। इस वक्त तो मैं अपने रिलेशन में लाजपत नगर जा रही हूँ। सच पूछो तो इस सिचुएशन में तुझे अकेला छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, पर मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। मेरे यहाँ रहते हुए अगर तुम जावेद से बात करोगे तो वो समझेगा कि मैंने तुम्हें भड़काया है। प्लीज प्लीज डोंट पैंक शमा।
4: आशा वो ऐसा ही सोचेगा।
3: देन बी श्योर आई एम विद यू, जो भी हालात हो मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना। सी यू, अब मैं जा रही हूँ। बेगम साहिबा।
4: आ जाइए शनोबी, क्या बात है?
9: बेगम साहिबा हमें गांव जाना है।
4: गांव? क्या बात?
9: वो हमारा शोहर मर गया था ना।
4: हाँ हाँ।
9: 1 साल हो गया। फातिहा कराना है, कब्र पर फूल डालना है, दिया जलाकर रोशनी करना है, बस जल्दी आ जाएंगे। आप भी अकेली हैं, हम जानते हैं ना।
4: बहुत प्यार करती हो ना अपने शोहर से?
9: सच कहूँ वो मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। गरीबों के पास प्यार के सिवा तरह ही क्या है। आपको साहब के इंतजार में जागते देखकर बड़ा दुख होता है बेगम साहिबा। मियां बीवी का रिश्ता ऐसा तो नहीं होता।
10: शमा।
9: हम जा रहे हैं, साहब आ गए।
10: What nonsense? रोज इस तरह जाकर क्या साबित करना चाहती हो तुम? अरे टेंशन में डाल देती हो मुझे।
4: हमें आपसे जरूरी बात करनी है।
10: देखो मैं थक गया हूँ, सुना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी कहो।
4: आप बैठ जाइए तो कहेंगे।
10: देखो मेरे पास बैठने का समय नहीं है, ऐसा करो सुबह बात कर लेना। सारा मूड खराब कर दिया।
0: सोच लीजिए, मुझे सुबह बात करनी ही है। आप आज जा रही हैं शन्नूबी?
9: जी जी जी बेगम साहिबा, बस आपको खाना खिलाकर चले जाएंगे।
0: अच्छा ठीक है, लीजिए ये रख लीजिए।
9: इतनी बड़ी रकम हम क्या करेंगे बेगम साहिबा?
0: अरे नहीं शन्नूबी, ज्यादा नहीं है, 10,000 है।
9: लेकिन हम इनका
0: अरे काम आएंगे जरूरत के वक्त। और हो सकता है शन्नूबी हमारी तुम्हारी ये आखिरी मुलाकात हो।
9: क्या आप कहाँ?
10: शमा
9: साहब आ गए।
10: हाँ शमा बोलो, क्या जरूरी बात करनी है, जल्दी कहो।
0: जावेद मुझे टेस्टिंग की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए।
10: व्हाट? क्या करूँगी रिपोर्ट का?
0: सोचती हूँ डॉक्टर रमा से बात कर लूँ।
10: अरे डॉक्टर रमा की ही तो रिपोर्ट है, तुम माँ नहीं बन सकती, अब इसमें बात क्या करनी है?
0: जी नहीं जावेद साहब, जो रिपोर्ट आपने मुझे दिखाई थी वो डॉक्टर रमा की नहीं थी।
10: शमा आर यू मैड? पागल हो गई हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? यू कांट कंसीव, नहीं बन सकती हो माँ तुम।
0: हाँ मैं माँ नहीं बन सकती और इसकी वजह तुम हो।
10: पागल औरत, मुझे नामर समझती है, मुझे।
0: ये रही रिपोर्ट, इसे आंखें खोल कर पढ़ लो और अगर शक हो तो चलो डॉक्टर रमा के पास। नकली रिपोर्ट बनवाकर मुझे दिखाई, धोखा दिया मुझे। क्यों किया ऐसा जावेद, क्यों किया?
10: मेरी बात सुनो शमा, शमा मुझे समझने की कोशिश करो। देखो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था।
7: नहीं जाने, तुम तो मुझे बहुत पहले खो चुके हो। जिस मोहब्बत के रिश्ते ने हमें बांधा था वो कच्चे धागे टूट चुके। कितनी लड़कियां जुड़ गई है तुमसे, किस को धोखा दोगे? हम मोहब्बत के सहारे जी सकते थे जावेद, खोद दे लेते किसी बच्ची को। अरे हमारे विदान आंगन में नदी से भरी किटकारियां गूंजती, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं किया तुमने। कुदरत के फैसले को ठुकरा कर अपने किस्मत खुद लिखने लगे, जाही बन गए। आग लगाती अपने ही हाथों अपने घर को। जावेद दौलत की पैसा की पर कब तक चलोगे? अरे बूढ़ा तो होना है एक दिन, ये सब परियां उड़ जाएंगी तुम्हारे शीश महल की। तन्हा रह जाओगे जावेद, एक दिन तन्हा रह जाओगे।
10: शमा मैं मानता हूं मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो शमा?
7: ऐसा सोचना भी नहीं जावेद। औरत जब जागती है तो उसे अल्लाह के सिवा किसी दुनियावी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, और मर्द जब हरजाई हो जाए तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नो एक्सक्यूज, नो।
6: जावेद, जावेद
7: लीजिए आपके परिस्तान की एक परी तो आ ही गई।
10: अरे नजमत तुम?
6: जी वो आपकी मिसेस।
7: जी जी हमने ही बुलाया था नजमा को।
10: लेकिन क्यों शमा?
7: समझाती हूँ। नजमा बीवी और शौहर एक दूसरे का लिबास होते हैं, जावेद भी हमारी उतरन है। तुम चाहो तो पहन सकती हो, लेकिन भूलना नहीं ये नामर्द ही नहीं हरजाई भी है। और मेडिकल रिपोर्ट तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज ही चुकी हूँ, चाहो तो डॉक्टर रमा से कंफर्म कर लेना।
9: शमा
11: हाँ आ रही हूँ आशा, आ रही हूँ।
10: शमा।
11: ओके, गुड बाय जावेद, गुड बाय नजमा।
10: शमा, शमा मेरी बात तो सुनो, शमा, शमा।

हर जाए। अभी आपने सुना नफीस सिद्दीकी का लिखा ये नाटक। प्रस्तुतकर्ता थे असीम सक्सेना। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

0: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।

मन भवन कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीत माला। गीत माला के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है, दिलो नजर को रुला के देखा है। तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तेरी कसम मैंने कुछ पल तुझको भुला के देखा है। लेकिन बहुत मुश्किल होता है उनको भूल पाना जो हमारे दिल में रहते हैं। जब किसी वजह से हमारा कोई अपना हमसे दूर हो जाता है तो दिल के कोने से बस यही आवाज आती है, हमें हर पल उनकी याद आती है। दिल पूछता है बार बार हमसे, जितना हम याद करते हैं उन्हें, क्या उन्हें भी हमारी याद आती है।

जिंदगी की कश्मकश से परेशान बहुत है। दिल को न उलझाओ, ये नादान बहुत है। यूं सामने आ जाने पर कतरा की गुजरना, वादे से मुकर जाना उसे आसान बहुत है। यादें भी हैं, तलखी भी है और है मोहब्बत। तूने जो दिया दर्द का सामान बहुत है। अश्क कभी, लहू कभी आंख से बरसे, बेदाग मोहब्बत का ये अंजाम बहुत है।

जब अकेलेपन में किसी की याद आती है तो दिल सवाल करता है कि आखिर हमारे हिस्से में ये दर्द, ये आंसू क्यों आए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी ख्याल आता है कि जिस तरह हम उन्हें याद करते हैं, क्या वो भी हमें याद करते हैं। पर ज़्यादातर ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो हमें छोड़कर जाते हैं वो तभी जाते हैं क्योंकि उनके दिल से हम पहले ही निकल चुके होते हैं। जब दिल का कोई कोना खाली रह जाता है तो केवल सवाल होते हैं, प्यार के साए में गम के अंधेरे क्यों हैं, जिसको हम चाहें वही हमें रुलाता क्यों है। मेरे रब्बा, अगर वो हमारी रसीब में नहीं तो ऐसे लोगों से हमें मिलाता क्यों है।

कहते हैं कि अगर दिल के शोर को दबा दिया जाए तो वो तूफान बन जाता है और पीछे रह जाती है तबाही और पछतावा। उस समय हम ये महसूस करते हैं कि काश अपने के दिल की बात हमने समय रहते कह दी होती। कभी कभी हमारी ये खामोशी किसी बेगुनाह को गुनहगार ठहरा देती है, क्योंकि जब सामने वाला हमारे जज्बात को जानता ही नहीं तो उसे बेवफा भी कैसे कहा जाए। इसलिए अपने दिल की बात कहने के लिए सही वक्त का इंतजार नहीं करना होता। दिल की बात कहने के लिए हर लम्हा सही है। कहीं ऐसा ना हो कि सही समय का इंतजार हमारे किसी अपने को हमसे दूर कर दे। मोहब्बत का मेरे सफर आखिरी है, ये कागज ये कलम ये गजल आखिरी है, ना हम मिलेंगे फिर कहीं ढूंढ लेना, ये खामोशियों का असर आखिरी है।

जब कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं तब दिल के दर्द आंसू बन जाते हैं, जो कहते हैं कि हम सिर्फ आपके हैं, पता नहीं कैसे अलविदा कह जाते हैं, पर दिल में उम्मीद की लौ जलती रहनी चाहिए।

0: मन भवन कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे गीत माला। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरिटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमरीका के

0: साथ सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
5: सामने हैं इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
6: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
5: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध।
4: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
5: जागिए और जगाइए।
6: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
4: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
5: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
7: से नो टू प्लास्टिक।
8: मम्मी मम्मी कहाँ हो, जरा एक गिलास पानी तो पिला दो, आज तो थक गया स्कूल से आते आते।
9: अभी लाई।
8: अरे ये क्या शोर तो इतना मचा रहे थे और ये आधा गिलास पानी भी नहीं पिया, क्या करूं इस बचे हुए पानी का।
9: तो क्या हुआ मम्मी, जितना पीना था पी लिया, बाकी फेंक दो। कौन से पैसे लगे हैं, पानी है कोई सोना थोड़ी है।
8: पानी का मोल समझ मेरे बच्चे, अगर हम इसी तरह पानी बर्बाद करते रहे तो आने वाले समय में तरस जाएंगे एक बूंद पानी के लिए, और तब समझ आएगी पानी की कीमत।
10: जी हाँ, जल बचाएं और बचाएं अपने कल को। बूंद बूंद से भरती गागर, पानी का प्रयोग जरा संभल कर। पानी अर्थात जीवन, और संरक्षण अर्थात भविष्य।

0: 아리아리 손오 누구 누구 액시덴 누구야?
1: 아리아리 액시덴 누구야? 액시덴.
2: अरे भाई कोई 100 नंबर डायल करो 100 नंबर 100 नंबर डायल करो भाई साहब जल्दी जल्दी
3: 100 पे नहीं 108 लगाओ 108
4: नहीं 112 लगाओ
5: अरे भाई इसकी जान चली जाएगी आप लोग एक ही नंबर बताओ बार बार कंफ्यूज मत करो
4: अरे भाई एक ही नंबर पर सारे काम 112 लगाए तत्काल पुलिस बुलाए फायर एम्बुलेंस की सर्विस तुरंत पाए
6: हेलो 112
7: नमस्कार 112 यूपी
6: गांधी समाधि रामपुर पर एक्सीडेंट हो गया है
7: कृपया अपना शुभ नाम बताइए
6: सुनील
7: एम्बुलेंस के साथ साथ आपको पुलिस और फायर की भी जरूरत है
6: नहीं सर सिर्फ एम्बुलेंस की
7: आपको सहायता शीघ्र भेजी जा रही है डायल 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद
8: तो सुना आपने अब 112 पर मिलेगी आपको जीवन रक्षा संबंधी हर आपातकालीन सेवा SMS करें या कॉल ईमेल भेजें या 112 इंडिया मोबाइल ऐप पर मिलेगी आपको तुरंत सहायता अब सिर्फ एक ही नंबर याद रखें 112 और समझदारी से काम लें

हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।

इस समय आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के प्रसारण। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम है गीत आपके नाम।

गीत आपके नाम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में, अनुरोध फिल्म का ये गीत हमने किया है अपने इन सभी श्रोताओं के नाम। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया और आयान बाबू, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रशीद पारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखिंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना, मोहल्ला बारादरी महमूद खान, रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा मुस्कान और नगवानाज मंसूरी, बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, बल्लार शाह से सूरज, प्राची और एकलव्य, यवतमाल से अनिल, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, संजू, पूजा, लल्ला, पिंकी, बाबू चौरसिया और शिवा चौरसिया, साथ हैं शिवानी चौरसिया और पवन गौड़, सुलाई माता नगर चालीसगांव से पांडुरंग सूर्यवंशी, रेखा सूर्यवंशी, नीरज ठाकुर, आरती ठाकुर, कुमारी नव्या, प्रियदर्श, रथ चौक बहादुरपुर से संतोष कुमार सोनार, रविंद्र सोनार, नरेंद्र, सन्नी मुन्ना, बंडू दादा, शंकर मार्केट पांच कंदील चौक धुले से विनोद चौरसिया, वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, रमगुड़िया और शोएब खान, कसम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीस खत्री, नूरुन मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर, कुमकुम गुड़िया, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। ये श्रोता है कर्नाटका स्टेट से चिन्ना तिरुपति, प्रकाश, श्यामला, अश्विनी, आनंद मनवित और रमेश, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, गांव खारिया जिला सिरसा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु।

बलदेव कटारिया, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। गांव खावरी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह और अवियाना चौधरी। आप सभी के नाम ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है अनुरोध।

अनुरोध। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत आपके नाम कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। चरस फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध, शास्त्री नगर बीड़ शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सूफियान अनस, सरोज चौक से कमरुल्ला, नसीम बेगम और आयशा, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और गीतिका खोरवाल, साथ हैं भानु प्रकाश, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद देशमुख, मानसी और कल्पना देशमुख, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु, मथुरा से सभा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि, गणेशपुर गंजवारा एटा से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, कुलफराज शेख और बीबी मुस्कान, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। ये श्रोता हैं बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से फौजिया रोशनी और शाइना काजल, साथ हैं शहजाद अली, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई अंसारी, आशिक हुसैन अंसारी और अल्ताफ हुसैन, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी और कलीम अंसारी, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, सपना शिवी सलोनी, ईशु बाबा और पेंटर, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबे राई और मेराज शाह, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा साहू, अकोला से के शरद पाचपोर, शोभा पाचपोर, वैदेही विहान और परिवार के सभी सदस्य, बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप सभी के नाम ये गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। फिल्म का नाम है चरस।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। ये गीत हमने किया है इन सभी श्रोताओं के नाम।

गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना, भाटापारा दंतरेगी छत्तीसगढ़ से हीरामणि शर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नुखेलाल वर्मा, ग्राम महेशपुर खेम मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, आदिति, राधे, दीपक और अंकुर राघव गुप्ता, बुलडाणा वनशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभताई, दीपाली और श्लोक कुमार, बुलडाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार, बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर, दादरीगेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, चुलबुल रानी, राजनगर गांधी चौक से गोदावरी देवी, क्रांति गुप्ता और कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन एकनाथ और संगीता जाधव, नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जैन मंदिर वाली गली कोरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आस्था अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहार नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना, खैल बाजार पानीपत से श्रोता है नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, जगमोहन प्रजापति, पवित्रा शर्मा, किरण जाकर, जग्गी दुआ रामजी, ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दूल्हा अंसारी, खंडवा रोड सनावत से शहबाज, अरवाज, फरहाज, फरदीन, समीर और मोइन शेख, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, सबरीन परवीन और माहिरा नूर, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा, आप सभी के नाम ये गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, फिल्म का नाम है आए दिन बहार के।

और अब गीत आपके नाम कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, पराया धन फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम, ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, पुणे से पंकज बड़ोदे, प्रियंका बेटी बड़ोदे, बीरशहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा और बाबला साहेब करवा, ये श्रोता हैं मोहल्ला मजार चांचा मियाँ रामपुर से मोहम्मद रमज़ान साहेब अदनान मंसूरी, साथ हैं अरमान अली मंसूरी, रैना चांदनी, अनमता रहमीन और आशु भाई मंसूरी, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम और अदीबा।

साथ हैं दानिश। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित, लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, बटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल कश्यप, संजय कश्यप, अनमोल कश्यप, अंश, करिश्मा कश्यप और मुस्कान कश्यप, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, गंजनवाला से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, कलाम रोड हरगोविंद नगर नवाशहर से सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, रोहित, रितेश, शिखा संधु, प्रीति शाह और मैक्स, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार, नई बस्ती पतेई खासा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी, आप सभी के नाम ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है पराया धन।

और अब कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साजन बेटा सुहागन फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम, राजद्वारा रोड मीठा कुआं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी और रवि रस्तोगी, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा, गांव तंगोरी जिला मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, उच्च भट्टे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी शिवन्या और अनु गोस्वामी, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कबीर निशा सबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, जेल रोड रायगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद, तरुण यादव, श्रीनिका और श्रीनिजा, कोल सिटी बरकाना काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सानी और मोहम्मद अफजल मलिक, रायपुर से नीतू मेघ, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, गांव व ढककर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, भूचो कैचिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिंधु, एकम दमन और अभिजोत, ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शारुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा और निवान शर्मा, आप सभी के नाम ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है साजन बिना सुहागन।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में, पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, वसंतराव भोजने और पी एस नवाकर, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण संस्कृति पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल, गुमला झारखंड से एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, वसुधा वज्रसेन और बिटिया व्याख्या, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बीबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जी एस रामगढ़िया, सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा नारंग और सुरेश नारंग।

ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा, गौसिया फातिमा। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू और समस्त कठेरिया परिवार। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पल और विलिस डिकेस्ट्रो। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया साजदारानी और हिना कौसर। आप सभी के नाम ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
3: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। 1:15 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। फिल्म संगीत प्रसारित होगा 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5:00 आज शाम के साथ। युवा साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा 5:15 पर। इसमें युवा साथियों के लिए होगा आज का सवाल, कुछ खास है आज, और स्पेशल सेगमेंट में आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स।

चित्रपट संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 6:10 पर। 6:20 पर कृषि जगत प्रसारित होगा। इसमें आज चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। आपको एक भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का महत्व। कृषि जगत में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का महत्व। किसान साथियों के लिए मनोरंजन के लिए लोकगीत भी होगा और कृषि संकेत में नींबू वर्गीय फसलों की देखभाल की जानकारी दी जाएगी। श्रोता मंच शाम 7:00। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे स्टूडियो में आमंत्रित श्रोता श्री नवाबुद्दीन से भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे असीम सक्सेना।

सुगम संगीत में 7:31 पर सुनिएगा गुलाम अली और सलमा आगा की आवाज़ों में कुछ गज़लें। गीत गाता चल व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। 9:30 पर अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती दिल्ली केंद्र से रिले होगा और दिल्ली केंद्र से ही 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 हुआ चाहते हैं इलाकाई खबरें, थोड़ी ही देर में लखनऊ केंद्र से रिले होंगी।

बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दो रोजा दौरे पर आज लखनऊ पहुंचे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। जनाब नवीन रियासती बीजेपी सदर पंकज चौधरी के साथ हवाई अड्डे से बीजेपी के रियासती दफ्तर तक रोड शो कर रहे हैं। पार्टी कारकुनों ने मुख्तलिफ मकाम पर उनका इस्तकबाल किया। नई रियासती बीजेपी टीम की तश्कील के बाद यह उत्तर प्रदेश का उनका पहला दौरा है। इस दौरे के दौरान वह पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और अहदेदारों से कई तंजीमी मुलाकात करेंगे। वह बीजेपी के अवामी नुमाइंदों और एनडीए कायदीन से भी बातचीत करेंगे। अपने दौरे के दौरान बीजेपी सदर तंजीम को मजबूत बनाने के लिए मुनक़दा शक्ति केंद्र कोऑर्डिनेटर कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। जनाब नवीन रियासती कोर कमेटी के इजलास में भी शिरकत करेंगे। कल दोपहर वो प्रेरणा स्थल में शक्ति केंद्र कोऑर्डिनेटर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। लखनऊ में महात्मा

0: जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत अलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों में से कम बारिश और मुमकिन खुश्क साली के हवाले से सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। उन्होंने वजारत ज़राअत और तमाम मुतल्लिका वजारतों को हिदायत दी कि वो चौकस रहें और रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल कायम करें ताकि किसानों को मुनासिब फसलों की बुआई के बारे में मशवरा दिया जा सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पीर 6 जुलाई 2026 को अपने अराकीन की मीटिंग बुलाई है, जिसमें कई अहम इंतजामी और माली मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें ट्रस्ट को मिलने वाले एहतियात की गिनती की जांच करने वाली खसूसी तहकीकाती टीम SIT के नतायज भी शामिल हैं। 8 जून 2026 को जारी करदा एक सरकारी नोटिस के मुताबिक ट्रस्ट के सदर की मंजूरी से खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी की तरफ से इजलास बुलाया गया है, क्योंकि इन मसाइल पर बहस और फैसले की जरूरत है। ये मीटिंग दोपहर 3 बजे मनीराम दास छावनी अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में होगी। एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से जमा कराए गए इस्तीफों पर गौर करना शामिल है। इस नोटिस में स्पीकर की इजाजत से किसी दूसरे मामले पर बहस का भी बंदोबस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET का दूसरा दिन कल पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। 3 रोजा इम्तिहानात के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। इम्तिहान के दौरान एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से AI कैमरों का इस्तेमाल करते हुए तमाम इम्तिहानी मराकज की निगरानी की। कमीशन के चेयरमैन डॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि UPTET इम्तिहान के आखिरी दिन आज एक ही शिफ्ट में इम्तिहान लिया गया। और श्री अमरनाथ यात्रा कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल रास्तों से शुरू हुई। तीसरा जत्था हफ्ते की सुबह यानी आज जम्मू के भगवती नगर में वाकई यात्री निवास से रवाना हुआ। कल रियासत के कई जिला में भारी से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कुछ जिला में मरतूब गर्मी जारी रही। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मशरकी हिस्से के कुछ जिला में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। मगरबी जिला में गरज चमक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 1:15 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो साथी रेनू तिवारी। कीजिए स्वीकार, नमस्कार। श्रोताओं, अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं, कोई गीत सुनना चाहते हैं, तो डायल करें। हमारा फ़ोन नंबर है 0595-2324-326। और अब हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ गए हैं। हेलो।
1: हेलो रेनू तिवारी जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: अच्छा जी, बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश से, और मेरे पास बारिश बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में तो अभी तो पकौड़े खाने चाहिए चाय के साथ, और आज पकौड़े हैं और चीज़ें आएंगे, कांटे वगैरह जैसी खाना चाहिए। बारिश के मौसम बहुत धीरे वगैरह है,
0: बिल्कुल बारिश का मौसम सुहाना होता है, गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान ना रखें तो बहुत सी परेशानियां भी लेकर आता है।
1: हाँ, जो बारिश के मौसम में साफ सफाई जरूरी है, भिनभिनाती रहती है तो उसमें दिक्कत होती है, तो बीमारियाँ फैलती है। और अभी तो बारिश के टाइम पे जब बमी भी उड़ती है तो वो जिससे कहीं लाइट होती है तो कीड़े मकोड़े कीड़े गिरते हैं, खाना वाना बनाने में दिक्कत, खाने में दिक्कत आती है, तो वो बहुत अपने खाना बना के खाना चाहिए, क्योंकि कीड़े ये नहीं गिरे।
0: बिल्कुल, मौसम का आनंद तो लें बारिश के, लेकिन साथ साथ में सावधानियां भी बरतें। आज आपका फोन लगा है, हेलो फरमाइश में।
1: जैसे खेती बाड़ी में तो अभी धान की लड़ाई चल रही है खेतों में, तो धान बोए जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका प्रोग्राम भी मोबाइल पे सुन रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और गाना आज सुना दीजिए मूवी के नाम, रक्षाबंधन आने वाले हैं तो सावन सच दिन एक महीना डेढ़ महीना रह गया है, तो करीबन तो बहुत रक्षाबंधन पे गाना सुनना चाहता हूँ। मूवी के नाम चांदनी गाने को लग गया, सावन को फिर वो घड़ी है और फिर घड़ी लगने वाली है रक्षाबंधन से। कांवर वाले यात्रा आएंगे तो उनको ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बढ़िया तरह से कांवर यात्रा करना चाहिए, कांवर कहीं भी जाएं तो बढ़िया तरह से जाना चाहिए, कोई बड़बड़ी ना करना चाहिए।
0: आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश रेणु जी, नमस्ते
0: नमस्ते
1: जी। मैं प्रेम सिंह निकोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बसोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसे हैं और आपकी तरफ मौसम कैसा है?
1: जी रेणु जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और मौसम भी काफ़ी सुहाना हो गया है।
0: जी
1: जी, रुक रुक के हल्की बारिश हो रही है, जरूरत ज़्यादा तेज की है लेकिन हल्की बारिश हो रही है
0: अभी। तेज बारिश के लिए शायद इंतजार करना होगा थोड़ा।
1: हाँ जी, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन तो थोड़ी तेज बारिश हो जाती है ना
0: जी,
1: तो मतलब किसानों को काफी फायदा होगा ना, इनकी फसल लगा रखी है सबने।
0: बिल्कुल
1: जी, तो थोड़ी तेज बारिश होने में सोयाबीन सब मतलब उग के बाहर आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मतलब मौसम तो काफी अच्छा हो चुका है।
0: बहुत गर्मी के बाद अब बारिश की बूंदें आई हैं। वाकई में बारिश की बूंदें जो हैं वो नया जीवन लेकर आती हैं हमारे लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी।
1: जी बिल्कुल रेणु जी, काफी गर्मी का सामना किया इस साल हमने, लेकिन अब मौसम ठंडा हो चुका है यहाँ पे थोड़ा।
0: बिल्कुल, आज आपका फोन लगा है हेलो फरमाइश में, कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: जी, फिल्म का नाम है हुस्न, राम तेरी गंगा मेली, और गाने के बोले हुस्न पहाड़ों।
0: ठीक है, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: थैंक यू सो मच।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ मैम।
0: मकसूद भाई, आज बहुत दिनों के बाद हमारी आपसे बात हो रही है।
1: हाँ मैम, पोल तो लगती है, पता नहीं रिमेक्स में घंटी जाती है, पता नहीं आपके यहाँ बाहर भी चलती रहती है और कोलर की घंटी भी जाती रहती है, ये साल भर से समस्या बन रही है आपके यहाँ पर।
0: जी ये एक तकनीकी समस्या है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी जब श्रोताओं से बात हो रही होती है तब भी ऐसा लगता है कि रिंग जाती रहती है और श्रोताओं को लगता है कि फोन का रिसीव नहीं किया गया।
1: मैं जैसे कॉलर की कॉल करती है ना तो तुरंत कॉल लगती है तो वो तोड़ जाती है, जो दवा होता है सब लगती है तो वो रिवर्स में जाती है।
0: जी कई बार हमारी बात हो रही होती है श्रोताओं से तो दूसरे श्रोताओं की कॉल नहीं लग पाती है।
1: चलो छोड़ो, अब मैं
0: आज आपको फोन लगा है
1: और सभी आकाशवाणी में कैसे हैं, काफी दिनों में आपसे बात हो रही है और कॉल भी काफी दिनों में लगी है इस प्रोग्राम में।
0: बिल्कुल हम अच्छे हैं और आज जब आपकी कॉल लग गई है तो ये बता दीजिए कि कौन सा गीत सुनवा दें आपको।
1: मैम गीत बताऊंगा, मैं ये कहना चाहता हूँ एक महीने से आपका आकाशवाणी पर नहीं आ रहा है मैम। कतई मैंने आपकी ना और शुक्रवार के दिन की कॉल अक्सर पत्तू लगाता हूँ, अभी ऐसी लगी है रेडियो पर तो नजीबाबाद दिल्ली सारे प्रोग्राम भारत को लेकर आपका आकाशवाणी रेडियो पर तैयार कर।
0: चलिए कोई बात

0: ये रेडियो पर नहीं आ रहा है, कोई तकनीकी समस्या हो सकती है, तो अब तो हमारा प्रसारण ऐप पर भी मिलता है, तो आप मोबाइल पर हमारा प्रसारण बिल्कुल साफ सुन सकते हैं।
1: सिंपल मोबाइल है मेरा, एंड्रॉइड नहीं है।
0: अच्छा, तब तो वाकई में समस्या है, और आपकी बात हमारे तकनीकी अनुभाग तक पहुंच रही है कार्यक्रम के माध्यम से, तो हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। बहरहाल
1: मैम, रेडियो भी तीन है मुझ पर, ये नहीं कि चलो एक रेडियो हो तो कोई कमी हो, सबने ऐसा क्या, आपके एफएम है वो तो मुरादाबाद तक की रेंज सकती है, बस आगे नहीं बढ़ती। मैं
0: एफएम की रेंज सीमित होती है इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं जाती है। बहरहाल आज
1: की बात ये नहीं है, एफएम रेंगो है जो पूरे भारत को देश विदेश जाती है, उसकी क्षमता जो है 102.6 है, आपकी जो है 102.2 है।
0: देखिए
1: 3 मेगावाट,
0: बिल्कुल
1: आकाशवाणी
0: आपकी बात को हम समझ रहे हैं, लेकिन ये प्रसारण कैसे होगा क्या होगा ये तय करना हमारे हाथ में नहीं है। आज आपकी कॉल लगी है, गीत कौन सा सुन पाते हैं?
1: मैम इल्जाम की है, सभी कुमार और आशा भोसले की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत है, ए प्यार किया है प्यार करेंगे दुनिया से आप तो हम ना डरेंगे, दुनिया की ऐसी की तैसी। सुनने वाले हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी की, रजा हुसैन है, हाजी गफ्फार खान साहब है, इशरत है, मुकेश है, और मैम आपकी है साथ में।
0: आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार।
0: ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
1: जी भगवान सिंह जी, कैसे हैं आप?
0: अच्छे हैं दीदी, बढ़िया है। बरसात अच्छी हो रही है हमारे इधर और फसल की बुआई हो चुकी है 8-9 दिन पहले दीदी। हम किसान है दीदी, तो बहुत खुश है दीदी, हमारी बोनी हो चुकी है। तो
1: बिल्कुल किसानों के लिए वर्षा ऐसे होती है कि जैसे पानी नहीं अमृत बरस रहा हो।
0: जी हाँ दीदी,
1: बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ आप हमारे कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं?
0: जी हाँ दीदी, हम ये हेलो फरमाइश वाला कार्यक्रम कभी मिस नहीं करते दीदी, हमेशा सुनते रहा। आपके समय आता है जब भी सुनते हैं दीदी, और दिन में आता है तो भी सुनते हैं, और शाम को आएगा मतलब 5:30 बजे दीदी जब भी सुनेंगे।
1: तो आप केवल फोन इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं या ईमेल या और व्हाट्सएप भी करते हैं?
0: दीदी नहीं, दीदी फोन इन कार्यक्रम जाना सुनता हूँ मैं।
1: चलिए, आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, कौन सा गीत सुनाते हैं आपको?
0: दीदी फिल्म का नाम है खुद्दार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं, ये वाला गीत सुनना है दीदी।
1: आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं।
0: दीदी मैं 2-3 मित्रों को याद करना चाहूंगा, दोस्तों को।
1: बिल्कुल।
0: सारून अंसारी जी हैं, लोकेन वर्मा जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केत सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी हैं, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी। आपको डेलीकेट रहेगा और हेलो फरमाइश एकता रेडियो ग्रुप के सभी सदस्यों को।
1: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
1: धीरज रबारी बात कर रहा हूँ, गुजरात से।
0: धीरेंद्र जी?
1: धीरज।
0: धीरज, बहुत दूर से आप हमसे जुड़े हैं।
1: मैं आकाशवाणी रामपुर से वैसे सजीव फोन इन कार्यक्रम में कई बार जुड़ा हूँ, और आप लोग जो कार्यक्रम पेश करते हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है, और श्रोताओं से जो बातचीत होती है उसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है दीदी हमें।
0: जी, आप गुजरात से हमें सुनते हैं, हमारे प्रसारण सुनते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जो आप खास तौर पर सुनते हैं?
1: जो रात्रि वाले जो फोन इन कार्यक्रम होते हैं, फिर ये शनिवार वाला दोपहर वाला कार्यक्रम है, फिर युवाणी कार्यक्रम में जो आप सवाल करते हैं जो कार्यक्रम की शुरुआत में, ये कार्यक्रम हम समय अनुसार सुनते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, हमारी कोशिश रहती है कि हमारे श्रोताओं को मनोरंजन के साथ साथ में थोड़ी सी जानकारी भी दी जाए।
1: इस अभी यहाँ गुजरात में मैं रहता हूँ अहमदाबाद, और मेरा गांव का नाम डेर, तहसील जिला पाटन। बारिश यहाँ मौसम रिमझिम बारिश हो रही है, तो इस बारिश की ऋतु में हमें दीदी खास करके ऐसा ख्याल करना चाहिए कि गर्म पानी करके उसको ठंडा करके वही पानी पीना चाहिए।
0: बिल्कुल, अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो इस समय जो संचारी रोग होते हैं वो काफी परेशान करते हैं और काफी लोग बीमार हो जाते हैं इससे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, हमारी आपसे बात हो रही है और पीछे हमें मोर की आवाज आ रही है, तो आप क्या, आपके इलाके में क्या मोर बहुत ज्यादा होते हैं?
1: जहाँ मैं फर्ज बजाता हूँ, ड्यूटी करता हूँ, वहाँ मोर ज्यादा है, और मोर ज्यादातर बारिश की ऋतु में बहुत बोलते हैं, और बोलते और बारिश आओ, मोर को बारिश बहुत पसंद आती है, तो इसीलिए ज्यादा बारिश के ऋतु में मोर बोलते। वैसे सुबह में 5 बजे से शुरुआत होती है मोरों की, और लगभग 10 बजे तक बहुत मोर बोलते।
0: वाकई में जो पशु पक्षियों का संगीत होता है, प्रकृति का संगीत होता है, वो अपने आप में बहुत अनोखा होता है।
1: बिल्कुल, खाना भी भूल जाते हैं हम।
0: बिल्कुल, आज आपको फोन लगाया, हेलो फरमाइश में कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: युद्धाली फिल्म का गाना सुनना है, दिल हूं करे लता मंगेशकर की आवाज।
0: बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो दी, नमस्ते।
0: नमस्ते
1: रीनू तिवारी बोल रही ना आप?
0: जी, मैं रीनू तिवारी बोल रही हूँ।
1: आप ठीक हैं?
0: जी हम ठीक हैं। हम ये जानना चाहेंगे हमारी किस साथी से बात हो रही है।
1: हम दीदी पम्मी बोल रहे, तोक्का बाग से।
0: पक्के बाग से बोल रहे हैं आप?
1: जी जी
0: पम्मी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी हमें ये बताइए कि आपके
1: जी।
0: पास ऐसा कौन सा उपाय है जिसके चलते आपका फ़ोन जल्दी जल्दी प्रोग्राम में लगता है, क्योंकि हमें ध्यान है कि अक्सर आप प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं।
1: जी जी जी जी
0: जी
1: हमारे क्या कहता भाई, कॉल लगी आपकी।
0: बिल्कुल, लगातार कोशिश करते रहते हैं इसलिए आपकी कॉल लग
1: जी,
0: जाती है।
1: दीदी फिर के दिन में सुनता हूँ मैं आपका प्रोग्राम, जुम्मे के दिन में सुनता हूँ, आज भी सुनता हूँ आपका प्रोग्राम।
0: आज आपका फोन लगा है हेलो फरमाइश में, कौन सा गीत सुनवाते हैं आपको?
1: जी, मैं गाने आपके सब सुनता, प्रोग्राम सुनता हूँ सुबह शाम तक, काम भी करता हूँ, अपने मोबाइल में भी सुनता रहता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आप काम करते हुए हमारे साथ जुड़े रहते हैं। रेडियो की यही खासियत होती है कि इसमें मनोरंजन के साथ साथ में आपका काम रुकता नहीं है, आपका काम
1: नहीं,
0: भी
1: नहीं,
0: चलता रहता है।
1: मैं लगाता है
0: जी। आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, कौन सा गीत सुनवाए?
1: छतरी ना खोल बरसात में।
0: ठीक है,
1: मैं लोग ला।
0: हाँ जी,
1: और इस्लाम नहारी वाले, जाइद बचा वाले, और आप और मैं हूँ।
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: और दीदी बात सुनिए। हेलो।
0: हाँ जी,
1: ये बताइए मुझे, ये सतीश जो लड़का है जो पहले कॉल ली थी आपने इसकी,
0: जी
1: ये दो दो बात फोन करता आपको, बात आप उसकी बात पता ना करो।
0: हमने इनकी आवाज पहचान ली थी और हमने इन्हें चेतावनी भी दे दी थी, आज इनका दोबारा कॉल नहीं लगा है।
1: दीदी देखो, आज के दिन दो बार कॉल गई थी आपको, मेरी आवाज आ गई थी, आप इसके बाद पता लगाओ, काट दो फोन आप।
0: जब भी हम सतीश को पहचान लेते हैं हम उनकी कॉल काट देते हैं।
1: जी जी हाँ, ऐसे करती है आप। ये दो बार फोन करता है, मेरी कॉल आई थी, मैं दूसरा फोन करता, बात करता हूँ आपसे, ठीक है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सही ना
0: जी।
1: एक बार कॉल लगे हम दूसरा कॉल करें आपको?
0: बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये देखिए श्रोताओं के ऊपर होता है कि वो अपने ही आप ही यही करें कि जब उनकी कॉल लग गई है, एक गीत सुन लिया है, तो वो दोबारा कॉल ना करें, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा गीत भी निकालना होता है, बात भी होती है
1: जी जी,
0: तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सजीव प्रोग्राम में कि हम आवाज पहचान सकें।
1: और दूसरे को भी मौका दे कॉल करने के लिए।
0: बिल्कुल, हम भी आपके माध्यम से यही कहेंगे जी।
1: बोल बोल कर मैंने कर दिया क्या, ठीक है? आप उसको आगे पीछे कॉल करें, दूसरा आगे आप कॉल मत उठाना, ठीक है?
0: बिल्कुल
1: सही सही। नमस्ते जी। नमस्ते।
0: ठीक है, नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद आपका।
0: आज हेलो फरमाइश में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत सुनवाते हैं आपको?
1: मुझे गाना सुनना है, आदमी सुनवाना है, काका चलता हूँ।
0: जी
1: जी जी
0: आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: जी जी धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो, हेलो फरमाइश
0: जी। हेलो फरमाइश
1: मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं समोदिया से इलियास पाशा बात कर रहा हूँ।
0: जी इलियास जी, आपकी कॉल इस कार्यक्रम की आखिरी कॉल है। कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि जल्दी से आप हमें अपनी फरमाइश का गीत बता दें।
1: फिल्म का नाम है आशिकी और गीत के बोल हैं दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, ये वाला गीत सुनवा लेना।
0: जी आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, हमारा और आपका आज का साथ यहीं तक। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात के वादे के साथ आज रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े

0: माने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांड में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
5: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को रब रब बनाएं। मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं, ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
7: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडिया वेव 336.7 MHz यानी 891 KHz और FM 102.9 MHz पर। 2:30 हुए हैं। अब आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले ये गीत तनिष्क बागची, अरिजीत सिंह, और असीस कौर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है कपूर एंड सन्स।

कपूर एंड सन्स। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना तनिष्क बागची, अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज़ों में। आइए अब सुनते हैं ये गीत मोहम्मद इरफान की आवाज़ में। फिल्म का नाम है किक।

किक, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद इरफान की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं ये गीत। जुबिन नौटियाल की आवाज़ में फिल्म का नाम है काबिल।

अजहर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ों में। आकाशवाणी रामपुर से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है तुम बिन टू।

तुम बिन टू, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में। और अब फिल्म संगीत का अंतिम गीत आतिफ असलम की आवाज़ में। फिल्म का नाम है रुस्तम।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। अपराह्न के 3 बजे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी पहली सभा के प्रसारण। इन्हीं मीटर्स पर शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अब से लेकर शाम 5 बजे तक एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के प्रसारण उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम में लेकर हाजिर हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा

0: शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
1: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
2: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। ये हैं सदर नागपुर से कमल गोलचा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता गोलचा और इनका पूरा परिवार। अगला खत हमें मिला है कोलार रोड भोपाल से। लिखने वाले हैं रामबाबू मालवीय, मनीषा, शीतल, उमंग मालवीय और इनके परिवार वाले। ये खत है ग्राम पंचायत काड़ेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमारी संचित वायल का और मोताड़ा से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख का। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म खानदान का गीत। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी और संगीत खयाम साहब का।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था खानदान। अगला गीत सुनना चाहते हैं आप सबने हमें खत लिखा है, ये है काशी निवास बंगाली नागपुर से प्रकाश रंबाड़े, भारती रंबाड़े, हर्षेल रंबाड़े, वैष्णवी रंबाड़े, जानवी रंबाड़े और बनर्जी और इनका टोनी बारूकर, ललिता बोरकर इनके साथी हैं ये। इन सभी के साथ मिलकर ये गीत सुनना चाहते हैं। आप हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। ये खत हमें मिला है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके परिवार वालों का। और ये हैं नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीरसागर और संजय चौहान। आप सभी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है धर्मात्मा, आवाज किशोर कुमार की। गीत को इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था धर्मात्मा। अगले गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। ये हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। ये खत हमें लिखा है बीड शहर से रंजीत कुमार नामदेव, थोराल प्रकाश दादा और इनके परिवार वालों ने। जिला नांदेड़ शहर से प्रकाश जैन, सूरज जैन और संगीता जैन ने यह खत लिखा है और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, हमारे नियमित श्रोता। आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पगला कहीं का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था पगला कहीं का। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी उड़नताल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, आकांक्षा, समीर और इनका गायकवाड़ परिवार। आप हैं सदर नागपुर से कमल गोलछा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता और इनका पूरा गोलछा परिवार। और ये खत हमें मिला है रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया का। गांव दलपतपुरा से सुनने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। आप सभी मिलकर सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का दो गाना, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने फिल्म अभिमान का ये दो गाना सुना। और आइए अब सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। शब्दकार नीरज हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखा। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस, बिमला, सतीश अनेजा और उनके परिवार वाले। ये खत आया है शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी, पार्वती, राधा चंद्राकर का। और जिला बड़ौदा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का। आइए आप सभी मिलकर सुनिए फिल्म गैम्बलर का ये दुगाना।

0: इस युगलगान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत।
1: विदिशा के राज प्रासाद की संगीत शाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की नूपुरों की ये मदमाती ध्वनि। नव वसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी

0: न बड़ी रानी धारणी है, न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे।
1: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है, वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सकें।
0: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा, तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
2: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
3: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
2: ओह, हमारे साथ ये यज्ञसेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीरसेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञसेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे।
0: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था। और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ ही लिया। संगीत शाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारणी और राजप्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी, उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: अति सुंदर।
1: महाराज देखा?
0: पितृ गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने ठीक ध्यान से इसका चित्र नहीं बनाया।

0: इसने तो इस गीत के बहाने अपने आप को आप पर न्योछावर कर डाला।
1: मैं भी यही समझता हूँ। सब इसने हमको संबोधित करके कहा है कि नाथ पशु पर अपनी ही समझो।
2: मालविका अब तू जा।
3: ठहरो ठहरो ठहरो, अभिनय में कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
0: महाराज जी भर कर देख लीजिए।
4: मैं क्या पूछूंगी, मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
1: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका हैं महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
2: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ आर्य गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
3: महारानी, मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
4: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
1: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
3: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
2: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
3: दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ।
2: गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अभी इसे अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
4: जो आज्ञा।
3: लीजिए महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
1: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया।
3: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि व्यक्ति ही अपने पास ही औषधि भी दे।
2: आर्य पुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए।
1: जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं।
2: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: अरे अब तो हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो हरदत्त जी, आपके शिष्या का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे। आप जाकर विश्राम।

0: हम कीजिए।
1: ओह आर्यपुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
2: महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण।
3: महाराज, सुंदरता में ही नहीं कला में भी मालविका अद्वितीय है।
0: मित्र, सच पूछो तो विधाता ने सहज सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया। मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कुछ चिंता करो ना।
4: इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवा की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
0: मित्र, शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सके।
3: महाराज, कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट।
0: हमें घबराहट क्यों ना हो, वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसी बसी है कि रानीवास की तमाम रानियों से हमारा मन एकदम उचाट हो गया है। मित्र गौतम, सोचा कोई उपाय?
3: उपाय? उपाय? हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी।
0: हम उसे मालामाल कर देंगे।
3: बकुला वलिका, समझ गई ना, यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। हाँ
1: आए गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंप कर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ,
5: अरे मालविका, तुम आ गई।
6: दासी सेवा में उपस्थित है देवी। पांव में क्या बहुत कष्ट है?
5: ओ, इस दुष्ट गौतम के नटखट बन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पांव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है। आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए। उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती। अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ।
6: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा।
5: तो तुम बकुला वालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
6: जो आज्ञा।
5: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी।
3: ये लीजिए महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए। तनिक देखिए तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है।
0: हाँ, हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा। सुनो मित्र, इस मधुर कोकिल सर द्वारा वसंत ऋतु हमसे मानो पूछ रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा सह नहीं पा रहे हो क्या? ये प्रेम की पीड़ा, हे कामदेव, कहां तो एक और जी को ढारस देने वाला तुम्हारा कोमल फूलों का धनुष, और कहां ये हृदय को भी मत डालने वाला प्रेम का रोग। ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं वे उतने ही कठोर होते हैं।
3: महाराज, तनिक धीरे से काम लीजिए, आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है।
0: हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा, आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा।
3: चलिए झूला गृह की ओर।
0: झूला गृह की ओर?
3: हाँ हाँ, अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था। रानी इरावती ने कहलाया था कि वे वसंत आगमन के उपलक्ष्य में आज आपके साथ प्रमद वन के झूला गृह में झूला झूलना चाहती हैं और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
0: हाँ मान तो ली थी परंतु
4: अरे कैसी अचरज की बात है कि
0: क्या हुआ
3: उधर देखिए महाराज उधर सीधे साधे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन इधर चली आ रही है
0: क्या क्या मालिका आ रही है
4: और क्या
0: तो सब जवाब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी, वैसे ही ये जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
3: लीजिए वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
0: आहा, ये सीधे सादे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र इसने इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं, गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हें गिने फूल बचे रह गए हों।
3: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा महाराज।
0: मित्रों को ऐसा ही सूझा करता है। अरे मालिका अपने आप कुछ कह रही है, आओ मित्र हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने।
3: लेकिन महाराज अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी।
0: मित्र हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे।
6: दुर्लभ प्रिय है हृदय छोड़ते तू मिलने की आशा, अरे हृदय तू ऐसे की चाह क्यों करता है जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है और ना जिस तक अपनी पहुंच ही है। पूछे यूं सताकर तुझे क्या मिल रहा है।
0: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है मित्र, इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं, अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है।
3: महाराज आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए वो हमारे सहायका बकला वलका उसके पास पहुंच गई।
0: अरे ये बकला वलका साज श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है।
3: अरे आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं।
0: अच्छा तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा।
4: और नहीं तो क्या आपके लिए

0: सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूं। लो सखी। हृदय, ये सम्मान पाकर व्यर्थ भूल मत जाना। सखी, तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना।
1: वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो।
0: अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो। हाँ।
2: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई खोपलें फूट आई हो।
3: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
2: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पड़ने योग्य हैं।
3: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप ही अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
2: मन चाह भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
0: अरे निपुणिका, आर्य पुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
4: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे, आइए उन्हें ढूंढें।
0: अरे मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्य पुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
4: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेंगुलता मंडप में बैठे।
0: अच्छा चल।
4: अरे ये क्या स्वामिनी?
0: क्या क्या हुआ रे निपुणिका?
4: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
0: अरे क्या कह रही है?
4: देवी तनिक उधर देखिए, उधर वहां अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है।
0: मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
4: मैं समझती हूँ कि पाँव की चोट के कारण महारानी धारिणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूपुर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
0: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
4: तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
0: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं पड़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए, कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये साथ श्रृंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी चल जाता है।
1: क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
0: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी, ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
1: सच सच कह दूं, ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
0: सच? बड़े भाग्यवान हो, इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं।
1: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योग्य तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है। हाँ।
0: लो तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया।
1: आहा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है। लाओ अपना दूसरा पैर तो
0: ही।
1: मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
0: सखी ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
1: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ
0: मैं तुम्हें प्यारी हूँ इसीलिए।
1: मुझे ही नहीं तुम महाराज को भी प्यारी हो।
0: ये सब झूठ है, उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
1: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है। हाँ
0: क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो?
1: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
0: सच?
1: बैसखी, उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
0: अरे पगले, भौरों के डर से कोई कानों में आम्रमंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो, इस पैर में भी महावर लग गया, अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दूं? लो, अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो। अरे, क्या सोच रही हो?
1: सखी, यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
0: अरे, मेरा तो नाम ही बकुलावली का है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी।
2: वाह बकुलावलिका, वाह मित्र। बकुलावलिका ने बड़ी चतुराई से मालविका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
3: महाराज, उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
2: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं ही अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र, हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
3: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
0: आई गौतम, महाराज भी
3: क्यों रही बकुलावलिका, सब कुछ जानती हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
0: आर्य गौतम, मैं आर्य, इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की, महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं।
2: अच्छा, तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़ कर उठो।
3: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
2: क्यों भद्री, तुम्हारा ये किसलय कोमल बायां चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने को नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
1: सखी, महारानी को जाकर सूचना दी कि उनकी आज्ञा अनुसार हमने।
0: अरे, पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले।
2: भद्री, तुम जा सकती हो, परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
5: मालविकाग्निमित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी

0: ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी
1: जी
0: सलमान भाई थे,
1: हाँ हाँ
0: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला, तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
1: बिल्कुल
0: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ
1: हाँ
0: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है, क्योंकि
1: जी,
0: दोनों गाने वही थे।
1: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की,
0: नहीं
1: थी कि
0: नहीं
1: चुनरिया पर ही आपको
0: नहीं
1: गीत
0: नहीं
1: लिखना।
0: मैंने खुद लिखा, उन्होंने कहा कुछ ऐसा ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि वो उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
1: आपस का।
0: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर
1: टाइप
0: रहे हैं,
1: नहीं हुए आप।
0: टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी। लगभग 5,000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5,000 चुनरिया तो नहीं है।
1: हाँ
0: और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल अलग मैंने किया। लकी ऐसी बात है कि एक जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी,
1: अच्छा
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग,
1: हाँ
0: तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बैल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: वो
1: सर।
0: जगह ही रहता था
1: अरे
0: मतलब, और फुल तैयार, बाजा रखा, हाँ बोल। हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के। हाँ ना भाई साहब, इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया
0: चुनरिया। और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई,
1: वो
0: तो
1: कौन सा गाना था?
0: रंगली नी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने
0: जी
1: कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए।
0: जी
1: इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा।
0: ये सारी फाइलें जो है ना, वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहाँ तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो ना ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का
1: जी
0: अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी जी
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया है, मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले तो लिख लेना, कोई बात नहीं, उसमें क्या
1: हाँ
0: है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है, लेकिन गाना मैं लिखूंगा।

0: हाँ
1: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया, और ये उनका बहुत बड़ापन था। उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया, और मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना
0: मानना
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी। मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंद्र जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया, और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
0: अरे वाह
1: तो इतने ग्रेट थे,
0: जी
1: वरना कहाँ रविंद्र जैन और
0: जी
1: कहाँ सुधाकर शर्मा,
0: जी
1: क्यों मेरे गाने लेंगे वो।
0: सही
1: देखिए
0: बात है।
1: रविंद्र जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे, कभी भी बांद्रा जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंद्र जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं
0: जी
1: सकते।
0: जी जी
1: तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे क्या रे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल
0: अच्छा
1: और कश्मीर का राजमा है,
0: अरे
1: एक प्लेट में ला के दे।
0: हाँ
1: मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए
0: भूख
1: हैं, भूखे प्यास लगी
0: लगी
1: होगी, और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन बिना
0: होगी
1: खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
0: बहुत खूब।
1: एक किस्सा मैं आपको बताता हूं, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
0: हाँ
1: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर,
0: गाना कौन सा है?
1: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना,
1: जी
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। और मैं सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला, कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा जी
0: मैं बेचैन हो गया। मैं
1: हाँ
0: कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूं ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया,
1: अच्छा
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ। मैं, और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सेलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा, तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप, और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए।
1: जी
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं, ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया, और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है,
1: अच्छा धरती की हलचल।
0: हलचल, और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है, ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का, और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार
0: अब
1: विजु
0: पहली बार
1: शाह
0: मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था, तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी।
1: बिल्कुल
0: तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लकी सब में है ना,
1: हाँ
0: दावा नहीं कर सकते अपन।
1: जी जी
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मैंने ठीक है,
1: ओहो
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना, डीएवी जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी
0: बोले तू एक काम कर, मेरे घर फोन लगा।
1: हाँ
0: मैंने उनके घर फोन लगाया, मिसेज को, वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये
1: ओ
0: मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल
0: तो ये इस गाने की कहानी है,
1: बहुत
0: बहुत ही
1: सुंदर
0: खूबसूरत गाना था।
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना
0: और
1: बनते
0: मेरे
1: थे।
0: लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ, ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया,
1: गाया।
0: उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और
0: जी
1: कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये बातें,
0: जी
1: ना जानने को
0: जी
1: मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे, आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके
0: जी
1: बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाग्नि जी, आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूं, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा, और हम लोग काम करेंगे।
1: जी
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो जो मैं गा रहा हूं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और वो ट्यून जो है ना, गा गा के बनाते हैं। और ट्यून जो है ना, ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है,
1: अच्छा
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है
1: हाँ
0: कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे गाड़ी में बैठे हुए,
1: हाँ हाँ
0: तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो।
1: हाँ हाँ
0: मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है यार, ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो।
1: बर्दाश्त
0: फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे? बोले
1: बिल्कुल
0: मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए, हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त के
1: बिल्कुल
0: कितने हैं?
1: बहुत
0: तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है
0: फिर
1: बहुत
0: मैंने
1: खूब
0: दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता, फिर
1: एकदम
0: उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया, और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर गजब गाना क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है
0: बहुत
1: और
0: सुंदर
1: क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना, एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलता था यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है वो, कि अब जो है ना वैसा माहौल
0: मिलता
1: नहीं
0: है।
1: है।
0: ये
1: मैं
0: तो सर फीलिंग्स का एक मामला है जहां एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कुछ चीज को
1: हाँ,
0: क्रिएट कर रहे
1: लेकिन
0: हैं।
1: नहीं नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है, तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊँगा और मैं आपके साथ करूँगा,
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ
1: मैं
0: जाऊंगा,
1: आ
0: वक्त
1: जाऊँगा, तब
0: दूंगा।
1: वक्त दूंगा तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था तो उसमें अगम निगम साहब वो
0: सोनू निगम
1: गाना
0: जी के पिताजी।
1: जी वो गाना गा रहे हैं, तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है, वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहां कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा, हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन
0: मिला।
1: मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में, एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे, और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: उसमें कोई
0: बहुत
1: बात
0: बड़ी बात
1: नहीं।
0: आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए,
1: जी
0: तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है
1: नहीं नहीं
0: आपने,
1: नहीं
0: और
1: नहीं
0: आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना,
1: हाँ जी
0: तो
1: जी
0: ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं। ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
1: ये मुझे भी नहीं पता, वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूं मैं लिख दूंगा।
0: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़ें
1: नहीं
0: आपके
1: नहीं
0: गीतों
1: नहीं
0: को?
1: नहीं नहीं अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है, जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ आ भाई लिखो, तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है, तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
0: वो लिख
1: उसको
0: लेता
1: ले
0: है।
1: जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ।
0: अच्छा
1: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता, हमने
0: अच्छा
1: फायदा क्या इसका है, तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है।
0: हाँ,
1: तो अभी मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम, मैंने कहा लिखो क्या अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है, मैं सकपका गया। और वो इतने ग्रेट हैं वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा तू लिख ले। तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा,
0: तो
1: मैंने
0: हाथों
1: लिखा,
0: हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
1: बिल्कुल
0: आपको
1: लिखवा देता हूँ।
0: सिचुएशन बतानी पड़ती है, ये
1: हाँ
0: एक्टर है
1: जो
0: ये
1: भी
0: एक्ट्रेस है,
1: सिचुएशन बताएंगे
0: बहुत खूबसूरत।
1: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
0: हर रिकॉर्डिंग में आप
1: हर
0: रहते
1: रिकॉर्डिंग में
0: हैं।
1: मैं रहता हूँ। और रिकॉर्डिंग खोते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है। मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीज़ें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती हैं।
0: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
1: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी,
0: नहीं।
1: लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
0: अच्छा।
1: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद भी आया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है।
0: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद
1: एक
0: का।
1: जी मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए, ये है आपका तेरी चुनरी बन्नो लाखों की।

0: 5,000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की, और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं।
1: जी
0: इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं, और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली,
0: जी
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणा का हूँ और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी
0: जी
1: हमारे केसी मालू जी की है,
0: बिल्कुल,
1: वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूँ, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता।
0: जी
1: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से,
0: उड़ली,
1: ओडली
0: अच्छा यहाँ पर भी
1: म्यूजिक,
0: चुनरिया आई,
1: चुनरिया अंडरस्टूड है।
0: हाँ जी
1: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
0: अरे वाह,
1: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए
0: अच्छा,
1: और हम लोग घर पे गए। तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
0: जिनका जिक्र अभी आप कर
1: जिक्र
0: रहे थे।
1: किया। तो मैंने कहा यार सतीश मेरे लिए इतना काम कर दो यार, उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं, सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं
0: अच्छा,
1: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए, और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी है ना, जैसे सतीश जी कभी बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूं, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूं, जो है वो है।
0: जी जी
1: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या पैसा। तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूं कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूं। बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ
0: बात
1: कि अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं 1 रुपया
0: नहीं
1: नहीं लूंगा।
0: वाह, अद्भुत,
1: ये बहुत ही अद्भुत, और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदरकांड शुरू किया, हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदरकांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा अब शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो 1 पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा,
0: हाँ हाँ सही
1: लेकिन
0: बात
1: मेरी
0: है,
1: औकात ही क्या है, मैं क्या करूंगा। कुछ भी नहीं कर
0: उनकी
1: पाऊंगा,
0: महानता देखिए आप अमित
1: लेकिन
0: कुमार
1: उनकी
0: साहब।
1: ग्रेटनेस देखिए। हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं, और जब भी वो आते हैं बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया, तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं,
0: जी
1: लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ, और
0: बहुत
1: मैं ईश्वर से दुआ करता हूं
0: सैल्यूट
1: कि
0: है उन्हें।
1: बस वो खुश रहें स्वस्थ रहें एकदम।
0: बिल्कुल
1: ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: उन्होंने क्लियर किया
0: कि मैं कुछ नहीं लेने
1: मैं कुछ
0: वाला।
1: नहीं लेने वाला,
0: बहुत बड़ी बात सर।
1: तो ये बहुत बड़ी बात।

0: जिंदगी बदल दी।
1: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा। ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो। मैं लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत यह है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
2: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना
1: वैसा
2: नहीं
1: गाना नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा फिर। तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने, हिमेश भाई ने बना भी दिया। हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा। हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
2: बहुत सुंदर
1: कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला। गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे एक लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
2: आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता।
1: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं ना।
2: जी,
1: तो
2: जी,
1: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
2: बहुत सुंदर
1: वो हो गया।
2: सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है, फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को, क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
1: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो

0: लोग बोलते हैं एआई से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं,
1: अच्छा,
0: बट
1: लेकिन
0: एआई जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा, वो इमोशन नहीं ला
1: बिल्कुल,
0: पाएगा,
1: सबसे बड़ी
0: वो
1: बात है।
0: कहानी नहीं ला पाएगा,
1: वो साउंड
0: टेक्निकली
1: कर
0: वो
1: देगा।
0: साउंड कर देगा लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के
0: जी
1: निर्माता
0: जी
1: नए नए आ रहे हैं, नई
0: बिल्कुल
1: नई तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं,
0: हाँ
1: बहुत
0: बहुत
1: नए
0: बिल्कुल
1: सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
0: मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तभी आज तक काम कर रहा हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोड़ पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फूहड़ पन्ने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
1: बहुत प्यारे
0: लेकिन
1: तरीके
0: बड़े
1: से,
0: प्यार से कहा, एक अंदाज
1: क्लासिकली।
0: से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
1: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, 5 पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और
0: जी जी
1: ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया। जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं, बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मंदाकिनी जी ये आपने धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं, बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
1: वो कालजयी हो गया।
0: वहां वो ऐसा नहीं हो सकता है।
1: जी
0: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन
1: जी
0: देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया, तो ये जो पेशेंस है आपके पास वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूं तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा, और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल।
1: बिल्कुल।
0: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना, भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं मैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है,
1: बिल्कुल।
0: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही, तो आप आइए काम कीजिए, हैव पेशेंस, काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल, मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में,
1: जी, 73 से 82 तक आपने इंतजार किया।
0: इंतजार किया, फिर 82 से 97 तक इंतजार किया,
1: दूसरे गाने का?
0: दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए,
1: ओहो।
0: 97 में गाना बाहर आया ओडली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप
1: पेशेंस।
0: डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
1: जी
0: एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था, परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूं
1: अच्छा।
0: तो कंजके बिठाते हैं उसमें, उसमें कोई 300 साढ़े 300 रुपये का खर्चा आता था, ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजके वंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूँगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया, एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहां गया मैं, घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और मैं था, अरे यार मैं तेरे को भी फोन लगा रहा हूं तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूं तब तक तू आ गया। वहां जल्दी आ, अंदर आ, अंदर आ, अंदर गया। बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा, ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, 3 गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए, तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए, चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपये थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ ना
1: आपसे
0: कुछ
1: बात
0: होगा।
1: करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी,
0: जी
1: और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला,
0: जी
1: विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल, वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं, इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक
1: जी
0: ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं
1: जी
0: से मेरी शुरुआत थी।
1: जी
0: और आज मैं उस मुकाम पे हूं कि जहां मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा है, इतने सब, ये कभी मेरे ख्वाबों में थे और मैं खुशकिस्मत हूं कि इन सब से मैं मिला हूं।
1: जी और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं, आप विविध
0: धन्यवाद
1: भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को
0: जी
1: हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया,
0: जी
1: आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: जी और श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: जी तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी तक आप FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के प्रसारण सुन रहे थे। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम मीडियम वेव और FM के मीटर्स पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम

श्रोताओं नमस्कार। आज शाम कार्यक्रम के साथ मैं हूं मनोज कुमार। श्रोताओं शाम का ये वक्त दिन भर की थकान के बाद कुछ पल आराम से बैठने का होता है, और हम जब आराम से कुछ पल बैठते हैं तो कुछ सोचते भी जरूर हैं। बहुत सारे ख्याल हमारे दिल में आते हैं और सोचने का ये सिलसिला यादों के शहर तक पहुँच जाता है, उन यादों में जिनमें हम कभी हंसते हैं तो कभी उदास भी हो जाते हैं। यादों की कोई सरहद होती तो अच्छा होता, खबर तो होती कि सफ़र कितना तय करना है। बात बिल्कुल सही है, यादों की दुनिया बहुत लंबी होती है,

बाल, वो भीगा बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी।

कोई तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है, क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है, क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है, क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है।

तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

यादें हंसाती भी हैं तो कभी रुलाती भी बहुत हैं। क्या करें यादों को याद करके, क्योंकि इन यादों में छिपा होता है बहुत कुछ। और यादें इतनी अजीब भी होती हैं जो बिन दस्तक दिए हर रोज चली आती हैं। आखिर यादें हैं साहब जो बिन बताए हमारे ख्यालों में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ ही जाती हैं।

श्रोताओ, अक्सर हम कुछ यादों को भूलना चाहते हैं, मगर यादें तो यादें हैं, इन्हें कैसे दिल से निकाल सकते हैं। यादों का ना कोई मौसम होता है और ना कोई पल। यादें बचपन की हों या दोस्तों की, सबको समेटना बड़ा मुश्किल होता है। दिल के किसी कोने में बनकर अजनबी जो मिले थे जिंदगी के सफ़र में, इन यादों के लम्हों को कभी मिटाएंगे नहीं हम दिल से, बस याद करते जाएंगे।

आरजू होनी चाहिए किसी को याद करने की, लम्हे अपने आप मिल जाते हैं। कौन पूछता है पिंजरे में बंद पंछियों को, याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ समेट कर गुजर जाता है। तो श्रोताओ, आज शाम कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज शाम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। युवा साथी सुनेंगे अब अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं स्वास्तिक मिश्रा और मेघा ठाकुर। कार्यक्रम की प्रस्तुति है अवधेश कुमार गौतम की।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट शो युववाणी में, जिसे लेके आज आपके सामने हाजिर हूँ मैं, स्वास्तिक मिश्रा,
1: और साथ हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त मेघा ठाकुर। तो दोस्तों, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। बताइए कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्यारी सी मुस्कान के साथ सुन रहे होंगे हमारा आज का ये प्रोग्राम। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज के सवाल के साथ।
0: तो दोस्तों, हमारा आज का सवाल है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी।
1: और साथ ही इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर, और आज के अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने हैं अपने अपने सही जवाब, और सही जवाब देने वाले हमारे सभी श्रोताओं के नाम हम बताएंगे कार्यक्रम के अंत में।
0: वैसे मेघा, आज की दुनिया में लोग अक्सर अपनी सफलता को अकेले हासिल करने की बात करते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो कई बड़ी उपलब्धियां तब संभव हुई हैं जब लोगों ने मिलकर काम किया, एक दूसरे का साथ दिया और साझा लक्ष्य के लिए आगे बढ़े।
1: हाँ, और शायद इसी भावना को सम्मान देने के लिए हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे मनाया जाता है। ये दिन हमें बताता है कि सहयोग और एकजुटता के जरिए समाज में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं।
0: मतलब कोऑपरेटिव का सीधा मतलब सिर्फ एक संगठन बनाना नहीं, बल्कि मिलकर आगे बढ़ने की सोच भी है।
1: बिल्कुल, कोऑपरेटिव्स ऐसे समूह होते हैं जहां लोग अपनी जरूरतों और लक्ष्य को पूरा करने के साथ आगे आते हैं। इसमें समान भागीदारी, आपसी विश्वास और सामूहिक लाभ को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है।
0: वैसे सच कहूं तो हमारे आसपास भी इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, चाहे किसान सहकारी समितियां हों, डेयरी संस्थाएं हों या फिर छोटे व्यवसायों के समूह, ये सभी मिलकर कई लोगों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं।
1: हाँ, और यही सहकारिता की सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो ना सिर्फ

0: आर्थिक विकास होता है, बल्कि समाज में समानता और आपसी भरोसा भी बढ़ता है।
1: मतलब साथ मिलकर काम करना सिर्फ काम को आसान नहीं बनाता, बल्कि ज्यादा लोगों को आगे बढ़ने का अवसर भी देता है।
0: एग्जैक्टली, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे हमें यही सिखाता है कि प्रगति का असली अर्थ केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ना भी है।
1: वैसे अगर हर क्षेत्र में सहयोग और साझेदारी की भावना और मजबूत हो जाए, तो शायद समाज और भी ज्यादा सशक्त और समृद्ध बन सकता है।
0: और यही इस दिन का सबसे बड़ा संदेश है कि जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं, तो वे ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरे समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करते हैं।
1: बिल्कुल सही बात कही है तुमने मेघा। और दोस्तों, इसी के साथ अब प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी हम लाए हैं आपका फेवरेट सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स, जिसमें हम कॉल के जरिए आप सभी से जुड़ेंगे, करेंगे खूब सारी बातें और सुनेंगे आपके पसंदीदा गाने। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलते हैं आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर जुड़ गए हैं आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी से। और दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स में जुड़ने के लिए आपको ये नंबर डायल करना होगा। नंबर है 0595-232-4326 और रहेगा हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार। लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
3: तो दोस्तों, कुछ खास है आज में आज हम बात करेंगे आजादी के एक ऐसे दीवाने की जिनका नाम इतिहास के पन्नों में एक नायक की तरह दर्ज है, जिनकी गर्जना से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल गई थी और इनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू।
0: साथियों, आंध्र प्रदेश के घने जंगलों और विशाखापट्टनम की वादियों से उठी वो आवाज जिसने आदिवासियों के हक के लिए गोरे सहाबों की नाक में दम कर दिया था। मात्र 22 साल की उम्र में इस सन्यासी ने क्रांति का रास्ता चुना।
3: जब अंग्रेजों ने मानियाम इलाके के आदिवासियों से उनके जंगल, उनकी जमीन और उनके अधिकार छीनने के लिए मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लागू किया, तब जंगल का यह शेर उनके हक के लिए उठ खड़ा हुआ।
0: साल 1922 में शुरू हुआ ऐतिहासिक रंपा विद्रोह। अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासियों को इकट्ठा किया, उन्हें तीर कमान और पारंपरिक हथियारों से लड़ना सिखाया। अंग्रेजों के पास बंदूकें थी तो राजू ने गोरिल्ला वॉरफेयर को अपना हथियार बनाया।
3: और दोस्तों, जानते हैं उनकी सबसे खास बात क्या थी? ब्रिटिश पुलिस थानों में अपनी हर रेड के बाद वो एक चिट्ठी छोड़ के जाते थे जिसमें वो हमले की तारीख, हमले का समय और हमले में कौन कौन से हथियार वो लेके गए उसकी डिटेल्स लिखी होती थी।
0: और दोस्तों, इसीलिए लोग उन्हें प्यार से, आदर से बुलाते थे मनियाम विरुडू, यानी जंगल का नायक। लेकिन दोस्तों, देश के लिए जान निछावर करने वाले इस नायक को अंग्रेज सीधे रास्ते कभी नहीं पकड़ पाए। साल 1924 में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए उन्होंने खुद को देश के लिए बलिदान कर दिया।
3: मात्र 26 साल की उम्र में वो शहीद हो गए, पर जाते जाते हर हिंदुस्तानी के दिल में आजादी की वो अलग जगह गए जिसे कोई बुझा नहीं पाया।
0: और हम सब मिलकर जंगल के इस महान नायक, क्रांति वीर अल्लूरी सीताराम राजू को कोटि कोटि नमन करते हैं।
3: दोस्तों, इतिहास भले ही पन्नों में सिमट जाए, लेकिन ऐसे नायकों का बलिदान हमारी रगों में बहते खून में हमेशा जिंदा रहता है।
0: दोस्तों, आज का दिन लोकतंत्र के लिए भी खास है और आज हम राजनीति के उस दौर की बात करेंगे जहां ईमानदारी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीने का तरीका है। और आज कहानी एक ऐसे इंसान की है जो दो बार देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जब दुनिया से गए तो उनकी जेब में एक रुपया तक नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री गुलजारी लाल नंदा जी की।
3: दोस्तों, इनका जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में हुआ था। गुलजारी लाल नंदा जी बेहतरीन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने देश के योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो देश के पहले श्रम मंत्री यानी कि लेबर मिनिस्टर भी बने और मजदूरों के हक के लिए कई बड़े कानून बनाए।
0: और दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी पहचान थी संकट के समय देश को संभालना। साल 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ और फिर 1966 में जब ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी अचानक हमें छोड़कर गए, इन दोनों ही मुश्किल मौकों पर देश की बागडोर नंदा जी के हाथों में सौंपी गई। उन्होंने देश को बिखरने से बचाया।
3: लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं इस सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? जो व्यक्ति दो बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, रिटायरमेंट के बाद उनके पास अपना खुद का एक मकान तक नहीं था। वो दिल्ली में किराए के घर में रहते थे और स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उन्हें जो 500 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती थी वो उसे भी लेने से मना करते थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि देश की सेवा पैसों के लिए नहीं की जाती।
0: और ईमानदारी की इस चरण सीमा के लिए 1997 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा।
3: और दोस्तों, आज के इस दौर में नंदा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि पद तो आते जाते रहते हैं लेकिन इंसान की ईमानदारी अमर रहती है। हमारी ओर से इस महान देशभक्त को शत शत नमन।
0: और दोस्तों कुछ खास है आज में, आज बस इतना ही।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नर्म धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: चलिए दोस्तों, अभी हमने सुना कुछ खास है आज, अब बढ़ते हैं हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स की ओर और जानते हैं हमारे पहले श्रोता साथी हमसे कौन जुड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स।
4: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, हमारे कौन से श्रोता साथी से बात हो रही है?
4: जी ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी स्वागत है भगवान सर आपका, और आज आपकी कॉल लगी है, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
4: दीदी फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, और गाने के बोले जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है।
0: जी सर, और हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आजकल गर्मी बहुत हो रही है और आप अपने परिवार को और अपना कैसे ख्याल रख रहे हैं?
4: दीदी हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे इधर 20-25 दिनों से पानी गिर रहा है और अभी 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है दीदी, तो हमारे इधर गर्मी बिल्कुल नहीं पड़ रही।
0: अच्छा अच्छा, चलिए, और आपने अच्छा बताया कि वहाँ पे बारिश हो रही है, और आप कुछ नाम लेना चाहेंगे?
4: जी हाँ दीदी, नाम लेना चाहेंगे ना, पहले तो राजेश सूर्यवंशी जी हैं, उसके बाद हैं गौतम राय बोले सर जी हैं, जगदीश राय गर्ग जी, केसे सिंह राजपूत जी हैं, सारून अंसारी जी हैं, गंगाधर सावनकर जी हैं, और बरेली से हैं हमारे एक मित्र और हैं राजेन गंगवार जी हैं, इनके साथ सुनना चाहेंगे दीदी, और आप सभी दोस्तों को डेलीकेट रहेगा प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं।
0: जी सर, आपने हमारे आकाशवाणी रामपुर में फोन किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद दीदी।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, हमारी किन श्रोता साथी से बात हो रही है?
1: मैं गांधी समाज रोड रामपुर से गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी गफ्फार भाई, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आकाशवाणी परिवार के क्या हाल है?
0: जी हम भी बढ़िया हैं और आकाशवाणी परिवार में भी सब बढ़िया हैं। और आप बताइए, इतनी गर्मी हो रही है तो गर्मी से बचने के लिए आप क्या उपाय अपना रहे हैं?
1: पानी ज्यादा से ज्यादा पी रहे हैं, शिकंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रस पी रहे हैं
0: जी। और कौन सा खाना
1: बाहर कम से कम निकल रहे हैं
0: जी। और कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं कसूर फिल्म का गाना सुनना चाहूंगा जो मेरे दिल को प्यार दे
0: जी। और कोई श्रोता साथी
1: के नाम है
0: जी बताइए।
1: राजिया खान है, सिमरन खान है, इरफान खान, शाहिदा परवीन, नवाबुद्दीन भाई, इकराम अली पिरानी, मसूद हुसैन, शबनम अब्बासी, शांतर अंसारी, अभी बिदीसी, गुलबशा इदीसी, अनीसुर रहमान, आकाश पचौधरी, पम्मी पक्के बास्ते, यही सब सुनना चाहेंगे
0: जी। चलिए फिर सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।
1: शुक्रिया।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: कौन से श्रोता साथी से हमारी बात हो रही है?
1: सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभाग ग्राम से।
0: जी सचिन जी, कैसे हैं आप?
1: मैम हम अच्छे हैं, आप बताइए कि आप कैसे? आप रामपुर में सभी लोग कैसे हैं?
0: जी सर, आकाशवाणी रामपुर में भी सब अच्छे हैं। सर आज आपका कॉल लगा है, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मैम फिल्म का नाम रहेगा आज का अर्जुन, और इसमें दो टोन रहेंगे, गोरियां कलाइयां। और मैं मीडियम देख के प्रसारण बाधित होने के कारण मैं तो नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन कॉल लगाया गया बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत दिनों के बाद कॉल लगा।
0: जी सर, हमें भी अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने कॉल
1: तो
0: किया।
1: सुना दे सकता हूँ?
0: जी जी बिल्कुल सर,
1: आप रहेंगे और आपके साथ ही रहेंगे सर जी, और सुबह परवीन जी रहेंगे ककरुआ जिला रामपुर से, और सरगम वासी जी रहेंगे, आदिल भाई रहेंगे, और
0: जी सर चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो फ्रेंड्स सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी। हमारे किस श्रोता साथी से बात हो रही है हमारी?
1: मैं चंदौली मीरगंज जिला बरेली से जिशान वारसी बात कर रहा हूँ सर।
0: जी जिशान जी, कैसे हैं आप?
1: मैं सर एकदम ठीक ठाक हूँ सर, आप बताएं आप कैसे हैं?
0: जी हम भी बढ़िया हैं। जिशान जी, आप तो हमारे काफ़ी रेगुलर लिसनर हैं, तो आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप हमें बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा सर, युवाणी में सारे सेगमेंट पसंद आते हैं और आज का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें श्रोता साथी बहुत दूर दराज से कॉलें करते हैं, उनकी आवाज़ सुनने को मिलती है।
0: जी, और आपकी आवाज़ तो सुनने को मिल गई है, आप गाना कौन सा सुनना चाहेंगे ये बताइए हमें।
1: जी मैं गाना सुनना चाहूँगा, फिल्म का नाम है जाने होगा क्या, और गीत के बोले पलकें उठा के देखिए नजरें मिलाइए, और इस गीत को सुनना चाहेंगे मेरे साथ करूला मुरादाबाद से अयूब खान।
0: जी ओके, चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो फ्रेंड्स,
0: आपके कौन से श्रोता साथी हमसे बात कर रहे हैं?
1: मैम नमस्ते।
0: नमस्ते
1: मैम, मैं मिष्ठांगन रामपुर से रेखा अग्रवाल बोल रही हूँ।
0: जी रेखा जी, कैसी हैं आप?
1: मैम हम तो अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं और रामपुर आकाशवाणी में सब कैसे हैं?
0: जी मैम, हम भी ठीक हैं और रामपुर आकाशवाणी में भी सब ठीक हैं।
1: हाँ मैम, आज बहुत दिनों बाद कॉल लगी है।
0: जी मैम, हमें भी अच्छा लगा आपकी कॉल लगी। और मैम जानना चाहेंगे, आप युववाणी कार्यक्रम सुनती हैं?
1: जी हाँ, मैं तो ज़्यादातर
0: सुनती हूँ। जी जी, अच्छे बात है मैम। और मैम आज आपकी कॉल लगी, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैम उसका गाना वो सगाई का, ये वाला गाना, ना ये जमी थी ना आसमां था, ये वाला गाना सुनवाइए।
0: जी मैम, चलिए आपकी पसंद का सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: अच्छा नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स।
0: जी, हमारी किस श्रोता साथी से बात हो रही है?
1: जिला अमरोहा नई बस्ती सतई खालसा से बहारुल हसन से बोल रहे हैं आप।
0: जी बहारुल जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं भाई साहब। आपको फोन कर लिया, आपको आप बस्ती मिला तो आ रहे थे तो अचानक फोन लगा तो देखने लगे तो फोन भी लग गया।
0: जी, तो आपका फोन मिल ही गया है, तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
1: मैंने आपको दो तीन फिल्में बताई थी, उसमें से जो आपको मिले वो सुनवा देना।
0: ओके, और कोई श्रोता साथी जिनका नाम आप लेना चाहेंगे?
1: जैसे मोहम्मद आलम सिद्दीकी हैं, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी हैं, बेटी अलीसा सिद्दीकी हैं, सुल्तान सिद्दीकी, नाजिया सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, यासिन अंसारी, सुदेश चौहान, अतीक तौफीक, दानिश सिद्दीकी, महेश बुरकैन से, इकराम प्रेम साहब रामपुर से, बेलापुर मरदवा से, मुकेश प्रसिद्धी हैं, राशिद अंसारी हैं, मुजाहिर अंसारी हैं, ये साथ में रहे हैं।
0: जी चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना।
1: धन्यवाद भाई।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स।
1: साथियों, वक्त है प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव का, यानी आज के सवाल का सही जवाब जानने का, और साथ ही जानने का कि किन किन श्रोता साथियों ने दिया है हमें इस सवाल का सही जवाब।
0: तो दोस्तों, आज का सवाल था, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? और इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी, और इसका सही जवाब दिया है आप सभी श्रोताओं ने।
1: सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन वैन शाह, जॉन टी कैस्ट्रो, मोहम्मद रफीक पवार, नानक खन्ना, नंद कुमार ठाकुर, भगवत चौबे लाडला जी, अजीत कसाना, दिनेश वर्मा, हीरामणि वर्मा, नारायण लाल, सुरेश राठौर, अशोक सिंह, पुंजा जी नापकर, भाई रफत साहब, रियासत हुसैन सिद्दीकी, आकाश रस्तोगी, चौधरी राजवीर सिंह यादव, संजय ढींगिया, नजमुल हुडा, किशन सपकाल, सोहन जोशी, नबी हसन अब्बासी, बोधराज खोरबाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, हुकुम कर्माकर, वेरूलाल भागतारिया ढाकर, राजू मिगलानी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, वीपी गौतम, धर्मेंद्र छिपा, बलवंत कुमार वर्मा, विजय सिंह, एमडी यासीन अंजान, बवलेश पवार, विजय सुरलकर, हाजी गफार खान, शाहजी बोटके, धीरज भाई रवारी, राम कुमार रेवाड़, राजकुमार दूधी, मसरूर हसन, निसार सलमानी, विनोद वरसाना, श्यामसुल राही, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, जगदीश धाकर, मोहम्मद आमिर अंसारी, सत्येंद्र चंसौलिया, इरशाद अहमद अंसारी, विनोद मूरत, लाल मोहम्मद अंसारी, रवि कुमार राहुल, अनिल वी गोडके, मिजवा शमसी, दिग्दर्शन गौण, गजनन येले, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, सुरेश गगनेजा, गंगा सिंह रावत, फागुराम यादव, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मोहम्मद सईद अब्बासी, भुवन प्रकाश, बिट्ठल मास्टर सुरोशे, राजवीर सिंह यादव, मोहम्मद जाहिद अली, मुजफ्फर अली खान, शारुनूर अंसारी, मोहम्मद कालिफ अंसारी, प्रवीण चौहान, अब्दुल गफार कुरेशी, भाई रफत साहब, मुकेश कश्यप, उमेश कुमार, अनोखे लाल, दुर्गाराम साहू।

0: दोस्तों और इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। हमारा पता है
1: कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन संख्या 244901।
0: आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur@gmail.com। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
1: तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट सिने एक्सप्रेस के साथ, नए विषय, नई आवाज, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी मेघा ठाकुर
0: और स्वास्तिक मिश्रा को दीजिए अपनी अनुमति।
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे थे स्वास्तिक मिश्रा और मेघा ठाकुर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अवधेश कुमार गौतम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में

0: रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। श्रोताओ,
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
5: बात तो है ये सदियों पुरानी, लेकिन है जानी पहचानी। पानी है सबकी जिंदगानी, सोचो समझो बचाओ पानी।
4: जल की बचत का करो जतन, जीवन का ये अमूल्य रतन। श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर, आपका अपना आकाशवाणी रामपुर। जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 870001-4242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 870001-4242।

सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।

0: और भी आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशान में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की जबान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स के साथ साथ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम। श्रोताओं, संध्या के 6:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत यशुदास और अनुराधा पौडवाल के स्वर में। संगीत तैयार किया है उषा खन्ना ने और गीत को लिखा है इंदिवर ने। फिल्म का नाम है साजन बिना सुहागन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, सलमा आगा और मनहर उदास के स्वर में। इस गीत को लिखा है रविंद्र रावल ने और संगीत तैयार किया है बाबुल बोस ने। फिल्म का नाम है मीत मेरे मन के।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:20 हुए हैं। किसान साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। आज का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं पंकज सक्सेना और दीपक कुमार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं विक्रांत चौधरी।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनन वाले सभी किसान साथियों को आपके भैया दीपक
1: और पंकज की
0: राम राम।
1: और सुनाओ दीपक भैया, क्या हालचाल है आपके?
0: भैया हमारे हालचाल ठीक हैं और हमें उम्मीद है जो हमारे किसान साथी हैं वे अपने खेतीबाड़ी के और अपने पशुओं की अवैध देखभाल कर रहे होंगे।
1: जी भैया भैया, और देखो दीपक भैया, पिछले दिनों हमने देखो ना कि बारिश हो खूब भई है।
0: हाँ देखो भैया, जिन किसान साथियों की हमारी धान की फसल लगन के लिए रह गई, जो इंतज़ार कर रहे हैं बरसात को, तो भैया बरसात जो है बहुत पहली बरसात जो है बहुत फ़ायदेमंद हुई है।
1: जी भैया, और हम तो भैया ईश्वर से जय दुआ करते हैं कि बरसात हो जाए, और क्योंकि बात से कहा हमारे किसान साथियों के चेहरे पे एक खुशी की लहर आ जाएगी।
0: देखो भैया, कुछ किसान साथी इनके लिए जो है पानी की कमी होती है तो वहाँ धान की रोपाई ना ही पाती है, तो वो जो है बरसात पर ही निर्भर होते हैं।
1: जी भैया,
0: और बात है जो है हमारा खर्च जो है बहुत कम आता है।
1: जी भैया,
0: और धान की देखो फसल कुछ समय बाद जो है पूर्णतः रूप से लग जाएगी।
1: लग जाएगी, बिल्कुल भैया बात सही है।
0: और हमारे जो किसान साथी हैं बामे जो अपने धान की फसल में अपनी सही तरीके से लगावें, उसमें जो कोई बीमारी है या कोई खरपतवार वगैरह की दवाइयाँ समय समय पर लगाते रहें।
1: और देखो दीपक भैया, हमारो जो देश है ना भैया, वो देखो त्योहारों का देश है।
0: हाँ
1: और हम रोज़ाना प्रतिदिन कोई ना कोई त्यौहार भैया दिवस मनाते रहते हैं।
0: हाँ देखो भैया, आज है दिन शनिवार। शनिवार के लिए जो है हम एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात बताइए आपने भैया, क्योंकि साथियों हर साल जुलाई की जो पहले शनिवार पड़ते हैं ना भैया, वह को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाते हैं।
0: हाँ
1: तो जो का है भैया,
0: जे जो है भैया सहकारिता आंदोलन के महत्व को, जो लोगों ने जो सहयोग की भावना को बढ़ाता है और आर्थिक एवं सामाजिक जो विकास है सहकारी संस्थाओं के योगदान को बढ़ाता है।
1: बिल्कुल सही कही आपने, हमें ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है वो हमें भैया जो संदेश देते हैं कि मिलजुल कर काम करने से समाज और देश दोनों को विकास होता है।
0: बिल्कुल देखो भैया, हम इसमें जो है मिलजुल कर काम करेंगे तो बामे जो है तरक्की हो भाई हमारे काम में। और देखो भैया, सहकारिता को अर्थ ही यह है कि सबके लिए, सबके साथ और सबको विकास।
1: जी भैया बिल्कुल,
0: हमारी सरकार इसी चीज पर जोर दे रही है।
1: जी भैया,
0: जब लोग अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को जैसे समाधान है वे स्वच्छता से एक साथ मिलकर जुलकर कार्य करेंगे तो वो जो है हमारो ठीक हो गए वो।
1: हाँ, और भैया देखो कृषि अगर उसमें आ जाएं हम तो जहाँ सहकारिता आंदोलन को एक विशेष महत्व हो भैया, जैसे किसानों को ऋण है, उर्वरक है, बीज है, विपणन है और भंडारण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में ना जो सहकारी जो समितियां होती है ना उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है दीपक भैया।
0: हाँ बिल्कुल, देखो भैया हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पर सहकारी समितियां होती हैं वहाँ पर बीज अनुदान पर मिलता है और खाद भी समय पर मुहैया कराया जाता है। और इसके अलावा जैसे जो दूध उत्पादन में और चीनी के जो उद्योग हैं, मत्स्य पालन में जो है सहकारिता को बहुत अहम रोल रहता है।
1: और भैया ग्रामीण जो क्षेत्र होता ना बामे, हमारी जो सहकारी समिति होती हैं वे बहुत लाभ पहुँचाती हैं, जैसे किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती हैं, कृषि यंत्रों उन्नत बीजों की व्यवस्था करती हैं और उत्पादों के उचित मूल्य दिलाने में भी मदद करती हैं।
0: देखो इससे जो है किसानों की जो लागत होती है बामे कमी आती है और आय में जो है हमारी वृद्धि होती है। और देखो गाँव में जो है रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। क्या अब तो प्रमुख जो क्षेत्र हैं हम बता दें उनमें सहकारिता जो है डिजिटलीकरण में जो है मॉडल बन जा रही है।
1: जी भैया बिल्कुल, और दुग्ध उत्पादन, कृषि विपणन, भंडार, बैंकिंग, आवास, मत्स्य पालन और महिला स्वयं सहायता समूह होता ना बामो सहकारिता मॉडल अत्यंत सफल रहो।
0: हमारी महिलाओं के लिए जो है सहकारिता में अब जो है ऋण मुहैया कराया जा रहा है।
1: अच्छा,
0: जो भैया जो है कृषक जो होते हैं उनके ही लेने आया है सहकारिता। इसमें जो है हम अपने स्वयं इच्छा से जो है इसके सदस्य बन सकते हैं।
1: अच्छा,
0: जहाँ में जो है जहाँ जरूरी ना है कि हम किसान हैं तो इसमें जो सदस्य बन सकते हैं।
1: अच्छा, और एक और चीज़ है दीपक भैया, जो हमारी सरकार है ना वो सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वो भी बहुत प्रयास कर रही है। सरकार हमारी सरकार सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए ना विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम संचालित कर रही है, डिजिटल तकनीक को बढ़ावा दे रही है।
0: हाँ देखो, ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता को जोड़ने के प्रयास करे जा रहे हैं।
1: जी भैया,
0: और इसमें जो है युवा और जो महिलाएं हैं ना
1: जी
0: वे तकनीकी रूप से जो है इसमें जुड़ रही हैं और समाज को जो है आगे बढ़ा रही हैं। इसी तरीके से जो है हमारा यह संदेश है कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था ना है बल्कि जीवन जीन को एक सकारात्मक कोण है।
1: जी भैया,
0: यदि हम सहयोग और विश्वास और सामूहिक प्रयास से भावना से कार्य करें तो हम अपने गांव हैं और समाज और देश को समृद्धि के ऊपर आत्मनिर्भर बना सकता है।
1: तो भैया हमारे किसान साथियों को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ।
0: बिल्कुल भैया।
1: और दीपा भैया, हम सब लोग खेती बाड़ी तो करते हैं,
0: हाँ,
1: लेकिन खेती बाड़ी के साथ साथ हम पशुपालन करते हैं।
0: हाँ देखो भैया, पशुपालन तो खेती बाड़ी के साथ है,
1: हाँ,
0: और अगर हमारो खेती बाड़ी सही है तो और पशुपालन दोनों सही है तो हाँ, हमारी कोई दिक्कत ना हो।
1: हाँ, क्योंकि भैया हम लोग जो होता ना, जब हमारा पशु बीमार ही जा या हमारे पशु उदास ही जा तो हम भैया बड़ा परेशान ही जाते हैं, क्योंकि हमारी जो आर्थिक भैया जो इनकम होती है वो भैया हमारी पशुओं पर ही टिकी होती ज़्यादातर, है ना।
0: देखो भैया, जो पशु होते हैं उनको दूध देने के लिए हम रखते हैं,
1: जी भैया,
0: और कभी कभार ऐसा होता है कुछ पशु जो हम दूध के लिए रखते हैं लेकिन वे गाभिन नहीं पाते।
1: हाँ भैया, तो जो भैया जो बहुत बड़ी समस्या है,
0: हाँ, तो बस है जो है हमारे आय में वो वृद्धि नहीं पाती है, और ना दूध दे पाते हैं और ना उनकी उनकी जो वृद्धि हो पाती है।
1: वृद्धि पाती। और बात है, जब भैया वे गाभिन न होंगे या उनको समस्या होगी तो भैया आर्थिक समस्या जो है हमारे सामने आ जाएगी। तो भैया इसी से संबंधित हम अपने किसान साथियों को सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता, जाको विषय है पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का महत्व। इस विषय पर जो जानकारी दे रहे हैं वो दे रहे हैं डॉक्टर ऋषिन्द्र वर्मा जी, और आपसे बातचीत कर जो जानकारी जुटा रहे हैं वो जुटा रहे हैं हमारे प्रवीण भैया जी। तो साथियों जो सुन लेते हैं भेंट वार्ता।
2: किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम के बीच हैं डॉक्टर ऋषिन्द्र वर्मा जी, जो कि पूर्व संयुक्त निदेशक हैं IBRI बरेली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। हमारे किसान भाई खेती बाड़ी के साथ साथ पशु भी पालते हैं
3: जी,
2: और पशुओं में आपने देखा होगा कि गर्भाधान की समस्या काफ़ी रहती है
3: जी जी,
2: और अगर हमारा पशु गर्भित नहीं होता है
3: जी,
2: तो काफ़ी जो हमारे किसान भाइयों का नुकसान हो जाता है, क्योंकि पशु आजकल काफ़ी महंगे हैं
3: जी जी।
2: तो जो पहले प्रथा चली आ रही थी प्राकृतिक गर्भाधान की
3: जी,
2: और अब जो है कृत्रिम गर्भाधान की बात भी चल रही है
3: जी,
2: तो डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों में क्या अंतर है और कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा।
3: बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही आवश्यक है हमारे पशुपालकों को जानने के लिए, ताकि कोई भ्रांति पैदा ना हो
2: जी,
3: कि जो हमारा प्राकृतिक विकल्प था उसमें समस्या ये आ गई है कि एक तो सांड अच्छे उन्नति ब्रीड के मिल नहीं पा रहे हैं, उनको रखना उनको पालना बहुत कठिन काम है
2: जी जी,
3: इसलिए समय का भी अभाव है। आप जानते हैं आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, तो पहले समय था तो कहीं मान लीजिए गांव में किसी कस्बे में कहीं ब्लॉक में सांड है तो अपना जानवर ले गए गाभिन कराने के लिए लौटा लाए
2: जी जी,
3: लेकिन इसका विकल्प जब 1939 से शुरू हुआ भारत में जिसे अपने लोग कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं
2: जी,
3: उससे ये आराम हुआ कि हम कहीं भी किसी भी जानवर को पशु को गाभिन करा सकते हैं। नंबर एक खर्चा कम है
2: जी,
3: नंबर दो सांड को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते हैं, नंबर तीन, नंबर चार जो सांड का वीर्य है कई बार सांड संक्रमित हो सकते हैं
2: जी जी,
3: तो वह बीमारियों का संचार भी मादा में हो सकता है और उसके बच्चे में हो सकता है
2: जी जी,
3: तो उससे भी हमारा बचाव होता है
2: जी।
3: और सबसे आवश्यक बिंदु यह है कि जो कृत्रिम गर्भाधान है उससे हम नस्ल के सुधार कर सकते हैं
2: जी जी,
3: सुधार के मतलब दूध का उत्पादन बढ़ सकता है
2: जी। देखिए डॉक्टर साहब, इस समय जो है हमारे अधिकतर पशुपालक भाई जो हैं वो सिर्फ दूध उत्पादन के लिए ही पशुपाल रहे हैं
3: जी,
2: और उनका मुख्य उद्देश्य भी यही रहता है कि हम अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन ले सकें
3: जी।
2: इसके लिए उनको जो है अच्छे नस्ल के जो सांड हैं उनसे अगर अपने पशुओं को गर्भित कराते हैं
3: जी,
2: तो उसके बाद में जो लवारा होता है वो अच्छी नस्ल का होता है
3: जी, जी।
2: और धीरे धीरे उनकी नस्ल जो है वो सुधरती जाती है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इसीलिए हमारे यहाँ पर जो है कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था चालू की गई है
3: जी, जी।
2: तो डॉक्टर साहब, क्या ये कृत्रिम गर्भाधान जो है ज्यादा अच्छा रहेगा उसके मुकाबले?
3: जी, ये माना जाता है कि 10-15%, जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि अपना भारतवर्ष जो है वो दूध के उत्पादन में नंबर एक है, तो इसी वजह से हुआ है क्योंकि जो उन्नतशील सांड है उनके जो वीर्य है उससे जो नस्ल पैदा होगी उससे जो दूध का उत्पादन होगा उसमें कई गुना बढ़ोतरी होगी
2: जी,
3: इसीलिए इसको हम अच्छा मानते हैं। जैसा कि अन्य बातें मैंने बताई वो अपनी जगह है ही है
2: जी जी,
3: लेकिन जैसा किसानों की आय से संबंधित बात है उसको पशु रखने में एक सफल किसान बनना है तो उसको अच्छा उत्पादन चाहिए
2: जी जी,
3: तो जो साधारण गाय हैं या साधारण सांड है जिनकी ब्रीड का कुछ अता पता नहीं है, तो उन्नतशील ब्रीड के जब सीमन हम अच्छी प्रयोगशाला से
1: जी,
3: अच्छे केंद्र से लेते हैं और कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं, तो निश्चित ही हमें उसका लाभ मिलेगा
1: जी। डॉक्टर साहब, वो अब बात ये आती है कि हमारे किसान भाई किस तरीके से कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं, कहाँ जाके जो है ये कार्य कर सकते हैं।
3: पूरे भारत देश में ऐसा माना जाता है करीब 70,000 से ज्यादा कृत्रिम गर्भाधान केंद्र हैं
1: जी,
3: क्योंकि अपने लोग उत्तर प्रदेश में प्रसार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ करीब 5,000 कृत्रिम गर्भाधान हैं। इसके बाद भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो प्रदेश में भी लागू की गई हैं, जैसे मैत्री योजना है, गोकुल मिशन है
1: जी,
3: डोर डिलीवरी मतलब दरवाजे पर जाकर किसानों के पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान की हम फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध करा दें, ये भी प्रयोजन चल रहा है
1: जी।
3: अब इसके साथ आ जाती है बात की कीमत क्या लगेगी, जो किसान भाई पशुपालक या कोई सामान्य व्यक्ति जानना चाहेगा भाई खर्चा क्या होगा
1: जी। जी
3: तो खर्चा तो ये है कि जैसा हमारा वीर्य होगा उसकी गुणवत्ता पर निर्भर है, अच्छी गुणवत्ता वाला अगर हम वीर्य लेंगे तो महंगा मिलेगा, स्ट्रा बोलते हैं जिससे हम इंसिमिनेशन करते हैं
1: जी,
3: गर्भाधान कराते हैं, तो वो जो है करीब 25-50 रुपए से लेके 100 रुपए 200 रुपए, यानी एक फिक्स्ड इसकी स्थिर कीमत नहीं है
1: जी।
3: अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग गुणवत्ता के वीर्य मिलते हैं
1: जी,
3: जिनका इस्तेमाल किया जाता है, और लेकिन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत जगह फ्री कृत्रिम गर्भाधान मुहैया करा रही है
1: जी। डॉक्टर साहब, यहीं पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि प्राकृतिक गर्भाधान अगर हम कराते हैं और अगर सांड का जो वीर्य है वो अगर संक्रमित है तो क्या उससे हमारे पशु को भी कोई नुकसान होता है?
3: जी जी, फिर वो मादा जो है उससे संक्रमण ले लेगी, संचार करेगी, आगे बढ़ेगा रोग
1: जी। तो क्या कृत्रिम गर्भाधान अगर कराते हैं तो इस तरह की कोई समस्या रहने की संभावना कुछ रहती है या नहीं?
3: नहीं, इसकी इसलिए समस्या नहीं रहती है कि इसकी टेस्टिंग के बाद ही ये सीमन को जारी किया जाता है, प्रयोगशाला में इसकी जाँच की जाती है, इसके शुक्राणुओं की जाँच की जाती है
1: जी,
3: कम से कम 50,000 शुक्राणु होने चाहिए, और जो शुक्राणु हैं उनके चलने की गति बहुत आवश्यक है, 70% से अधिक होना चाहिए
1: जी,
3: और उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल यानी ये देखने के लिए कोई संक्रमण तो नहीं है
1: जी,
3: तो उसकी जांच करते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि स्टैंडर्ड हमें सीमन मिल रहा है, इसलिए संचारी रोग होने का प्रश्न नहीं है बामुकाबले प्राकृतिक गर्भाधान।
1: डॉक्टर साहब, यहीं पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुनने में यह भी आता है कि अगर हम अब बछिया अगर चाहते हैं तो सिर्फ ऐसे भी कुछ गर्भाधान का सीमन आ गया है कि उससे अधिकतर बछिया ही पैदा होंगी?
3: जी बिल्कुल, आपने ठीक पूछा
1: जी,
3: लेकिन उसे कहते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमन
1: जी,
3: कि हम बछिया चाहते हैं मेल मतलब मादा चाहते हैं कि फीमेल चाहते हैं
1: जी,
3: नर चाहते हैं, उसका सीमन काफी महंगा है। अभी किसान और ग्राउंड लेवल पे उतना ज्यादा उसे अपनाया नहीं गया, मेरी ये व्यक्तिगत राय है
1: जी जी,
3: हालांकि सरकार का मुद्दों में वो भी मुद्दा शामिल है कि आप सेक्स सॉर्टेड सीमन का इस्तेमाल करें
1: जी,
3: ताकि अपने मनचाही संतान को उस पशु से पा सके
1: जी, क्योंकि अब अगर कोई चाहे हम बछड़े की बात करें चाहे हम कटरे की बात करें
3: जी,
1: क्योंकि उसका उपयोग आगे चलकर हमारी खेती बाड़ी में नहीं होता है
3: जी,
1: इसलिए हमारे किसान भाइयों की भी इच्छा यही रहती है कि अगर बछिया हो या कटिया हो तो आगे चलकर भैंस और गाय बन जाएगी
3: जी, स्वाभाविक।
1: तो ये विधि भी काफी कारगर अगर हमारे किसान भाइयों की साबित हो रही है
3: जी जी।
1: अच्छा, बात ये आती है डॉक्टर साहब कि गर्भाधान किस समय करवाएं, इस बारे में हमारे किसान भाइयों के मन में भ्रम रहता है। कुछ गाय ऐसे या भैंस ऐसी भी होती हैं जो साइलेंट यानी कि शांत रहती हैं, पता नहीं चल पाता है
3: जी,
1: तो
3: जी,
1: इस बारे में भी थोड़ा आप प्रकाश डालिए
3: जी जी। देखिए, आमतौर पे मैं ये समझता हूँ अपने अनुभव के आधार पे कि जो पशुपालक है
1: जी,
3: चूंकि वो 24 घंटे अपने पशु के साथ देखता है, उसको उसके साथ रहता है, वो उसकी गाय की हीट को पहचान सकता है कि कब गर्म हो गई
1: जी।
3: यहाँ पर सांड का महत्व है कि वो इस कार्य को स्वयं करता है, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान में हम करते हैं
1: जी,
3: हम ये जजमेंट लेते हैं कि अब गाय गर्म हो गई है और कृत्रिम गर्भाधान हम कराएं
1: जी,
3: और उसके लिए लक्षण देखते हैं कि या तो म्यूकस गिरे, चीखने लगे, कूदने फांदने लगे
1: जी,
3: और या चढ़ने लगे दूसरे जानवरों पे, गाय के बारे में बात कर रहा हूँ
1: जी जी,
3: तो ये मान लिया जाता है कि ये गाय हीट में 12 से 18 घंटे में इसका कृत्रिम गर्भाधान करवा देना चाहिए
1: जी।
3: जैसा आपने अभी कहा साइलेंट शांत
1: जी,
3: ये भैंस में बहुत मुश्किल काम है
1: जी,
3: भैंस को माना जाता है कि इसमें शांत हीट होती है जिसे पहचानना मुश्किल है, और शाम से रात और सवेरे तक के लिए ज्यादा हीट के माना जाता है कि आती है भैंस में, और वो शांत रहती है, लेकिन उसमें भी यही है कि म्यूकस आना है और लेकिन इसी वजह से थोड़ी सी सफलता का जो रेट है उसमें प्रभाव पड़ता है।
2: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान भाई कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं और तो उसमें जो है सफलता जो है गर्भाधान की कितनी परसेंट है, और अगर हमारे किसान भाई प्राकृतिक विधि से गर्भाधान कराते हैं तो उसका प्रतिशत जो है कितना रहता है?
3: देखिए, इन दोनों का जो आंकड़ा है, प्राकृतिक वाले का आंकड़ा तो मिलेगा नहीं क्योंकि अलग अलग जगह प्राकृतिक हो रहा है, असंगठित है, कोई सूचना नहीं है, कोई उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है।
2: जी जी।
3: लेकिन भारत सरकार के अनुसार या अपने प्रदेश सरकार के अनुसार भी करीब 32-35% सफलता मानी जाती है कृत्रिम गर्भाधान में।
2: जी, तो हमारे किसान भाई अगर कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो काफी अच्छा रहता है और ज्यादा लाभकर है, और अगर वो बछड़ा या बछिया चाहते हैं तो इसका भी निर्धारण हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अंत में हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करते हैं, कभी कभी जो हमारे पशु है वो गर्भाधान ग्रहण नहीं कर पाता है,
3: आखिर
2: उसकी क्या वजह है, उसका जो है वो रोकथाम किस तरीके से करें जिससे कि उनका जो है गर्भधारण हो जाए?
3: ये एक बहुत मुख्य प्रश्न है
2: जी,
3: और बहुत ही किसान भाई काफी विचलित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। मैंने खुद फील्ड में देखा है कि भाई गाभिन नहीं हो रही है, दूसरी बार भी कराई, क्योंकि अगर 20 से 22 दिन तक दोबारा गर्भ नहीं हुई तो माना जाएगा गाभिन है
2: जी,
3: अगर नहीं हुई तो माना जाएगा नहीं गाभिन है
2: जी।
3: तो इसके बच्चे दाने की जांच है, या ये भी कहा गया है कि कुछ विटामिन मिनरल की कमियां हैं
2: जी,
3: उनकी वजह से ये गाभिन नहीं हो पा रही है। इसका निराकरण तो केवल जांच पशु चिकित्सा विधिक या पशु चिकित्सा डॉक्टर जो हैं वो देखने के बाद ही कुछ ना कुछ इसके बारे में इलाज करके उसको दुरुस्त करने की प्रयास कर सकते हैं
2: जी। डॉक्टर साहब, वो कितनी बार कराने के बाद में डॉक्टर साहब से संपर्क किया जाए कि हमारा पशु गाभिन नहीं हो पा रहा है?
3: वो तो ये है कि अगर एक बार में भी नहीं हुआ तो किसान भाई पशुपालक मैं ही हूँगा तो मैं कहूँगा भाई नहीं हुई, चलो भाई, या इंतजार करने का धैर्य है तो मैं एक दो बार और प्रयास करूंगा।
2: जी जी।
3: जब उसके बाद भी नहीं हो रही है तब मैं निष्कर्ष पे आना पड़ेगा मुझे कि भाई ये गाभिन नहीं हो रही है।
2: जी जी।
3: तब मैं जोखिम उठाऊंगा कि मैं अस्पताल जाऊं या किसी संस्था में जाऊं और वहां राय लूं जाके कि भाई ये गाभिन क्यों नहीं हो रही है।
2: डॉक्टर साहब, क्या पशु को संतुलित आहार खिलाने पर ये जो समस्या है उसका समाधान काफी हद तक हो जाता है?
3: जी देखिए, संतुलित आहार तो अपने स्थान पर महत्व रखता ही है
2: जी,
3: चाहे बीमारी से संबंधित हो, चाहे स्वस्थ शरीर के लिए हो, चाहे उत्पादन के लिए हो, चाहे गाभिन होने के लिए हो। तो ये तो आप सही कह रहे हैं कि संतुलित आहार देने का हमें प्रयास करना चाहिए
2: जी,
3: जहां तक संभव है हमें देना चाहिए, ताकि पशु स्वस्थ रहेगा तो गाभिन गर्भाधान होने के बाद बच्चा जब होगा तो उसके लिए उसका शरीर स्वस्थ होना चाहिए
2: जी।
3: तो इसलिए ये भी अपनी जगह एक अहम रोल अदा करता है संतुलित आहार
2: जी। डॉक्टर साहब, यहीं पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हमारे पशुपालक भाई कृत्रिम गर्भाधान करा लेते हैं
3: जी,
2: तो क्या उसके बाद में भी कोई सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है?
3: बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम उसको 20 दिन तक को इधर से उधर या कोई ऐसे कार्य में संलिप्त ना करें कि उसको स्ट्रेस ना मिल पाए
2: जी,
3: कोई दबाव ना पैदा हो उसके ऊपर। साधारण तौर पे सामान्य जीवन में रखें उसको, ताकि उसके स्ट्रेस से कोई समस्या पैदा ना हो जाए, ये करना चाहिए
2: जी। डॉक्टर साहब, आप अंत में हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे कि उनका जो कृत्रिम गर्भाधान है वो ज्यादा सफल हो सके?
3: समय पर हीट को पहचानना ही प्रमुख लक्षण है। यदि समय पर हमने हीट को पहचान लिया और समय से हमने कृत्रिम गर्भाधान करा दिया, और यदि प्राकृतिक भी मौजूद है सांड उससे करा दिया, तो संभावना प्रबल है कि वो गाभिन हो जाएगा
2: जी
3: पशु।
2: डॉक्टर साहब, आप हमारे आकाशवाणी केंद्र आए और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
0: अभी हमारे किसान साथियों ने सुनी भेंट वार्ता, जिसको विषय हो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का महत्व। जानकारी दे रहे डॉक्टर ऋषिचंद वर्मा, और उनसे जानकारी ले रहे हमारे प्रवीण कुमार भैया। और हमें उम्मीद है हमारे किसान साथी भेंट वार्ता सुनकर उसको लाभ उठाएंगे। और अब पंकज भैया, अब समय हो चलो हमारे किसान साथियों को मनोरंजन को।
4: तो मनोरंजन में हम अपने किसान साथी को सुनवा रहे हैं एक लोकगीत, गोरी सवर सवर रख पाओ, जिसको अपनी मधुर आवाज़ दी है लालमन चित्रकार जी ने। तो साथियों, अब सुनवाते हैं आपको जो लोकगीत।

0: एक अभी हमारे किसान साथियों ने सुना लोकगीत। हमें उम्मीद है कि लोकगीत सुनकर हमारे किसान साथी उत्साहित हो गए होंगे। और अब पंकज भैया,
1: हाँ भैया,
0: अब कार्यक्रम में आगे क्षेत्र संकलित में कहा है।
1: हाँ साथियों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में रोज़ाना हमारे जो भैया जी हैं वो किसी न किसी गांव में जाते हैं। तो ऐसे ही आज के क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में हमारे दीपक भैया गए एक गांव, जिस गांव को नाम है मुड़िया भीकमपुर, जो ब्लॉक पूरनपुर में पड़ता है और जिला पीलीभीत है। वहाँ हमारे भैया जी ने एक युवा कृषक से बातचीत करी जिनका नाम है श्री रविंद्र कुमार। तो हमारे दीपक भैया ने उन भैया से क्या क्या बातचीत करी, ये बातचीत आपको हम सुनवाते हैं।
2: हाँ भैया, आपका परिचय?
3: मेरा नाम रविंद्र कुमार है
2: अच्छा,
3: और मेरा गांव मुड़िया भीकमपुर।
2: रविंद्र जी, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है?
3: पढ़ाई मैंने सर बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है आगरा यूनिवर्सिटी से।
2: अच्छा, पढ़ाई तो आपने अच्छी खासी की, बीएससी कर रखी है। तो इस समय आप क्या कर रहे हैं?
3: इस समय खेती भी देख रहे हैं, बाकी अपना जॉब भी कर रहे हैं।
2: तो बीएससी एग्रीकल्चर से तो काफ़ी खेती बाड़ी में, जैसे कृषि में जो है, काफ़ी रोजगार और नौकरियां मिलने के चांस रहते हैं।
3: हाँ,
2: खेती बाड़ी में जो है इस समय आपके यहाँ पर मुख्यतः रूप से कौन कौन सी फसलें होती हैं?
3: हमारे यहाँ पर मुख्य फसल सर रहती है गन्ना,
2: अच्छा
3: गेहूं और
2: अच्छा
3: धान खरीफ सीजन में,
2: अच्छा
3: और अपना सरसों भी रहती है रबी सीजन में, गेहूं और सरसों दोनों। धान,
2: इस समय जो है खरीफ के सीजन में, इस समय धान की फसल है।
3: हाँ धान
2: और कोई फसल लगती है खरीफ में?
3: खरीफ में और कोई नहीं, धान लगती है, बाकी अपना पूरे सीजन के लिए वो गन्ना रहता है, बाकी धान ही रहता है।
2: तो इस समय आपके यहाँ पर धान की फसल आपने लगा दी।
3: हाँ बिल्कुल, लग गया।
2: कौन से धान का आपने चयन किया था आपकी?
3: चौक सवाल है हमारे पास, ऐसी
2: अच्छा,
3: वैरायटी है मोटा धान होता है।
2: किस तरीके से आपने लगाया धान, क्या क्या सावधानियां
3: हमने
2: रखी?
3: सावधानियों हमने वैसे पहले पौध डाली थी उस टाइम में, फिर अपना खेत का अपना सिंचाई करके बढ़िया से उसकी सिंचाई करती थी। एक महीने पहले पौध डालते समय फिर उसमें जो अपना खरपतवार वगैरह या कीटनाशक जो कीट कीड़े वगैरह थे वो भी सब सूख गए मर गए उसमें, फिर अपना कलेवा कर दिया अभी, और अपना जो खाद डाली थी देसी खाद वगैरह डाला था हमने, हाँ उसके कलेवा कर दिया, पानी लगा के धान लगवा दिया। अभी अभी
2: तो
3: 7 दिन हुए धान लगे हुए।
2: अच्छा, कितने दिन की आपने जो धान की नर्सरी दी, कितने दिन के बाद उसमें रोपाई करी, धान की नर्सरी कितने दिनों में तैयार हो गई आपकी?
3: 25 दिन का लोग, 25-26 दिन का लोगों का कर देते हैं।
2: तो आपने
3: हाँ
2: जो धान का चयन किया है ये लगभग हाइब्रिड वैरायटी, ये कितने दिन में पक जाती है लगभग?
3: ये हमारा 110 दिन का बोला उन्होंने, तो बोल
2: तो इस
3: रहा
2: समय
3: है 100 दिन
2: आपने,
3: में हो जाएगा, 100 दिन में हो जाएगा, मगर 110 दिन मान के चल रहे हैं।
2: तो आपकी धान की जो फसल है आपको 6-7 दिन हो गए लगाए हुए, उसमें खरपतवार के लिए आपने दवा वगैरह लगा दी?
3: नहीं अभी तो नहीं लगाई, नराई कराते हैं हम।
2: अच्छा, नराई होती है।
3: हाँ नराई कराते हैं हाथ से, अपना
2: अच्छा
3: पानी वाला खेत है, पानी भरा भी तो वहाँ को दवाई लगाने का कोई होता ही नहीं, जो थोड़ा बहुत
2: अच्छा
3: घास होगा तो वो अपना हाथ से निकलवा देते हैं।
2: और इस जैसे खेती के साथ साथ और आप, और जैसे आपके यहाँ पर पशुपालन भी होता होगा, जैसे पशु पाले जाते
3: पशुपालन है
2: होंगे?
3: करते हैं, हाँ बिल्कुल सर है करते, पशुपालन लोग रहते हैं, उनके 2-3 बच्चे भी हैं।
2: अच्छा, तो
3: हाँ
2: दूध दे रही है इस समय।
3: हाँ दूध दे रहे हैं।
2: तो पशुपालन से और खेती से क्या क्या फायदा रहते हैं दोनों में?
3: दोनों के साथ में थोड़ा सा ये होता है, जो हमारा फसल अभी धान का पुआल हो जाएगा वो उधर अपना यूज हो जाता है, और उसमें जो मतलब गोबर खाद वगैरह बनती है उससे हमें लाभ मिल जाता है, बाकी एक्स्ट्रा हमारा इनकम हो जाती है पशुओं के द्वारा। हाँ जो लाभ मिलता है हमारे लिए पशुओं के द्वारा, उन्हें लाभ मिल जाता है थोड़ा।
2: खेती बाड़ी और जो पशुपालन है
3: हाँ
2: एक दूसरे से
3: हाँ
2: सहयोग
3: हाँ
2: में चलते
3: दूसरे
2: रहते हैं।
3: सहयोग में चलते रहते हैं जैसे। बिल्कुल
2: अगर हम पशुपालन नहीं करेंगे तो हमारी खेती भी अधूरी मानी जाएगी, उसमें गोबर की खाद हम कहाँ से लाएं?
3: बिल्कुल, हाँ खाद वगैरह कहाँ से लाएंगे, तो कैसे यूज कर
2: हाँ,
3: पाएंगे कहाँ।
2: दूध भी हमें मिलता रहता है।
3: हाँ
2: और इसके अलावा पशुपालन में के अलावा और धान की फसल के अलावा आगे कौन सी फसल लगाएंगे?
3: धान के साथ धान कटाई के बाद हम फिर सरसों की बुआई करेंगे, और कुछ
2: अच्छा
3: कुछ खेत में अपना हम मतलब अगला गेहूं के लिए छोड़ेंगे, मतलब क्रॉप रोटेशन बना के रखते हैं ना अपना सर।
2: अच्छा,
3: हाँ फसल चक्र बना के रखते हैं, थोड़ा सा उससे लाभ मिलता है हमें। हाँ
2: तो जैसे जो फसल
3: जो
2: चक्र की आपने बात करी, इसमें फसल चक्र से हमारे किसान साथियों को क्या क्या लाभ होते हैं, फसल चक्र क्यों जरूरी है, ये बताइए आप।
3: ये सर बहुत जरूरी है, इससे हमारी फसल मतलब से धान की फसल में जो होने वाले खरपतवार है ना सर, अब हम जो अगली बार जब गन्ना कर देंगे उस खेत में धान के बाद, तो उसमें धान में होने वाले खरपतवार दो नहीं हो पाएंगे फिर।
2: वो
3: हाँ
2: भी
3: तो
2: है,
3: जो
2: और जो
3: गन्ने
2: हमारी,
3: और जो गन्ने हाँ
2: और जो पोषक तत्व होते हैं गहरी सतह के और जो
3: तो
2: ऊपरी सतह के, वो
3: वो हाँ
2: भी।
3: वो बने रहते हैं, बिल्कुल बने रहते हैं। कभी हम पानी चाहने वाली फसल लगाते हैं, फिर कम पानी चाहने वाली, और
2: अच्छा
3: गहरी
2: अच्छा
3: जुताई के बाद फिर कम गहरी जुताई वाली, ऐसे करके अपना रोटेशन अपनाते रहते हैं तो अच्छा रहता है। से हमारे खरपतवार कम होते हैं।
2: अच्छा, कम उगते हैं और जो हमारी जो मिट्टी है वो भी उपजाऊ बनी रहती
3: है। उपजाऊ बनी रहती
2: है। इस समय आपने जो धान की फसल लगाई है उसमें अब जैसे खाद के रूप में आप किस तरीके से उसकी देखभाल करेंगे?
3: सर ऐसा है जैसे कि कभी कभी क्या होता है कम्बाइन से हम करवा देते तो हरी खाद के रूप में हम उसकी जुताई कर देते हैं, बाद में उसका जो बचता है ना पुआल
2: जी जी जी
3: उसको जुताई कर देते हैं। कुछ अपना हम खाने के लिए अपने पशुओं के लिए मतलब कटाई यहाँ से करवा देते हैं पुआल के रूप में।
2: अच्छा, तो जैसे इस समय जो है धान की फसल आपकी लग गई उसमें खाद किस तरीके से क्या क्या चीजों की पोषक तत्वों की कमी ना हो और पानी का देख रेख
3: आप क्या करते हैं? नाइट्रोजन अपना नाइट्रोजन यूरिया करो यूरिया डालते हैं, पोटाश वगैरह जिंक वगैरह है अपना ये सब डालते हैं। तो कल अभी दवाई कर दी थी, एक डाली थी, अभी डालेंगे चंद दिन के बाद डाल देंगे, बारिश वगैरह हो जाए तो
2: अच्छा
3: यूरिया और अपना जिंक वगैरह लगाएंगे।
2: और जैसे धान की फसल में कीट ज्यादा लगते हैं उसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं?
3: उसकी रोकथाम के लिए सर हम ये अपने दवाइयाँ वगैरह इसका प्रयोग करते हैं, मार्केट खेत में दवाइयों का प्रयोग करते हैं। कीटनाशक वैसे वही पूरी वगैरह लगती है, जैसे पानी का क्षेत्र है रोग तो कमी लगता है हमारे यहाँ पर, पानी भरा रहता है ना सर।
2: अच्छा अच्छा,
3: बाकी जो थोड़ा बाद में वो नहीं सर आता है एक बाली वाला लास्ट रोग आता है पकते पकते टाइम बाली सूखने लगती है, हाँ तो कोई रोग ज्यादा आता है यहाँ पर है।
2: हाँ तो अगर उसकी समय रहते हुए आप उसकी रोकथाम कर ले
3: उसकी रोकथाम के लिए दवाई लगाते हैं सर, बाकी तो पानी भरा रहता है तो उस टाइम तो कोई रोग लगता नहीं है, भाग भी नहीं हो रही है, पानी भर जाएगा बारिश हो जाएगी भाग भी नहीं होती ज्यादा।
2: तो आप खेती बाड़ी और आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इन्हें दोनों तरीके से किस तरीके से खेती बाड़ी और अपनी जॉब के लिए कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से आप देखभाल?
3: सर जैसे कि हमारा जॉब भी हमारा पास ही में घर के पास ही कर रहे हैं, दूर नहीं है।
2: अच्छा,
3: तो अपना सुबह शाम जाना हो जाता है, बाकी संडे को छुट्टी रहती है और कभी अपना काम अगर पड़ता है इम्पोर्टेंट तो हम छुट्टी भी ले लेते हैं कंपनी की तरफ से।
2: अच्छा,
3: जैसे धान की रोपाई होनी चाहिए छुट्टी लेती हूँ उस दिन।
2: अच्छा, जो जैसे हमारी खेती में जो जरूरी काम है उसके लिए छुट्टी लेकर
3: उस टाइम, बाकी बाकी हमारे एक भाई और भी हैं वो भी हैं पर हम काफी रहते हैं हम दोनों लोग अपना
2: और उसके साथ जॉब भी कर रहे हैं। और हमारे जो किसान साथी आपकी बात को जैसे सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, वो खेती बाड़ी किस तौर तरीके से?
3: खेती बाड़ी सर थोड़ा उसमें समय और अपना उसमें ध्यान समय से ही खेती करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लेट कोई चीज करते हैं तो खेती सही नहीं हो पाएगी, समय से ही खेती करनी चाहिए। कि अगर हम मान लो लेट किसी बुआई खेती बुआई को लेट कर रहे हैं या खेत लेट कर रहे हैं जुताई कर रहे हैं लेट तो उससे खेत खराब हो जाता है हमारा और बीज भी सही से नहीं उगता है और लेट करने से कोई फायदा भी नहीं होता।
2: अच्छा, पैदावार भी हमें कम मिलती है,
3: पड़न नहीं हो पाता।
2: क्या आपने रविंद्र जी हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। और दीपक भैया,
0: हाँ भैया,
1: देखो इस समय बरसात को समय चल रहा है।
0: हाँ देखो भैया, बरसात के समय में हमें जो पेड़ होता है
1: जी भैया,
0: भैया हमारी बागवानी होती है
1: जी,
0: उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना।
1: हाँ भैया, क्योंकि भैया वो भी हमारे किसान साथियों को बहुत लाभ पहुंचाती है।
0: देखो उसकी देखभाल अगर हम करेंगे समय से, देखो उसकी जैसे जल निकासी है
1: जी
0: और उसमें कीट वगैरह है, बरसात में बहुत सी चीज इनकी आवश्यकता उनमें पड़ती है, उन्हें समय समय पर देखभाल अवश्य करें। तो भैया आज कृषि संकेत में जो है आज हमारा विषय है नींबू वर्गीय फसलों की देखभाल।
1: तो दीपक भैया,
0: हाँ भैया,
1: जा मैं हम क्या कह रहे हैं भैया?
0: देखो नींबू वर्गीय जो फसलें होती हैं जैसे मौसमी है, संतरा है और जैसे इसकी जो है आय को बहुत अच्छे स्रोत है
1: जी भैया।
0: और इस फसल की देखभाल अगर हम बरसात के मौसम में कर लें तो इससे हम अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी भैया, क्योंकि भैया बरसात के समय में जो हमारे बागवानी जो फसलें होती हैं, बाकी हम जो पेड़ होता है हमारे पेड़ों के आसपास जो देख लें कि वहाँ पर जो जल निकासी की व्यवस्था सही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर जल निकासी की व्यवस्था ठीक ना होगी ना तो जो जल भर जाए वो पानी तो उसमें जड़ों में सड़न की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
0: बिल्कुल भैया, देखो नींबू वर्गीय जो फसलें होती हैं अगर जल भरा हुएगा तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है, जिससे जो हमारा पौधा सूख जाता है और सूखने के बाद में हमें उत्पादन न मिल पाता है
1: जी भैया।
0: उसके आसपास जो है खतपतवार न होने और उसकी जो जड़ें होती हैं उसमें जो है हमारे वायु को संचार बने रहे
1: जी भैया। और देखो पौधों को संतुलित मात्रा में ना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे जिंक है, आयरन है, बोरान की कमी होने पर पौधों की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। तो इस समय बाकी लोग क्या करें, जो किसानों हमारे किसान साथी हैं वे मिट्टी को परीक्षण के आधार पर अपने पोषक तत्वों को प्रयोग जरूर करें।
0: एक बात बिल्कुल भैया आपने अच्छी कही, और देखो इस समय जो है हम गोबर की सड़ी खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो हमारी जो पौधा की जो वृद्धि होती है ना, और उत्पादन में हमारी वृद्धि हो जाती है
1: जी भैया।
0: और देखो गोबर की खाद में जो सब सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं
1: जी भैया। और एक चीज और भैया, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि यदि हमारे बागवानी में खरपतवार ही जाएंगे और हमने बागो समय रहते नियंत्रण ना करो भैया, तो वे पोषक तत्वों को नमी को बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंदर सोख लेते हैं, तो वे पोषक तत्व को जान न देते हैं।
0: देखो जो हम खाद या लगा रहे हैं बाकी और वहाँ खरपतवार हैं, तो जो हमारे पौधा को ना मिल पाते हैं जो उसमें खरपतवार होते हैं वे उसको ले लेते हैं। और देखो इस समय भैया बरसात को टाइम चल रहा हुआ है, तो बरसात के समय में जो है उसकी नराई गुड़ाई तो बहुत जरूरी है, और पौधे के जो नीचे होते हैं ना उसकी जो सूखी घास है उसको मल्चिंग भी कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं, जिससे जो है खरपतवार की वृद्धि भैया कम हो जाती है।
1: और भैया वर्षा ऋतु में कीट और रोगों को प्रकोप भी जो बढ़ जाता है दीपक भैया।
0: हाँ, ऐसे में जो किसान साथी हैं हमारे बाग हैं उनकी जो है नियमित रूप से देखभाल करें, और अगर उसमें कोई बीमारी लग रही है या कोई समस्या है तो बाको अपने नज़दीक में कोई जो कृषि केंद्र है वहाँ पर जाकर सलाह ले सकते हैं।
1: और अगर बागों में जैसे सूखी या कोई रोगग्रस्त या आपस में उलझी कोई शाखा अगर दिखाए तो बाकी कटाई छटाई भी कर दें, उससे होता क्या है कि पौधों में पर्याप्त तो प्रकाश भी मिल जाता है और वायु को संचार भी सही बना रहता है।
0: भैया इस समय जो है माऊ और जैसे पत्ती झुलसा रोग लगता है
1: जी भैया,
0: इस रोग को जो है अगर समय से नियंत्रण कर ले जाए और लक्षण दिखाई दे तो हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेकर बाकी दवाई को इस्तेमाल करते हैं भैया
1: जी भैया। और इन सब चीज़ों को हमारे किसान साथी ध्यान रखें, तभी हमारे किसान साथी नींबू वर्ग की जो फसलें हैं वहाँ से सही फायदा ले सकते हैं।
0: एक भैया और होती है बरसात के टाइम में जैसे कि बाकी छटाई ना कर पाते हैं, जिससे पौधे जो है हमारी शाखाएं इधर उधर को उलझे रहती हैं और फल जो है अच्छे ना होते हैं, तो किसान साथी इनसे कहेंगे उनकी साफ और धारदार औजार से उसकी जो है छटाई इस समय जरूर करें।
1: जरूर करें भैया, तो इन बातों को हमारे किसान साथी ध्यान रखें। और दीपा भैया,
0: हाँ भैया,
1: अब देखो समय ज़्यादा ना रहो जो हमने किसान साथियों से बातचीत करें, तो साथियों हमारे जो कल को जो कार्यक्रम कुछ विवरण है वो इस प्रकार है। कल जो हमारी चर्चा को विषय रहा है रासायनों के प्रयोग में रखें सावधानी, जो हमारी चर्चा का विषय रहा है, और जो भेंटवार्ता है वो गेंदा गुलाब और ग्लैडियोलस की खेती कैसे करें, और जब इस सब पर जो जानकारी देंगे वो देंगे डॉक्टर शिवशंकर वर्मा जी, और उनसे जो बातचीत करेंगे वो करेंगे हमारे भाई जसवेंद्र भैया। और लोकगीत काहे गोदी में लाल ये आपको सुनवाया जाएगा कल। कृषि संकेत में धान की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व ये जानकारी दी जाएगी। क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आपको सुनवाया जाएगा। और दीप भैया अब समय बिल्कुल इजाज़त ना दे रहे हो कि हम अपने किसान साथियों से आप बातचीत करें, तो चलते चलते क्यों ना हम कल के मौसम की जानकारी अपने किसान साथियों को दे दें भैया।
0: बिल्कुल भैया, देखो मौसम कोई समय हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे हैं कि बरसात कब है और बापई हमारे हैं, तो भैया कल अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और आर्द्रता की बात करें तो 80%, और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे
1: उम्मीद है भैया। तो आज की जानकारी यहीं तक, कल फिर हम एक नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने भैया पंकज

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। आज का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे थे पंकज सक्सेना और दीपक कुमार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे विक्रांत चौधरी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता मंच कार्यक्रम में आइए सुनते हैं श्रोताओं, स्टूडियो में आमंत्रित श्रोता श्री नवाबुद्दीन जी से असीम सक्सेना की भेंट वार्ता।
1: कार्यक्रम श्रोता मंच के सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार स्वीकार कीजिए असीम की ओर से। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हमारे बहुत ही पुराने, बहुत ही सम्मानित, जागरूक श्रोता नवाबुद्दीन साहब। रामपुर से आपका ताल्लुक रहा है और आकाशवाणी रामपुर से दिल का जुड़ाव रहा है, तभी जो भी चिट्ठियां आपकी आती हैं वो दिल की कलम से लिखी हुई होती हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और श्रोताओं के इस कार्यक्रम में श्रोताओं से बात करना, उनके बीच आना, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त?
2: सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और कि आपने जो है मौका दिया कि एक बार फिर जो है लिसनर्स से जो है रूबरू होने का मौका मिला। और रूबरू होने के लिए तो बार बार दिल मचलता है कि आपके बीच आया जाए और लिसनर से बात करी जाए। एक ये ऐसी, जिसे कहना चाहिए कि प्यास है कि कभी बुझती ही नहीं है।
1: ये प्यास कब लगी थी आपको?
2: ये दौर तो मेरा 1994 से शुरू हुआ, जब राजेश्वरी जी और आप युवाणी प्रोग्राम किया करते थे। उस वक़्त मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन दौर बदला, आगे आगे जैसे चलते रहे। और फिर 2001 में जो है ये फिर जुनून जो है दिल से जो है दिमाग पे चढ़ा और फिर आप लोगों से रूबरू भी होने का मौका मिला, खत भी बहुत सारे लिखे। सबसे ज़्यादा जहन में जो है हेलो रामपुर आया करता था। अच्छा। और वो हेलो रामपुर, उस वक़्त का दौर ऐसा था कि लाइट की कटौती बहुत हुआ करती थी, और जब लाइट की कटौती हुआ करती थी तो रात के वक्त जब वो प्रोग्राम आया करता था तो वो एक, जिसे कहना चाहिए ना कि पूरे में गूंजता था। इधर से भी आवाज़ आ रही है, घर से, किसी दूसरे घर से भी आ रही है, तो बड़ा अच्छा महसूस होता था। सुधांशु नंदन जी उसे करा करते थे उस वक़्त। और जो है ये जो दिल चाहता था कि ऐसा है कि इस प्रोग्राम से जुड़ा जाए, लेकिन उसमें उस वक़्त भी एक शामिल होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक़्त तो और मसला ये था कि हर जगह फ़ोन नहीं हुआ करते थे।
1: जी, जी, जी।
2: तो हम भी जब फ़ोन करने के लिए जाया करते थे तो आधा घंटे किसी पीसीओ की तलाशते थे, कोई पीसीओ खाली मिल जाए।
1: मोबाइल का दौर नहीं था और पीसीओ के लिए लंबी लाइन भी लगानी पड़ती थी, इंतज़ार भी लंबा होता था,
2: बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। पीसीओ पे जाया जाता था और पीसीओ से जो है कोई खाली पीसीओ तलाशा जाता था, फिर जाके कॉल लगती थी। और बाद वाले टाइम तो ऐसा हुआ करता था कि कॉल लग गई, आवाज़ में प्रॉब्लम हुई तो पैसे चढ़ जाया करते थे। तो वो दौर का भी अपना अलग मज़ा है। देखिए, एक चीज़ यह है कि हम सबसे पहले बात तो ये कहेंगे कि हम आकाशवाणी रामपुर के ही सिर्फ जो है संपर्क में रहे शुरू से और आज तक। और नेटवर्क जो है इस वक्त ऐप का दौर है, चाहो तो किसी को भी सुन सकते हो, लेकिन जो है जो मज़ा, जो चाशनी जिसे कहना चाहिए, वो इस स्टेशन से है, वो किसी में नहीं है। तो इसलिए जैसे जब और जैसे मौका मिलता है फौरन कोई ना कोई प्रोग्राम सुन लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल के करीब रहा वो दिल ढूंढता ही रहा प्रोग्राम, या आपके सामने नहीं बल्कि ये तो एक यही वजह है कि पहले दिन से जो मैं जुड़ा तो वो आज तक जुड़ा हुआ ही हूँ। हम तो ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है श्रोताओं का नहीं बल्कि दिल वालों का प्रोग्राम है।
1: क्या बात है,
2: दिल वालों का प्रोग्राम है, जिसके दिल में जो ऐसी चाहत वो उस तरीके से लिखे तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, एक चीज़ का और यहाँ पर ज़रा सा मैं ज़िक्र करूँगा कि पहले तो एक ऐसा वक्त होता था कि हमने इधर दिल ढूंढा है सुना, जब वीकली आया करता था, इधर दिल ढूंढा है सुना और उधर हम खत लिखने चले गए, और वो रात को 2 बज गए, 1 बज गया, लिख रहेंगे, फिर उसको फेयर करा। तो वो रूटीन मेरा आज भी है कि जब भी जैसे भी मौका मिलता है बाजा बाजा खत जो है 4-4, 5-5 दिन में लिखा जाता है, और फिर उसके लिए जो है कोई शेर देखा जाता है, कोई अगर गाना उसमें लगाना है तो गाना भी ऐसा हो कि 3-4 मिनट का ही हो।
1: लफ्ज़ों को तरतीब देना भी खासा मुश्किल हो जाता है।
2: जी जी।
1: और फिर ऐसे में घर वालों को संभालना,

0: हमारी है, किसी को गुटखा खाने की है, किसी को बीड़ी पीने की है, किसी को सिगरेट पीने की है। तो हमारे जो जिसे कहना चाहिए ना, जिंदगी की एक ज़रूरत सी रेडियो बन गया।
1: लेकिन पहली बार जब आए थे तो मन में क्या था और कैसा आपने महसूस किया था? वो पहली रिकॉर्डिंग आपकी?
0: उस वक्त तो ये समझ लीजिए कि तीन रिकॉर्डिंगें करना पड़ी थी।
1: अच्छा
0: जी,
1: कैसे?
0: तीन रिकॉर्डिंग है। पहली रिकॉर्डिंग करी तो उसमें जो है वो आवाज़ क्लियर नहीं है, क्योंकि पहली पहली बार थी तो टांगे भी साथ नहीं दे रही थी, आवाज़ भी साथ नहीं दे रही थी। और फिर ये है कि जब ऐसा हुआ उसे जब चेक करा जाता था फौरन, तो अगर कोई ख़राबी है तो दोबारा फिर रिकॉर्डिंग करी जाती थी। अब तो यह है कि उसी में फेरबदल हो जाता है, उतना जो है निकाल दिया जाता है हिस्सा अगर कोई गलत है। लेकिन पहले जो है पूरी कैंसिल करना पड़ती थी, फिर दोबारा तीन बार में जो है मेरी पहली रिकॉर्डिंग हुई थी।
1: नवाबुद्दीन साहब, ये बताइए कि किसी को जब हम अपना मान लेते हैं तो उसके जैसा बनने की भी कोशिश करते हैं, उससे कुछ सीखते भी हैं। आपने रेडियो को अपने दिल के बहुत करीब रखा हुआ है, अपने दिमाग में बसाया हुआ है, तो क्या चीज़ ऐसी है जो रेडियो के जरिए आपने अपनी ज़िंदगी में उतारी है और उसका फ़ायदा भी आपको मिला है?
0: कोई एक चीज़ हो तो बताएं।
1: कुछ ही बता दीजिए।
0: देखिए, जिस वक्त मैं जुड़ा था तो उस वक्त मैं 5वीं क्लास में था, ठीक है। और वो दौर उस वक्त ऐसा होता है कि जिससे कहना चाहिए शरारतों का, और उसी शरारतों में कोई अच्छा हम सफ़र साथ मिल जाए, उंगली पकड़ के चलने वाला और कुछ रास्ता दिखाने वाला, तो ज़िंदगी की मंजिलें बड़ी आसान हो जाती हैं। और मोहम्मद अली मोज साहब का ये जिक्र करूँगा कि एक बार मैं उनके पास आया, मैंने उनसे शिकायत करी कि हम ख़त लिखते हैं, ख़त हमारे शामिल नहीं होते। तो उन्होंने हमसे एक बात कही कि ये बताइए कि ये कौन सी बड़ी बात है कि नाम शामिल हो जाना, नाम शामिल तो जितना चाहो उतना करा लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ख़त लिखते जाओ नाम शामिल होते जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आप उस भीड़ से हट कर चलो और कुछ अपना जो है अलग सा नाम बनाओ। तो हमने उनसे पूछा जैसे, बोले उस वक़्त जो है कलियों पर वो मनभावन प्रोग्राम आता था, तो हमने जब उन्हें मनभावन की पहली चिट्ठी दिखाई है तो उन्होंने हाथ में लेकर मरोड़ कर कूड़े में डाल दी थी, बोले ये क्या है।
1: अच्छा,
0: दोस्ती पे लिखी थी, बोले ये तो ज़माना जानता है कि क्या है, तुमने तो ये गाय का नीबन जैसे लिखाया था स्कूल में ऐसा लिख दिया रटाया, बोले तो सबको मालूम है, कुछ ऐसा लाओ जो सुनने पर लोग मजबूर हों, कुछ अच्छा उनको मैसेज पहुंचे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा और रेडियो के साए में रहे, सुनते रहे, बहुत कुछ सीखा। और एक चीज़ और, मैं यहाँ पे जब सीखने की बात आती है तो मैंने जो है मैं कंप्यूटर नहीं सीखा है, लेकिन जो है आज आप ये देखेंगे कि मेरे लेटर जो है कंप्यूटर पर टाइप हुए थे। मैंने एक अफसाना लिखा था सबसे पहला, वही टाइप किया था।
1: अच्छा,
0: उसके बाद जो है फिर लेटर लिखना शुरू कर दिए, सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। तो यह है कि किस चीज़ के बारे में कहा जाए कि क्या सीखा, बहुत कुछ सीखा।
1: आकाशवाणी के कार्यक्रम आज भी आपको अच्छे भी लगते होंगे, लेकिन कुछ कार्यक्रमों से शिकायत भी होगी, कुछ बदलाव भी आप महसूस करते होंगे, तो इस मौजू पर आते हैं।
0: शिकायत ये कि जिस वक्त फोन इन प्रोग्राम हमारे लाइव होने का ऐलान हुआ था, मनदीप जी ने भी थी उस वक्त और टेक्निकल हेड भी थे, एक बाकायदा 3 बजे प्रोग्राम हुआ था, तभी मैंने मैडम से कहा था कि मैडम ये प्रोग्राम सक्सेस नहीं होगा। तो उन्होंने कहा था नहीं, बदलता दौर है और बदलता ज़रूरतें हैं और लोग कर रहे हैं, तो हम भी अपने काम शुरू करें, ये प्रोग्राम ऐसा शुरू करें, यह हमारी पहल है और आप इसका हिस्सा बने। आज सुनते ज़रूर हैं लेकिन जो है वो दिल के करीब नहीं रहा, लोग उसे उसमें जुड़ रहे हैं, कोई डबल कॉल कर रहा है, कोई तहजीब से हट के बात कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है कि जो सामने वाले को बुरी लग रही है, जैसे अभी आपने कहा था
1: जी।
0: तो जब उद्घोषक को कोई बात बुरी लगती है ना, तो एक बात बुरी लगती है तो पूरा प्रोग्राम ख़राब होता है,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मूड चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जब फ़ोन इन प्रोग्राम हो तो उसमें ऐसी बात करें कि जो कि उद्घोषक को भी अच्छी लगे, उसको जो है आपसे बात करने में दिलचस्पी आए। देखिए, दोनों जिसे कहना चाहिए कि एक दूसरे के पूरक हैं। आप अगर अच्छा लिखेंगे वही अच्छा पढ़ा जाएगा, ठीक है, वो बात अलग है कि कहीं अगर कम बढ़ती है तो उद्घोषक उसे जो है उठाते हैं और उसे संवारते हैं, उसके पल के संवारने का काम करते हैं।

0: वो बात अलग है, लेकिन यह है कि कुछ तो लिखेंगे आप। यह तो नहीं हो सकता कि जो है आप एक जिस तरीके से एग्जाम में जो है कोरी कापी छोड़े हैं
1: जी
0: और आप चाहें कि इस पर हमें जो है
1: पासिंग मार्क्स
0: पासिंग मार्क्स मिल जाए, ऐसा मुमकिन
1: मिले।
0: नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मेहनत दोनों तरफ से होती है, कुछ आप कदम बढ़ाएं कुछ हम कदम बढ़ाएंगे, जब ही जो है ये मंजिल आसान होगी।
1: दौर बदला है, तकनीकें बदली हैं, रेडियो सुनने का तरीका भी बदला है, तो इस बदलाव को आपने किस नजरिए से देखा?
0: ये नज़रिया अगर हम अपना ज़ाहिर करें तो बेशक वक्त की ज़रूरत थी। यही वजह है कि रेडियो आज भी ज़िंदा है, हर दौर में अपना जो है अपना मकाम बनाया और दौर के साथ चला। इसी वजह से आज जो है कहीं भी बैठकर कहीं भी रेडियो सुना जा सकता है। आप ये देखें कि पहले जो सिर्फ 2.5 करोड़ लिसनर्स की हम बात करते थे, जो हमारा ये क्षेत्र था चंपावत और ये अल्मोड़ा,
1: जी
0: आज हम इस सीमा से बहुत आगे निकल चुके हैं। कभी कभी इतनी दूर से फ़ोन आता है, यहाँ तक कि कुवैत से मैंने सुने, दुबई से
1: जी
0: सुने,
1: जी
0: तो ये लोग बैठे हुए करते होते हैं।
1: फरमाइशी कार्यक्रमों में ईमेल के जरिए जिस तरह से हिस्सेदारी हो रही है श्रोताओं की, तो एक उपलब्धि की बात है
0: बहुत
1: कि
0: बड़ी
1: पूरे भारत भर
0: उपलब्धि
1: के
0: है,
1: श्रोता जुड़ रहे हैं एक कार्यक्रम से।
0: लेकिन मजा जो है रेडियो पे सुनने में।
1: लेकिन अब बदलते दौर के साथ चलना भी मजबूरी है, वरना पीछे रह जाएंगे।
0: बिल्कुल
1: तो कदम ताल मिलाते हुए वक्त के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में आकाशवाणी रामपुर गामजन है, और 90 साल का सफ़र आकाशवाणी ने अपनी पूरी यात्रा का तय कर लिया है। आकाशवाणी रामपुर भी 60 साल से ज़्यादा का सफ़र
0: जी,
1: तय कर रहा है, तो ऐसे में आकाश एक जागरूक श्रोता के रूप में आप क्या विचार मन में है?
0: मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से ये 90 दशक हुए हैं, इसको संभालते हुए इसको जो है आगे लेके चलना है। अब इसको संभालेंगे कैसे, इसको जुड़े इससे जुड़ें, वो बात अलग है कि देखिए कि मसरूफियत के बादल हर किसी के ऊपर छा जाते हैं और ज़माने की गर्दिश में हर कोई घूम जाता है, बदल जाता है। आप ऐसा है कि हर प्रोग्राम में शामिल नहीं हो तो इतनी ज़रूर करें कि जैसे महीने में 2 महीने में अपने आप को ज़िंदा रखें, अपने कलम को ज़िंदा रखें। तो यह है कि मैं तो यही कहूँगा कि आकाशवाणी से हमेशा बने रहें, और साथ में जब आकाशवाणी रामपुर हो और आप जैसे उद्घोषक हमारे साथ
1: ये
0: हो
1: प्यार है
0: तो
1: श्रोताओं का। नवउद्दीन साहब, पूरी तरह से किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए जो पहला हक पहुंचना चाहिए और हम देते भी हैं, वो हक हमारे श्रोताओं का है, क्योंकि कार्यक्रम में उनकी भागीदारी ही कार्यक्रम की सफलता को तय करती है। हम लाख कोशिश कर लें, कार्यक्रम आपकी समातों को अच्छा नहीं लगा तो बेकार है वो कोशिश, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम अपने श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास करें, और प्रेजेंटर्स की एक पूरी टीम इस काम में लगातार जुटी हुई। कहीं कुछ गलतियां भी होती हैं और इंसान है तो गलतियां तो होंगी, लेकिन श्रोता हैं जो इशारा करते हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए, और हम उसे पॉजिटिव वे में लेते हैं। कभी आपने महसूस नहीं किया होगा कि आकाशवाणी ने आपकी किसी शिकायत को अन्यथा लिया हो और उसका प्रभाव आपकी चिट्ठियों पर पड़ा हो। कोशिश यही रहती है कि श्रोता जिस तरह से हमारे कार्यक्रमों का एक अहम हिस्सा हैं, एक परिवार का हिस्सा हैं, ये परिवार यूं ही एकजुट रहे। श्रोताओं की तरफ से भी ऐसी कुछ कोशिशें लगातार होती रही हैं।
0: बिल्कुल, ये तो हमेशा से रही हैं और इसी वजह से आप इसका नतीजा ये देखेंगे कि जितनी बेबाकी से लिसनर शिकायत लिख देते हैं, ठीक है, इतनी बेबाकी कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में या कहीं भी अगर आप करेंगे तो उसका जो है प्रतिक्रिया आपको बहुत बुरी देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज़ यह है कि उर्दू में एक बात कही जाती है कि इसलाह बराए तामीर, यानी आपकी जब गलती निकाली जाएगी तो वो आपकी तरक्की और तामीर का हिस्सा होगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बुलंदी का
1: बेशक
0: हिस्सा होगी।
1: बेशक,
0: अगर कोई उद्घोषक ये समझने लगे कि इसने हमारी गलतियां निकाली तो ये कोई जाति दुश्मन तो है नहीं,
1: प्रोग्राम
0: अगर उसको जाति दुश्मन के तौर पर ले
1: की
0: लेंगे तो
1: बेहतरी के
0: वो
1: लिए ही है
0: प्रोग्राम
1: ये,
0: की बेहतरी के लिए,
1: बिल्कुल
0: ताकि आपको मेरे मुझसे तो बहुत सारे जो उद्घोषक कंपेयर थे ऐसे रहे कि वो प्रोग्राम करने के बाद कहीं मिल गए अगर तो उन्होंने पूछा कि भाई आज का प्रोग्राम सुना था, जैसे सुधांशु जी थे वो तो अक्सर
1: जी
0: पूछा करते थे भाई आज के में क्या गलती थी, क्योंकि ज़रा सी उनकी जो है ट्यूनिंग में ज़रा सी कमी आती थी। तो वो जो है उन्हें पूछते थे, तो वो यह है कि इसमें कोई बुरा मानने वाली, मैं तो बल्कि अपने उद्घोषकों से कंपेयर से ये कहूँगा कि बराए मेहरबानी अगर कभी आपके दिल को ऐसा महसूस हो तो उसे ये सोचकर झटक देना कि ये आपके प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए जो है ये बात, ये शिकायत की गई है।
1: ये तो आपकी बात हमारे प्रेजेंटर्स के लिए हुई, और अब चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आकाशवाणी रामपुर के श्रोताओं से?
0: श्रोताओं से मैं यही कहूँगा कि आप एक अहम हिस्सा हैं, ठीक है। अहम हिस्सा जो होता है वो जो है अपनी जो जब तक अहमियत दिखाता रहता है, जब भी तक कायम रहता है, वरना उसका दूसरा जो है रूप ले लिया जाता है। आप अपनी अहमियत कुछ इस तरीके से कायम करें कि ये नहीं कि हमारा जो है पत्र नहीं पढ़ा गया, ठीक है, हमारा जो है नाम काट दिया गया, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। कभी कभी वक्त का तकाजा होता है कि कम लिसनर्स को शामिल किया जाता है, वक्त नहीं है, तो उसमें दो दो नाम पढ़ दिए गए, तो अक्सर इसमें की जो शिकायत आती है। दूसरी चीज़ यह है कि ख़त भी ऐसा होना चाहिए आपका कि छोटा हो, ताकि जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिल सके। ये नहीं कि इतना लंबा ख़त हो कि पढ़ने में जो है वक्त ज़ाया हो गया। तो अच्छा लिखें, और जो आकाशवाणी के प्रोग्राम हैं उनसे जानकारी हासिल करके आगे की तरफ बढ़ें।
1: उम्मीद करते हैं कि आपके साथ आकाशवाणी रामपुर लगातार पहले भी आगे बढ़ता रहा है और अधिक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, वक्त दिया, श्रोताओं से बात की, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अभी श्रोता मंच कार्यक्रम में आप सुन रहे थे स्टूडियो में आमंत्रित श्रोता श्री नवाबुद्दीन से असीम सक्सेना की बातचीत। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी। पहले इस सभा के शेष कार्यक्रमों के संबंध में अब से कुछ ही देर के बाद यानी संध्या 7:31 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आज सुनिएगा गुलाम अली व सलमा आगा की गाई चंद गजलें। अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से 9:30 पर, और 10:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के माध्यम से ई संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आप तक पहुँचाएंगे। इसमें आज सुनिएगा पंडित अर्नब चट्टोपाध्याय से ख्याल गायन, प्रस्तुति आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की होगी। अब एक नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम होगा वंदना। उसके बाद 6:30 पर सुनिएगा आज का चिंतन। लोकरंग कार्यक्रम में कल सुबह 7:00 सुनिएगा अनुज अग्रवाल के गाए कुछ लोकगीत। कल सुबह 10:00 होगा कार्यक्रम आपका पत्र मिला। अहले वफा ये नाटक आप सुन सकेंगे कल धरोहर कार्यक्रम में दिन में 11:00। लेखक अंजुम रशीद हैं और प्रस्तुति असीम सक्सेना की रहेगी। कल शाम 7:31 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के माध्यम से इंग्लैंड में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री। ये ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनेंगे हमारे मीडियम वेव और FM के मीटर्स पर। इस दौरान मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर जारी रहेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:19 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की तीन दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
1: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पर लोगों ने मुझे अभिमान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता हूं।
0: अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर श्री नवीन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उभरने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय लिए, उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। श्री मोदी ने आज राजस्थान में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया।
2: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल, एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार ये बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज महोबा में श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना है, वह अच्छी व्यवस्था है। यदि कोई गड़बड़ी की है तो मेरा इतना ही कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई को दो दो पाली तथा आज एक पाली में समाप्त हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के प्रति आभार व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रही हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन भारत की सनातन चेतना का एक जीवंत प्रकाश स्तंभ है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पेश एक रिपोर्ट।
4: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन आज जनभवन लखनऊ में मैंगो बायर सेलर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य MOU भी हुए। इस अवसर पर उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
5: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच कर रही हैं और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनके तैयार होंगे हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
0: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बीते 24 घंटों में कानपुर और आज सुबह टूंडला में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की तीन दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित तीन दिवसीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
7: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली और सलमा आगा की गाई चंद गजलें। सबसे पहले सुनते हैं गुलाम अली साहब को। ठहर जा नजर में तू, जी भर के तुझे देख लूं, बीत जाए ना ये पल कहीं, इन पलों को मैं समेट लूं।

ऐ बला की खूबसूरत चांद, तुझे निहारूं या तुझ पर शायरी लिख डालूं, तेरी चांदनी में खुद को भिगो लूं या तुझे इस नब से चुरा लूं, बना लूं मैं तुझको अपना साथी, ऐ चांद बस मैं तुझे निहारूं।

आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कलाकार हैं गुलाम अली और सलमा आगा। एक और गजल सुनते हैं गुलाम अली साहब से। किसी ने कहा है कि कुछ बोलने से अच्छा चुप रहा जाए, भावनाओं में बहकर कुछ न कहा जाए। यदि कहा तो बुरे कहलाओगे, अपने हर शब्द पर फिर पछताओगे। तुम्हें लगेगा तुम सही थे, मगर तुम गलत कहे जाओगे। सही गलत की परख को छोड़कर बस यही है, चुप है दीवार की तरह।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में गुलाम अली और सलमा आगा की गाई चंद गज़लें। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स के साथ साथ आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम। रात्रि के 8 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल।

कार्यक्रम गीत गाथा चल सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनोज कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होना, अपने संदेश हम तक पहुंचाना, तो हमें लिख भेजिए अपने नाम अपनी पसंद के साथ। इस नंबर पर, नंबर नोट कर लीजिए 9410087876। जी हाँ, यही व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आपको संदेश भेजना है। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9410087876। और अब सिलसिला हमारे उन श्रोताओं का जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं फरुखाबाद यूपी से सुरेश चौरसिया और सरोज चौरसिया। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश और इनके परिवार के सभी लोग। ये फरमाइश हम तक पहुंची है मॉडल टाउन करनाल से किरण ठाकुर, जग्गी दुआ, संदीप गुगलानी, सुधीर नूतन, जगमोहन प्रजापति और प्रतिभा शर्मा। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं नेहरू चौक पेठड़ से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव और इनके परिवार के सभी लोग। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विन और विपुल कांबड़े। अगला संदेश हम तक पहुंचा है श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, इन्हीं के साथ हैं गोविंदपुरा से जुनैद मुजावर, सबीहा मिखाइल और जैनब मुजावर। ये संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेहराज अंसारी, बाबू अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुँचा है शाहजी नगर जिला नांदेड़ से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा और इनके परिवार के सभी लोग। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये हमें संदेश भेजते हैं। कार्यक्रम का ये गीत सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजिए आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग सहारनपुर से। शमसुल कमर राही, शाइन फातिमा, अनु खान, अदनान, फैजान, आवाद खान, कलीम अंसारी, उस्मान अंसारी आप संदेश भेजते हैं गंडुंडवारा से। ये संदेश हम तक पहुंचा है ग्राम एचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से सकावत हुसैन मंसूरी, तालिब हुसैन मंसूरी, तौफीक मंसूरी, लईक मंसूरी, राहुल रस्तोगी, सुनील रस्तोगी, दर्पण सैनी और इनके बहुत सारे दोस्त। कार्यक्रम का पहला गीत ही सुनने के लिए संदेश हम तक पहुंचा है मेरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, शरिता गवाणकर, एकांश गवाणकर, इन्हीं के साथ हैं बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर और वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित कुमारी ध्वनि गवाणकर। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, कुमकुम सुरलकर और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है मनकारा मंदिर वीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता, दिव्या, रचना, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। ये हमारे श्रोता हैं वारसी क्लब सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, इन्हीं के साथ हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और सोएब खान। अगला

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं किमले गांव पुणे से अंकिता कांबले, विजय कांबले, बेबी शौर्या, श्रेयस और इनके परिवार वाले। ये संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना। अगला संदेश हम तक पहुंचा है मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार।

कुमारी सुजाता पोहरकार। गनगोला दातागन से इसरत खान, शायरा बेगम, रऊप खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान, आजम खान और अरहान खान। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ईदगाह गेट मुरादाबाद से सफी अहमद अंसारी, रईस दूला अंसारी और इनके परिवार वाले। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं, ये हमारे श्रोता हैं बीजना मुरादाबाद से, राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका, यूनुस खान, सोफिया खान और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं करणवीर हाउस भूचो कैचिया भटिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत और इनके परिवार के सभी लोग। पंकज बड़ोदे, आर्या, प्रियंका बड़ोदे और इन्हीं के साथ हैं इनके परिवार के सभी लोग। आपने संदेश भेजा है,

श्री नारायण खड़से, ललिता खड़से, गणेश कार्तिक परी खड़से, इन्हीं के साथ हैं स्वाति प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हमें मिला है कोल्हापुर महाराष्ट्र से भवन चौगले और इनके परिवार वालों का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं जाखोद राजस्थान से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक और इनके परिवार के सभी लोग। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमें संदेश भेजते हैं। ढकिया केसरपुर जिला पीलीभीत से एके राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, भगवान दास राजपूत, मदन लाल, रवि कुमार, छुटका, किरण संतोषी, प्रिया और इनकी गुड़िया चंचल। ये संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन और इनके परिवार वाले। कासगंज से मास्टर राधे, श्याम, शाक्य, ऋषभ, जोली, मधु और इनके परिवार वाले। जेल रोड जालंधर से अमरजीत, परमजीत और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हम तक पहुंचा है सरगुजा मेन पार्ट से रेशमा थापा, फातिमा और इनके परिवार के सभी लोग। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दोबेहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, इन्हीं के साथ हैं। जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय और इनके परिवार के सभी लोग। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं दीदार रेडियो श्रोता संघ बलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जबुनी शवेगम, अकरम सैफी, जाहिद सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी और आबाद खान। सप्रेम नमस्कार के साथ ये संदेश हम तक पहुंचा है लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी। अगला संदेश हमें मिला है जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और इनके दोस्त हैं सुरेश चौरसिया, फरुखाबादी। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और इन्हीं के साथ हैं सोहन जोशी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। चोहलदा बागपत से ये संदेश हम तक पहुंचा है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और इनके परिवार वालों का। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और इनके परिवार के सभी लोग। भटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया और इनके परिवार के सभी लोग हमें संदेश भेजते हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके परिवार वाले हमें संदेश भेजते हैं। थाना टीन रामपुर से इकराम अली प्रेमी, फैजान, एहसान, इमरान और आसिफ भाई, इन्हीं के साथ हैं। भोबाली से अजहर जहां, अमरीन, हिना, फरीन, यमन और फारिया साथ में हैं इनके सलमान। ये संदेश हमें मिला है बंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा जी का। जलालाबाद वेट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा में संदेश भेजते हैं। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी हमें संदेश भेजते हैं। ये संदेश हम तक पहुंचा है रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी का। आप सबने सुनना चाहा है लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत। संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने और शब्द रचना है इंदिवर की। फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं शेरवानी स्कूल गंडुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ और लुबना अंसारी के साथ हैं आलिया अंसारी। बरवट बकाल बुल्डाना से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे। ये संदेश हमें मिला है ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद ऋषि, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं ये हमारे श्रोता हैं महाराष्ट्र से लोहार पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला, देवीदास पोपलघट और इनके परिवार के सभी लोग। जिला बुल्डाना महाराष्ट्र से समर्थ दादा भागवत पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी देठे पाटिल और कुमारी सानिका देठे पाटिल। अगला संदेश हम तक पहुंचा है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इनके परिवार के सभी लोग। हिंगोली महाराष्ट्र से साहाजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके, हनुमान बोटके, उत्तम जमदाड़े और इनके परिवार के सभी सदस्य। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से ये संदेश हम तक पहुंचा है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी का। अगला संदेश हम तक पहुंचा है भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी जी का। ये हमारे श्रोता हैं महसूल सीतामणि बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहां, रिफत जहां, नुजत जहानाज, साजिया शाहीनाज और नाजिया नूरीनाज। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, राजे खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी, इरफान खान और पक्के बाग से पम्मी। ये हमारे श्रोता हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा और इनके परिवार के सभी लोग ग्राम महेशपुर खेम जिला मुरादाबाद से। ये हमारे श्रोता हैं अमरावती महाराष्ट्र से सैयद भाई, आसफिया परवीन और मोहम्मद सैफ, अल्फिया और इनके परिवार के सभी लोग। कार्यक्रम में अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं सिद्धार्थनगर जिला नांदेड़ से आरती छोटी, बबली, रूपाली, वंदना धुले, सरूबाई धुले और इनके परिवार के सभी लोग। अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, सोएब खान, साइमा खान, पोतरा मुस्तफा खान और इन्हीं के साथ हैं शाहिद भाई। ये संदेश हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोहिनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। अगला संदेश हम तक पहुंचा है लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज और इनके परिवार वाले। ये हमारे श्रोता हैं अनिल, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनीश्री और इन्हीं के साथ हैं यवतमाल से सूरज और प्राची। ये संदेश हम तक पहुंचा है बेरणी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सब्बा शेरे। गांव आनंद गांव जिला जालना से ये संदेश हम तक पहुंचा है परमेश्वर शिंदे, कावेरी शिंदे, प्रहलाद, स्वाति, वैष्णवी और इनका शिंदे परिवार। गांव गुरावा पोस्ट किलोस से नंदलाल और राजू, मनुका बाई, नंदनी बाई और इन्हीं के साथ हैं रुद्र। ये हमारे श्रोता हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना, आशिक हुसैन अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग। अनारकली बाजार जगराव से ये संदेश हम तक पहुंचा है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हमें मिला है काल मंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत और इनका समस्त परिवार। कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और इनके परिवार के सभी लोग हमें संदेश भेजते हैं। ये हमारे श्रोता हैं काला बाजार से, माफ कीजिएगा, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल बागतरिया, भोला बागतरिया, प्रवीण रियांश और प्रतीक बागतरिया।
दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल मेहरा जी के साथ हैं इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ग्राम पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, सूरज कुशल वर्मा और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हमें मिला है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश रावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं।

मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। आप सबने सुनना चाहा है ये गीत सफ़र फिल्म से। स्वर है मुकेश का, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और शब्दों में ढाला है इंदीवर ने।

0: खुश रहे।
1: आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल। ये फरमाइश हम तक पहुंची है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं एक बार यदि श्रोताओं आपका नाम शामिल हो गया है तो फिर से बार बार संदेश भेजने से क्या फायदा है और श्रोताओं की जो फरमाइशें हैं वो छूट जाती हैं। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल कमर खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री और रमेश गौड़, इन्हीं के साथ हैं मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोगांवा से हाजी इसहाक, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हम तक पहुंचा है उत्तम नगर दिल्ली से गीतिका जी का और इन्हीं के साथ हैं भानु प्रकाश। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रियान, समरीन परवीन, माहिरा नूर और इनके परिवार वाले। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से गुलशन और हमजा सिद्दीकी हमें संदेश भेजते हैं। ये हमारे श्रोता हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, इन्हीं के साथ हैं मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है राजद्वारा कोठी अफसराला से रूमा खान, बोबी खान, मदीहा, सुबहान, शबनम अब्बासी, गुलसफा, जीनत अमान और शमा परवीन। ये संदेश हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यान पाल, संजय, अनमोल, अंश, करिश्मा, मुस्कान कश्यप। नमस्कार के साथ ये संदेश हम तक पहुंचा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनके परिवार वाले। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम, मोहम्मद यासीन अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हमें मिला है परीमहल कासगंज से आबाद खान, नवील खान, आरफा, इल्मा, एम असलम, सैफी, जाहिद अली और मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान और इनके परिवार के सभी लोग। ये हमारे श्रोता हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचेत प्रथमेश, कुमारी प्रणाली देशमुख और सर्व देशमुख। आपने संदेश भेजा है कालेगांव जाफराबाद से। अगला संदेश हमें मिला है चकला बाजार समाना शहर से सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू, खुशदिल, हसमुख लाल और बुलबुल, इन्हीं के साथ हैं संजीव, बंटी, जिंदल और इनके परिवार के सभी लोग। गांव खावरी अब्बल से चौधरी राजवीर सिंह, चौधरी अवैना कंचव और इनके परिवार वाले। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी और इन्हीं के साथ हैं शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। ये हमारे श्रोता हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं इंदौर से कार्तिक और परी खर्चे। ये संदेश हम तक पहुंचा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप सब ने सुनना चाहा है शोर फिल्म में, स्वर मुकेश का है और मुकेश के साथ दिया है लता मंगेशकर ने, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीत को लिखा है संतोष आनंद ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनना चाहते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो। ये संदेश हम तक पहुंचा है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तनवी बोट और इनके परिवार वालों का। गोवर्धन विहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना और इनके परिवार वाले। ये संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं। कोल्हापुर से अतुल गौतमी, धमदीना अरुणा काले और इन्हीं के परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति, रोहतासपुर बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह। आप सबने सुनना चाहा है ये गीत फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से। स्वर आशा भोसले और बप्पी लहरी का है। गीत को लिखा है इंदिवर ने।

अभी श्रोता सुन रहे थे अपने व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए।

0: सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए और विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो

0: सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांड में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांड संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्र और विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांड में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: पहुंच चुका है 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 2014 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3

0: शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खमेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 बजे पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांगद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra. Several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India, where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे
1: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है
4: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग लॉन्च्ड द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लांट ऑन 28 फरवरी द सेकंड प्लांट ऑन 31 मार्च एंड टुडे ऑन 4th जुलाई द थर्ड प्लांट गिवन द स्पीड विद व्हिच द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड 12 प्लांट्स इन द कैबिनेट एंड विद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टिंग इन 3 आउट ऑफ दोस 12 प्लांट्स अ न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडियाज सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज हैज इमर्ज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे
3: आज दुनिया भर में भारत की सेमी कंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है
1: Earlier, upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachupadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers,

0: Additional Sessions Judge Sameer Bajpai of Karkardoma Courts dismissed the bail pleas filed by both the accused persons. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha today chaired a high-level review meeting to assess the overall management and ground situation of the ongoing Sri Amarnath Ji Yatra. The Lieutenant Governor said, the Yatra is being conducted as per the Supreme Court mandated sealing of pilgrim movement on the tracks, and it is imperative to adhere to the registration schedule for safety and convenience of the pilgrims. The LG said this after it was revealed in the meeting that an unusually large number of pilgrims have been arriving without valid registration, causing long waiting times for pilgrims to undertake the Yatra. During the meeting, it was stated that only pilgrims possessing valid registration for the designated date shall be permitted to proceed on the tracks leading to the Holy Cave Shrine. Heavy rainfall continued to batter several parts of Maharashtra, disrupting normal life across the state. Mumbai and its suburbs received intense showers, prompting the closure of schools in Mumbai, Thane and Palghar. Flood-like conditions were reported from parts of Palghar district, affecting road and rail traffic. In Raigarh, major rivers including the Savitri, Kundalika and Ulhas are flowing at full capacity, while waterlogging was reported in Mahad. Continuous rain has also raised water levels in Panchaganga and other rivers in Kolhapur. Meanwhile, the India Meteorological Department has issued a red alert for Mumbai, Thane, Palghar and the Ghat areas of Pune and Satara for the next 2 days, while an orange alert remains in force for the Ghat areas of Raigarh, Ratnagiri and Nashik. The India Meteorological Department has also issued a yellow alert in all the 14 districts of Kerala for today. The yellow alert will continue in 3 districts tomorrow. An orange alert has been issued for Kannur and Kasargod districts for Monday and for Kannur, Kasargod and Kozhikode on the 7th of this month. Heavy rainfall is expected to continue until the 8th of this month. Due to adverse weather conditions and rough seas, fishermen have been advised not to venture into the sea along the Keralam, Lakshadweep and Karnataka coasts. In sports, in men's cricket, India have set a target of 191 for England in the second T20 international of the 5-match series at Old Trafford in Manchester. In reply, England was 16 for 2 in 2.2 overs when reports last came in. Opting to bat first, India posted 190 runs for the loss of 7 wickets in their allotted 20 overs. Ishan Kishan scored 49 off 40 balls, while Abhishek Sharma contributed 43 runs off 24 balls. Earlier, Vaibhav Suryavanshi created history by becoming the youngest player to make his international debut for India. Vaibhav made his debut at the age of 15 years and 99 days, surpassing the long-standing record held by Sachin Tendulkar, who made his India debut at the age of 16 years and 205 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG Semi-Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 for host England in second T20 in Manchester, where Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmin. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के दिफाई सामान की बरामदात 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है, कई दरिया तोयानी पर हैं। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी बैन अलावा क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के जदीद तर्ज के आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निजाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शा आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शराह और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मस्कूरा प्लांट में मुतनव्वा अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मईशत को तकवीत पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निजाम से मसनूई जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वजीर आजम ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार कर सकेगा। जनाब मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी।
2: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।
1: इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमी कंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मजकूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे।
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनती शोबों में किया जाएगा और उन्हें अमेरिका, जापान और यूरोप समेत आलमी मार्केट्स में भी बरामद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिससे रियासत में बुनियादी ढांचे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के मौके पैदा करने को बड़ी तकवीत मिलेगी। दिन भर के अपने दौरे में वजीर आजम ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। इसके बाद जनाब मोदी ने बालोतरा जिले में पचपदरा के मकाम पर मुल्क का सबसे जदीद तर्ज का ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मुल्क के नाम वक्फ किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या मादनियात के लिए एक ऐसा सनती प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे साफ सुथरी कच्ची जमीन पर नए सिरे से बनाया जाता है। پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ مغربی ایشیا کی مہازرائی سے 21ویں صدی کا توانائی کا سب سے بڑا بحران پیدا ہو گیا تھا، لیکن بھارت نے بروقت فیصلوں، مؤثر سفارتکاری اور قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے اس چیلنج پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا۔
2: بھارت نے ہر سطر پر صحیح فیصلے لیے، سنکٹ کا سمے رہتے سٹیک آکلن کیا، پربھاوی رننیتی بنائی، بھارت کے سنسادنوں کا سنتلت پریوگ کیا، بھارت کی ڈپلومیٹک پاور کا سکاراتمک استعمال کیا، اور تب جا کر بھارت سنکٹ سے ابھر پایا ہے۔
1: جناب مودی نے کہا کہ بحران کے دوران دنیا کے ملکوں کے ساتھ بھارت کے دوستانہ تعلقات کا اہم رول رہا۔

0: फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: जनाब मोदी ने इस मौके पर तकरीबन 54,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे भी सौंपे, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख को शुरू होगा और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की सरकार की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल मामलात पर बामकसद बहस मुबासे और फैसलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत की नुमाया तरक्की को ये कहते हुए उजागर किया कि मुल्क की दिफाई बरामदात रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई हैं। नई दिल्ली में मीडिया के एक निजी इदारे की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि माली बरस 2013-14 में 686 करोड़ रुपये से जबरदस्त इजाफा तकरीबन 57 गुना है और इससे मेक इन इंडिया दिफाई प्लेटफॉर्म में बढ़ते आलमी एतमाद की अक्कासी होती है।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 2014 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: वजीर दिफा ने कहा कि माली बरस 2025-26 में सालाना दिफाई पैदावार भी अब तक की सबसे ज्यादा बुलंदी 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई, जो 2014-15 की सतह से तकरीबन 3 गुना है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग की वसीतर हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने मेक इन इंडिया पहल के तहत मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग की तौसी, मोटर गाड़ियों की बरामदात में इजाफे, अंदरून मुल्क तैयार करदा रेल इंजन और डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती को उजागर किया। गुज़श्ता दहाई में मुल्क की तरक्की के बारे में बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने किल्लत का इज़ाला किया, मौक़े बढ़ाए और वर्क कल्चर में यकसर तब्दीली पैदा की। उन्होंने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की पॉलिसी के जरिए विकसित भारत की मजबूत बुनियाद कायम कर रही है। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की इत्तलात सामने आने पर टेलीग्राम ऐप को नोटिस जारी किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरकार ने टेलीग्राम को हिदायत दी है कि चोरी छुपे हासिल की गई फिल्मों और ओवर द टॉप ओटीटी प्रोग्रामों के खिलाफ बिला ताखीर इकदाम किए जाएं। जराए ने मजीद बताया कि मस्कूरा प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वो 15 दिन

0: के अंदर अंदर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। इंडोनेशिया के सदर की दावत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। वजीर आजम मोदी का इंडोनेशिया इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। महाराष्ट्र दारी तक वसूल दिए जाने के बाद पहला दौरा होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: अपने दौरे के दौरान वजीर आजम मोदी इंडोनेशिया के सदर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, जिसमें किलीदी शराकत दारी के तहत अहम शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। जकार्ता में वजीर आजम का वहां आबाद भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तम से खिताब का भी प्रोग्राम है। इंडोनेशिया में भारतीय बिरादरी वजीर आजम के दौरे की मुंतजर है। जकार्ता में इंडिया क्लब के सदर सिद्धार्थ तपाड़िया ने आकाशवाणी से बात करते हुए भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मजबूत दोस्ती को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस आला सतही रबते से ये बात नुमाया होती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को खास अहमियत देते हैं। उन्होंने इस बात पर पुरउम्मीदी का इजहार किया कि दोनों ममालिक बुनियादी ढांचे, तिजारत, दिफा, ज़राअत, कुदरती वसाइल और दीगर शोबों में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करेंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीका के 250वीं योम आजादी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वहां के अवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात कलीदी साझेदारी से आगे बढ़कर हैं, जो जमहूरियत, कानून की अमलदारी और अपने अवाम की लामहदूद सलाहियत के मुश्तरका एतमाद पर मबनी है। सनअती माहरीन ने कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम रातोंरात मुतारिफ नहीं किया गया, बल्कि ये एक सोचा समझा मरहलेवार और साइंस पर मबनी अमल है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की साबिक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम 2018 में सिलसिलेवार तबादला ख्याल और मुतालिका फरीकों के सलाह मशवरे के लिए लोगों के सामने रखा गया। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे रियासत भर में मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। मुंबई और उसके मजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मुंबई, थाने और पालघर में स्कूलों को बंद करना पड़ा। पालघर जिले के हिस्सों से सैलाब किसी सूरत हाल की खबर है, जिससे सड़क और रेल ट्रैफिक मुतासिर हुआ है। रायगढ़ में अहम दरियाओं में पानी की सतह बढ़ गई है। मुसलसल बारिश से कोल्हापुर में पंचगंगा और दीगर दरियाओं में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। ईरान के साबिक रहबरे आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की 6 रोजा सरकारी आखिरी रसूमात का सिलसिला आज से तेहरान में शुरू हो गया। इसमें हजारों सोगवार शिरकत कर रहे हैं और ईरान के
2: बद्र का एक शेर साया से याद आ रहा है। जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा। प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज वृक्षनीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा, तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट, भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन

0: दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है, और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है, और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
0: कालिदास उज्जैनी पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
1: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो।
3: मेघ, मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है, सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारणकर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
4: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है, हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद, कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
5: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
4: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
5: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट के आया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसकी जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, आप जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें जो आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है जिसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में भी लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही है। अच्छा, शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उन पर बूंदियां चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का और सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में है और बड़े कड़क आदमी है, तो इससे भी वो मांगती है कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशर्फ भी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो है वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है। तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
4: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं भी, जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
5: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ। वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखिए कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
3: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
6: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
7: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बता न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
6: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे, उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं, तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूं और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंदुभी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्य कृति लिखी और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हाँ भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभिनी सुरसरी स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मिरथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50, 60, 70, 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण दे करके जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, यह वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं, जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया, पूरे विश्व को भारत के उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था। आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभत तेज अकिंचन पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
3: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमाशंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थामकर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan. The doyens of Kirana Gharana has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979. A top-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an empaneled Hindustani classical music artist at ICCR, Ministry of Culture, Government of India, Pandit Arnob Chattopadhyay is one of the most acclaimed vocalists of the present generation. While maintaining the pure tradition of Kirana Gharana, Pandit Arnob Chattopadhyay is known for mixing the other forms of Gayaki both in Khayal and Thumri presentations, which makes his renditions quite colorful and popular.
0: आज रात पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय के साथ संगत करेंगे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा।
1: Tonight, Pandit Arnob Chattopadhyay is accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay and on the tanpura by Koel Saha.
0: Khayal Gayan ke is karyakram ki shuruaat Pandit Arnob Chattopadhyay raag Yaman ke saath karenge. Yeh bandish purvardh mein vilambit ek taal, tatpashchat drut teen taal mein abadh hai.
1: Pandit Arnob Chattopadhyay begins his Khayal recital with Raag Yaman. The composition is set to Vilambit Ektal followed by Drut Tintal.

0: ख्याल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: आप पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: काल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है.
2: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility and India's

रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:50 पर अपनी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव और FM पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।